बोल जी वाहे गुरु, एक ओंकार। वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार

0: ना यो टूटे ना मर लगे ना यो जले ना जाए तन सो मानस नानका जोगल चले पाए चौकड़ मुल नाया बै चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया ओ मुआ चढ़ पाया
1: लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पैनामियां रात दिन सजी नाल तगक पाहो कत्ती है बामन वटे आए को बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होए पुराना सुटी है पी फिर पाई है होर नानक तग न टुटई जे

0: और साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनु हुक्म बनाए सी हुक्म न होवे परवार दा कसमे का बहल पाए सी कसमे भावे
1: हुने तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन दा सीधा प्रसारण सर्वन कर रहे सी मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। सवेर दे 6 बज रहे ने, आओ हुण सुनदे हां हिंदी च समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार के लिए लिखित प्रस्ताव पर आधारित वार्ता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना किसी लिखित प्रस्ताव के बातचीत केवल सुधार प्रक्रिया को टालने के समान होगी। सुधार का विरोध करने वाले देश संस्था को मजबूत करने के बजाय केवल उसका शोषण कर रहे हैं। डॉ. जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग रप्चर्स एंड रैम्पार्ट्स बदलती दुनिया के लिए सेतु निर्माण विषय पर आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। इसके अलावा विदेश मंत्री ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की उद्घाटन बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV कैप डाउ पर हमले का जिक्र किया, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर पर एलगाइया के हमले का भी जिक्र किया, जिस पर हुरमुज जलडमरू मध्य में हमला हुआ था और एक भारतीय चालक दल का सदस्य लापता हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री

0: राजेंद्र शाह ने विनाशकारी बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस तंत्र के माध्यम से तीनों देशों के उपग्रह से प्राप्त डेटा, तकनीकी विशेषज्ञता और आपदा की पूर्व चेतावनी संबंधी सूचनाओं को साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा ने चीन नेपाल सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जबकि बाढ़ का पानी आगे बहकर भारत तक पहुंचा। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों, विशेष रूप से भारत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश से कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों से चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज बारिश हो रही है। जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की सूचना मिली है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौसम की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने, स्थानीय परिस्थितियों पर लगातार नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार और रविवार को भी राज्य में मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रहने की संभावना है। और जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, DRM 864 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज, 100.9 मेगाहर्ट्ज ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। ज्ञान अमृत।

0: भक्ति संगीत का प्रोग्राम आराधना मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुन पेश है जी अज का खेतीबाड़ी प्रोग्राम।
1: खेतीबाड़ी

भरत को चतुरंगिणी सेना के साथ चित्रकूट आते देख निषादों की भांति लक्ष्मण के मन में भी आशंका हुई कि राजपद पाकर भरत को प्रभुता का मद हो गया है और श्री राम को वन में अकेला असहाय समझ वे युद्ध करने आ रहे हैं। अतः लक्ष्मण ने भरत से युद्ध करने की ठान ली। श्री राम के चरणों की वंदना कर चरण रज माथे से लगाते हुए बोले, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने वैसे भी हमारा कम अहित नहीं किया है और अब युद्ध करने आ रहे हैं, आखिर हम ये सब कहां तक सहन करेंगे, जबकि आप हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। अग्रज से युद्ध की आज्ञा मांगते हुए लक्ष्मण साक्षात वीर रस के अवतार दिख रहे थे। सिर पर जटाजूट और कमर में बंधा बाणों भरा तरकस, भरत का सामना करने को वो पूरी तरह तैयार हैं। उपस्थित समाज के वहां एकत्रित होने के कारण उनका हौसला और भी बढ़ गया है। मन में दृढ़ निश्चय हो गया है कि आज वो अपना सारा पिछला क्रोध अच्छी तरह प्रकट करेंगे। क्रोधित लक्ष्मण को युद्ध के लिए उद्यत देख सारा जगत भयभीत हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे तात, जो बिना विचारे जल्दी में कुछ करके बाद में पछताते हैं उन्हें बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता।

0: इत्यत्र संयुक्त राष्ट्र महासभायां भाषमाणः विदेशमंत्री अवोचत् यत् पाठम् अन्तरेण क्रियमाणा वार्ता केवलं समय यापनमेव अस्ति। परिष्कार विरोधिनः अस्याः संस्थायाः दुरुपयोगं कुर्वन्ति इत्यपि असौ स्पष्टम् उक्तवान्। जलसुरक्षा सर्वैः नागरिकैः प्रशासनेन उद्योगैः च सहभागितां विधाय एव साध्यते इति जलशक्ति मन्त्रिणा सी आर पाटिलेन सबलं प्रोक्तम्। ह्यः नवदिल्ल्यां नवम भारत अन्ताराष्ट्रिय जल सप्ताहस्य समापन सत्रे सम्भाषमाणेन मन्त्रिणा एतत् ख्यापितं यत् जल संरक्षणाय जनसहभागिता अतीवावश्यकी वर्तते। मन्त्रिणा सविशेषं प्रोदीरितं यत् वैश्विक सहयोगेन एव जल सम्बद्ध समस्यानां परिहारः सम्भविष्यति। जल संरक्षणं न हि केवलं एकस्य कर्तव्यं प्रत्युत प्रत्येकस्य उत्तरदायित्वं इत्यपि असौ सबलं न्यगादीत्। उत्तरप्रदेशे प्रादुर्भूतया अतिवृष्ट्या जनजीवनं संजातम् अस्तव्यस्तम्। आसन्नां भीषण वृष्टिं विलोक्य प्रशासन पक्षतः बहुषु जनपदेषु पाठशालाः पिहिताः सन्ति। चक्रवात प्रभावेन राजधान्यां लखनऊ नगर्याम् अविरतं जलवृष्टिः प्रचलति। अत्रावधेयं यत् रविवासरं यावत् पूर्व्य उत्तर प्रदेशे अतिभीषणा वृष्टिः विद्युत्पातः तीव्र समीरश्च सम्भविष्यति इति सञ्चेतनाम् अयच्छत् ऋतुविज्ञान विभागः। नागोया एशियाई क्रीडासु भारतस्य पदकानां संख्या 23 सम्प्राप्ता। लक्ष्यभेद स्पर्धायां कमलजीत सुरुचि युग्मेन स्वर्णम् गुलवीर सिंहेन च रजत पदकं प्रासाधि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रभृतयः सर्वेभ्यः विजेतृ क्रीडकेभ्यः वर्धापन संदेशम् अयच्छन्। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 7 बजे ने हुन पेश ने जी मुख खबरां। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने विद्यार्थियों नूं अपने ज्ञान अते हुनर नूं लगातार बेहतर बनाउन अते तेज तकनीकी तब्दीलियां मुताबिक अपने आप नूं टालन दा सद्दा दिता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आलमी निश्चितावां दे बावजूद भारत सब तो तेजी दे नाल वध रही वड्डी आर्थिकता बनिया होया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र विच सुधारां दी घाट दे कारण अंतरराष्ट्रीय भाईचारे विच निराशा वध रही है। जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने जल सुरक्षा यकीनी बनाउन लई सामूहिक यतना दा सद्दा दिता है। केंद्रीय कानून अते न्याय राज मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पंजाब विच वध रहे नशियां दे संकट नूं लै के चिंता जाहिर कीती है। पंजाब दे राजपाल श्री गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब स्टेट रेड क्रॉस वल्लों हड़ प्रभावित नेपाल लई राहत समगली दी तेजी अते सब तो वड्डी पीक नूं हरी झंडी दे के रवाना कीता है। पंजाब दे खेतीबाड़ी मंत्री गुरमीत सिंह खडूरिया ने कहा है कि पंजाब दी खेती नूं टिकाऊ बनान लई फसली भिन्नता समय दी मुख लोड़ है। भारत दी मोरी खाद उत्पादक किसान सहकारिता संस्था कृषि पार्टी सहकारी लिमिटेड ने माली साल 2025-26 लई 824 करोड़ रुपए तो वध दा टैक्स तो पहला दा मुनाफा दर्ज कीता है। सरकार ने किया है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2.0 तहत अक्तूबर तो वख वख राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां दे 70,000 देहाती नौजवानां नूं हुनर सिखलाई दित्ती जावेगी। मौसम विभाग ने आज पठानकोट गुरदासपुर अमृतसर हुशियारपुर नवांशहर रूपनगर ते मोहाली दे कुछ हिस्सियां विच भारी मीह पैण दी संभावना जताई है। इस सन हुण तक दियां मुख खबरां।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: मन की बात मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करनगे अपने मन की बात ऐतवार 27 सितंबर दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करनगे नालों नाल। नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल DD न्यूज़ DD भारती DD इंडिया ते DD किसान चैनल ते भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर FM 102.7 मेगाहर्ट्ज DTH दी AIR पंजाबी सेवा DRM 864 किलोहर्ट्ज FM 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती FM 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर FM 100.9 मेगाहर्ट्ज ते FM 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे। इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे। सुनना जरूर मन की बात दी 138वीं कड़ी।

0: ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ, ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਬਿਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ, 8:15 ਵਜੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिन से लगातार वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य सभी की भागीदारी और योगदान से ही हासिल किया जा सकता है।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वडनगर से प्राप्त मूल्यों ने उनके जीवन को आकार दिया है, जबकि काशी से उन्हें जीवन में सेवा मूल्य प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने यात्रियों से अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा तथा निर्बाध प्रतिबद्धता के भाव से सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की जानकारी दे रहे हैं। नए श्रम संहिताएं सरकार की इस प्रतिबद्धता के साक्षी हैं।
3: नई श्रम संहिताएं कई वर्तमान कानूनों को एकीकृत आधुनिक ढांचे में समाहित करती हैं, जिन्हें कार्यबल में स्पष्टता, स्थिरता और समानता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार इन सुधार

0: कारों के अंतर्गत 29 केंद्रीय कानूनों को 4 संहिताओं में समाहित किया गया है। वेतन संहिता न्यूनतम वेतन को सार्वभौमिक बनाती है और समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है। तो औद्योगिक संबंध संहिता विवाद समाधान को सरल बनाती है और नियुक्ति में लचीलापन बढ़ता है। वहीं सामाजिक सुरक्षा संहिता गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म कर्मियों और संगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता कार्यस्थल की सुरक्षा और कल्याण मानकों को बेहतर बनाती है। ट्राई सिटी बिल्डिंग कामगार यूनियन चंडीगढ़ के प्रधान रामप्रीत शर्मा ने कहा कि नए श्रम कानून श्रमिकों के हित में है।
1: एक यूनियन लीडर के रूप में मेरा अनुभव है कि अच्छी पॉलिसी वही है जिसमें श्रमिक और इंडस्ट्री दोनों साथ साथ विकास करें। उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वर्किंग अरेंजमेंट में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी आई है।
0: ये चार श्रम संहिताएं भारत के श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखती हैं, जिससे श्रमिकों और नियोक्ताओं को एक समान नियमों के अंतर्गत लाया जा सका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
2: उत्तर प्रदेश में कई जिलों में तेज वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों में तूफान के कारण तेज वर्षा हो रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से वर्षा से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों और पर्यटकों से इस दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चार धाम यात्रा फिलहाल जारी रहेगी।
3: मौसम विभाग के अनुसार आज बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 4000 मीटर और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का भी अनुमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और रेड अलर्ट के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने और राहत एवं बचाव की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिन से लगातार हो रही वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ और जलभराव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उड़ीसा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
6: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के

0: ध्वज वाले मालवाहक पोत एमवी केप डाओ पर हमले का जिक्र किया। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ कई मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की। सत्र के दौरान उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खाड़ी संघर्ष से संबंधित नवीनतम घटनाक्रम पर चर्चा की। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात वाले इस समूह का उल्लेख करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों के नेताओं ने ब्रिक्स सहयोग की समीक्षा की। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है, उसमें नागरिक, सरकार और उद्योग भी शामिल हैं। श्री पाटिल ने नई दिल्ली में कल 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के समापन सत्र में ये बात कही। श्री पाटिल ने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थानों के बीच सहयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है।
1: जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा। तीन बातें विशेष रूप से सामने आई हैं। पहली, जल संरक्षण से जल भागीदारी सबसे जरूरी है। दूसरी, विज्ञान और नई तकनीक का लाभ जमीन तक पहुँचना चाहिए। और तीसरी, जल की चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थाओं के बीच सहयोग से ही मजबूत होगा।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल।
2: पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। बरवाल ने 2 घंटा 11 मिनट और 37 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। आज महिला और पुरुष वर्ग में भारत की कबड्डी टीमें अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। फाइनल में दोनों वर्गों में भारत का मुकाबला ईरान से होगा। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सिंगल्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो यू से होगा। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर में रजत पदक जीतने के एक दिन बाद अब 1500 मीटर स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। पारुल चौधरी और पूजा महिलाओं के 1500 मीटर फाइनल्स में उतरेंगी। एशियाई खेलों के 7वें दिन कल भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 10 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर बना हुआ है। 99 स्वर्ण पदकों के साथ चीन शीर्ष पर है। जापान दूसरे स्थान पर है, उसने अब तक 29 स्वर्ण पदक जीते हैं। दक्षिण कोरिया 13 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को पराजित किया। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर आ गई है। अब 10वें दौर में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। महिला वर्ग के 9वें दौर में भारतीय टीम उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारतीय टीम का मुकाबला चीन से होगा।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कड़ी में पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी से बातचीत प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री मोदी के भजन क्लबिंग में शामिल होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मोदी जेंजी के साथ भजन क्लबिंग में हुए शामिल। नवभारत टाइम्स के अनुसार जेंजी के साथ पीएम की भजन क्लबिंग। अमर उजाला के अनुसार भजन क्लबिंग में युवाओं संग झूमे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री मोदी का बयान देते हुए लिखा है, देश में दिखा बदलाव, मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे, पीएम ने गिनाई उपलब्धियां, निवेश, रक्षा उत्पादन, विनिर्माण और निर्यात में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। हिंदुस्तान के अनुसार देश का विकास इंजन बना यूपी, गृहमंत्री अमित शाह बोले,

0: डेड इकोनॉमी कहने वालों की सोच ही डेड। दैनिक जागरण लिखता है गृह मंत्री ने यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन समारोह में विपक्ष पर साधा निशाना। पंजाब केसरी के अनुसार तमंचों की फैक्ट्री की जगह बन रही ब्रह्मोस। दैनिक भास्कर की सुर्खी है भारत की पहल, जहाजों नाविकों पर हमले रोकने के लिए बना ग्लोबल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा समुद्र में हमले वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा। जनसत्ता के अनुसार न्यूयॉर्क में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा होर्मुज खोलने के लिए 7 दिनों का प्रस्ताव। अमर उजाला का शीर्षक है स्वर्णिम निशाना, सुरुचि और कमल ने देश को दिलाया दूसरा गोल्ड, एक ही दिन में भारत को 2 रजत सहित 6 पदक। दैनिक जागरण की सुर्खी है अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर बनाने की तैयारी में गूगल, सौर ऊर्जा से चलेगा AI कंप्यूटिंग सिस्टम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज गैप बिटवीन सिटीज एंड विलेजेस इन इंडिया हैज नैरोड सिग्निफिकेंटली ओवर पास्ट 12 इयर्स। Heavy rain slashed several districts of Uttar Pradesh. Schools closed in many districts following alert for heavy downpour. Chhattisgarh government declares holiday today for all schools in the state due to continuous rain over past 2 days. India raises concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in Gulf, Red Sea and Black Sea. Savan Barwal wins silver medal in men's marathon event at Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. And D. Gukesh secures India's victory over Germany in 9th round of FIDE Chess Olympiad in Samarkand. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. He highlighted the considerable improvement in rural infrastructure and noted that women across the country have also become increasingly self-reliant and economically empowered. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. He emphasized the importance of social service, social reform and positive change. He said Viksit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colors of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colors of service.
3: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
2: During the interaction, these Yatris shared their experiences with the Prime Minister. Mr. Modi also urged the Yatris to maintain a diary and record their experiences during the Yatra. In Uttar Pradesh, heavy and incessant rain has thrown life out of gear in many districts. Schools till 12th will remain closed in several districts due to heavy rain alert. Many districts, including state capital Lucknow, are witnessing heavy rain due to cyclonic conditions from last 24 hours, normal life disrupted badly, and road traffic also affected due to heavy rain. Many rain-related accidents have also been reported from different parts of the state.

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानने लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना।

रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर के वक् वक् चैनल से FM रेनबो प्राइमरी चैनल DRM ते DTH चैनल से ये नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल ते 20 सितंबर तो 3 अक्टूबर तक एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।

0: प्रोग्राम चल रही जी, फिल्म संगीत वेला हो गया एक छोटे जहे अंतराल दा।
1: मन की बात माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करनगे अपने मन की बात ऐतवार 27 सितंबर दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इसनू प्रसारित करनगे नालो नाल। नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर FM 102.7 मेगाहर्ट्ज DTH दी AIR पंजाबी सेवा DRM 864 किलोहर्ट्ज FM 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती FM 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर FM 100.9 मेगाहर्ट्ज ते FM 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे। इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे। सुनना जरूर मन की बात।

बिल्कुल जी, अज का यह सफ़र हूँ अपने आखिरी पड़ा ती है। 1970 की जोनी मेरा नाम देवानंद जी दे करियर दियाँ उन्हें यादगार फिल्मों के विचों एक। 2023 विच उन्हां दी जन्म शताब्दी के मौके पर हुए विशेष फिल्म फैसटिवल दे विच CID गाइड ज्वेल थीव जोनी मेरा नाम उन्हां दियां माइलस्टोन फिल्म्स दे विच शामिल कीतियां गईयां। देवानंद साहब की जिंदगी फिल्मी सफर नूं याद करदे हुए आओ हुण सुणदे हां ये खूबसूरत गीत।

0: सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर दे वक वक चैनल्स दे FM रेनबो प्राइमरी चैनल DRM ते DTH चैनल्स दे इदे नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल ते 20 सितंबर तो 3 अक्टूबर तक एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।
1: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं।

आज भगत सिंह का 119वां जन्मदिन है, जिसे पंजाब के किसी शहर में बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है।

0: हो कितने तारे तारे कंबे तारे दी लंदन दी लंदन दी हो।
1: इस जन्मोत्सव में भगत सिंह की आत्मा भी शामिल है जो इस भीड़ में बहुत ही अकेली वह सहमी हुई है।
2: अरे हटो हटो, निकलने दो मुझे, मुझे जाने दो, जाने दो मुझे, क्या कोई रास्ता नहीं है?
3: कौन? भगत? तुम?
2: बापू? आप?
3: अरे नहीं नहीं, सिर्फ गांधी कहो। बैठो, नौजवानों के लिए तो गांधी यही है ना, दुबला मरियल सा जो चलता कम रुकता ज्यादा, कदम कदम पे समझौता।
4: ऐसा तो नहीं बापू, भले कितने ही मतभेद रहे हों आपसे, लेकिन इस देश की मुर्दा रूह में जो जान आपने फूंकी वो भुला दें, नजरअंदाज कर दें, ऐसे एहसान फरामोश भी नहीं हम।
3: आप लोगों की कुर्बानी और देश प्रेम का मैं कायल रहा हूँ हमेशा से, लेकिन वो रास्ता बदी को बदी से हटाने का कायल नहीं कर सका मुझे। जज्बों का, जवानी का, जोश का रिश्ता है, परंतु उम्र नहीं होती जज्बों की।
4: माफ करें महात्मा, हम कोई निरे पुरे जज्बाती सपनसाज नहीं थे, शायद हमारे रास्ते अलग अलग थे।
3: मेरे लिए वो कोई राजसी लड़ाई भर नहीं थी, एक तड़प थी सत्य को पाने की। मेरे वो प्रयोग सत्यों से नहीं, मेरे ही प्राणों के संग थे, जो नबज के चलते कभी रुके ही नहीं।
4: मैं जानता था अकेले जाना होगा साबरमती के संत को।
3: मेरा राम राज्य कहीं बाहर नहीं, लोगों के हृदय से शुरू होता है। डरे हुए दिलों में निर्भयता की ज्योत इस परिवर्तन के बिना

पूरन स्वराज, तुम्हारा वो इनकलाब सब जैसे बेमाने था मेरे लिए, लेकिन कुछ लोग मुझे तुम्हारा विरोधी ही समझते रहे। मुझे आज भी याद है 24 मार्च 1931 का वो दिन, जब लाहौर में तुम्हारी मौत से दुखी कुछ नौजवानों ने मुझे काले फूल भेंट किए थे।

0: ये लीजिए हमारी तरफ से ये काले फूल लीजिए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आप चाहते तो उन्हें बचा सकते थे, लेकिन आपने उन्हें नहीं बचाया।
1: अपना खून देकर भी उस कलंक को मिटा नहीं सकता, मैं नहीं मिटा सकता। यही बात तो मैं हिज एक्सीलेंसी इरविन तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन डरा हुआ आदमी जिसे अपनी सत्ता छिन जाने का भैंसता रहा हो, हर पल वो सुन नहीं पाता, बहरा हो जाता है।
2: उन्हीं बहरे कानों को सुनाने के लिए तो वो धमाका किया था हमने, किसी को मारने या आहत करने के लिए नहीं। हम चाहते तो साइमन को मार सकते थे, जो वही असेंबली में हमारे सामने बैठा था।
1: लेकिन दुश्मन को उसी के हथियारों से मारना तो अपनी ही शिकस्त पर मोहर लगाने वाली बात होती है। वो हथियार सिर्फ तबाह करना ही जानते हैं, तब भी और आज भी। लेकिन हम तो बनाना चाहते थे कुछ नया, सुंदर, जीवंत, नया हिंदुस्तान, नया संसार।
2: सपने तो हमारे भी यही थे महात्मा, लेकिन सच कहूं तो आपकी राजनीति और उन मनोवैज्ञानिक तजुर्बों को हम ना तब समझ पाए थे और ना अब।
1: भगत, गलत साधन कभी सही अंजाम को नहीं पहुंचाते। हां, जीत का भ्रम जरूर पैदा करते हैं, लेकिन वो भ्रम किसी भी हार से ज्यादा भयानक होता है, खतरनाक।
2: लेकिन क्या हुआ आपके उन प्रयोगों का, क्या निकला? कहीं कोई परिणाम, सफलता, कुछ भी तो नहीं? पूरा देश, पूरी दुनिया सामने है।

0: अरे ये लोग तो यहाँ तक भी आ पहुँचे।
1: क्यों, क्या हुआ? खुश नहीं हो तुम? सदी से ज्यादा समय बीत गया, लंदन तो अब भी कांप रहा है। लंदन क्यों, वाशिंगटन भी, लेकिन तुम खुश नहीं हो?
0: किसी को डरा हुआ देखकर कोई खुश कैसे हो सकता है, कैसे महात्मा?
1: लेकिन तुम तो डराना चाहते थे ना उन्हें, खौफ देखना चाहते थे दुश्मन की आंखों में।
0: मैं कोई दहशतगर्द नहीं, क्रांतिकारी हूँ, क्रांतिकारी जिसका दिल दुनिया के हर मजलूम के लिए धड़कता है, तड़पता है।

0: सांड्रस मारा गया, हत्या के बदले हत्या।
1: हां हां मैंने किया ये सब किसी को डराने के लिए नहीं, उस आतंक को तोड़ने के लिए जिसे हमारी रूह में बीज रहे थे वो लोग।
0: डर से तो हिंसा ही निकलती है भगत, और हिंसा से, हथियारों से ना तो सुरक्षा खरीदी जा सकती है ना निर्भयता। नहीं तो आज ये तुम्हारी दुनिया सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह होती। हथियारों के ये अंबार, एटमी लामो लश्कर जो हिफाजत के नाम पर इकट्ठे किए, एक रात की नींद नहीं खरीद सकते। देखो, मुंह मत फेरो, हिंसा की नींव पर खड़ी डर की इस इमारत को गौर से देखो।
2: आज की ताजा खबर।
3: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यूएन जनरल असेंबली में बड़ा ऐलान, ईरान को नेस्तनाबूद करने की दी धमकी, मानवता पर बड़ा खतरा, परमाणु हथियारों को प्रयोग में लाने की बात। यूक्रेन ने रूस पर 1000 ड्रोनों से किया हमला, हमले से रूस में भारी तबाही। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम न रोकने का किया ऐलान। हॉर्मुज एक बार फिर बंद, हुती आतंकियों ने उड़ाई सऊदी अरब की पाइपलाइन। हॉर्मुज बंद से संसार में बड़ा ऊर्जा संकट, अर्थव्यवस्था चरमराई।
1: बस बस बस
0: इतना ही नहीं, अब संसार के कुछ नेताओं को भी सुन लो। अमेरिकी राष्ट्रपति को सुनो, क्या कह रहे हैं ये।
4: But I have a big decision to make. Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? When it comes to Iran, it doesn't even enter my mind. The only thing that does is that Iran will never have a nuclear weapon. The entire country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night.
0: Ab Iran ka bhi jawab sun lo.
5: Bayad bedanat ke sar kham nakhahand kard va mutajavizan ra pashiman khahand kard. Inan chizi ke bayad ترامپ و کسانی که میخوان قلدری بکنن بفهمن ما آماده گفتگو هستیم، اما بدانن که زبان زور رو نخواهیم پذیرفت.
0: ایران کے راشٹرپتی کی بھاشا اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو میں سمجھا دیتا ہوں بھگت. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا نیوکلیئر کاریکرم نہیں روکیں گے، کبھی نہیں جھکیں گے کسی کے سامنے. ये यूक्रेन के राष्ट्रपति भी कुछ कह रहे हैं, इनको भी सुन लो।
6: Ukrainians understand that this winter could be very harsh for us, but in response we will have no choice but to make it painful for Russia too. Putin is always looking for someone who can help him kill more people for every kilometer of land, take more territory, attack another country instead of simply stopping and running his own country. After all of this, can you even imagine him without war? He is patient zero, the one from whom this idea of war keeps spreading further.
1: Bas, bas, bas! Bas kijiye Mahatma. Khuda ke liye, hame inse mat milaye. Hum aatanki nahi, insani khoon bahane ka afsos hame bhi tha. Lekin hum kya karte? Kya karte hum? कोई क्या ही कर सकता था जिसके

0: निहत्ते बूढ़े बाप को उसी की आंखों के सामने कत्ल कर दिया जाए? उससे कोई दुश्मनी नहीं थी हमारी। हम व्यक्ति को नहीं, विचार को मारना चाहते थे, साम्राज्यवाद के उस घिनौने विचार को।
1: गोली से? विचार को गोली?
0: हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो भी तो उसी स्टेट मशीनरी का हिस्सा था जो हर रोज कितने ही मासूमों को रौंद रही थी।
1: हाँ था, उस मशीनरी का हिस्सा था वो, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, किसी का मंगेतर, बाप, बेटा या भाई भी था। और जब भी कोई कत्ल होता है तो एक नहीं, ये सब मरते हैं, सब।
0: भावुकता की ये चाशनी बहुत मीठी लगती है महात्मा, बहुत मीठी, लेकिन ये मिठास हमारे अंदर की उस कड़वाहट को नहीं मारती जो सदियों की गुलामी ने हमारी रूह में भर दी थी, नहीं मारती है उसे।
1: मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं बेटा। भगत रुको, अरे कहां जा रहे हो तुम?
0: कोई नहीं समझता, तुम भी हमें सरफिरे ही समझते हो, बम फोड़ने वाले सरफिरे। सब ऊपर की हिंसा को ही देखते हैं महात्मा, भीतर के दर्द को छूकर कोई नहीं देखता।
1: अरे रुको, तुम जानना चाहते थे ना क्या हुआ उन प्रयोगों का? सत्य के साथ मेरे उन अजीबोगरीब तजुर्बों का?
0: मुझे जरूरत नहीं महात्मा, मैं तो पहले से जानता था कि सिवाय नाकामी के उनका कुछ और हश्र हो ही नहीं सकता था। शुक्र है मौत के उन सौदागरों का, अपने सपनों की लाशों के संग तुम्हें अकेला असहाय खड़ा देखने को मैं जिंदा नहीं था।
1: हाँ, मैं अकेला था, भय और हिंसा के उस तांडव में जो नोआखली में हुआ,

0: देश टुकड़ों में बटा, हर मोड़ हर चौराहे पर खून बहा मेरे प्रयोगों का। उस वक्त मैं बिल्कुल अकेला था। अकेला तो मैं उसी वक्त हो गया था जब आजाद भारत को शस्त्रों से आजाद रखने के सवाल पर सब साथी एक एक करके छोड़ गए मुझे। हां, मैं अकेला था, निर्बल लेकिन असहाय कभी नहीं। सत्य के साथ जीने मरने की इच्छा हमेशा मेरे साथ रही। लेकिन भगत, एक प्रयोग तुमने भी किया था, बहरों तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयोग, बम फोड़कर।
1: Now the decision on the bell is going to be announced.
2: Honorable members, public safety bill or state dispute bill?
3: वो सिर्फ धुएं का बम था
4: जो सोच समझकर खाली जगह फेंका गया ताकि कोई भी जख्मी ना हो। हम तो सिर्फ उन्हें जगाना चाहते थे जो ज्वालामुखी के दहाने पर बैठे अहंकार के नशे में चूर जश्न मना रहे थे। असली बम तो वो इश्तिहार था जिसे मैंने रात भर जागकर न मालूम कितनी बार लिखा ताकि कोई शंका न रहे। हम उन लोगों की आवाज बनना चाहते थे जिनकी आखिरी हिचकी तक को दबाने की कोशिश था वो ट्रेड डिस्प्यूट बिल। हम जानते थे कि अचानक धमाका क्रांति के सच्चे आदर्श को दागदार कर सकता था, लेकिन खतरा तो उठाना ही था, प्रयोग जरूरी था।
0: अंजाम नहीं जानना चाहोगे अपने उस प्रयोग का?
4: हाँ,
0: क्या हश्र हुआ उसका, देखना नहीं चाहोगे?
4: हाँ, नहीं नहीं,
0: आओ मेरे साथ एक प्रयोग और।
4: ये तुम मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, ये मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ ये।
0: देखो, देखो गौर से।

0: हर मोटर कार स्कूटर मोटरसाइकिल पर तुम्हारी ही तस्वीर। पूछो तो, पड़ा है किसी ने तुम्हारा इश्तेहार? ये देखो, पर्दे की ओट में पिस्तौल लिए घात लगाए कौन है ये? ये कुछ लिखा है इसके नीचे।
1: ओ हट पीछे, मित्रां दी मुच्छ दा सवाल है।
2: ये सब तो बहुत पीछे छोड़ आया था मैं, फिर बार बार आगे क्यों आ जाता है? क्या और कोई रहा नहीं महात्मा?
0: भगत, उठो भगत, क्या खोज रहे हो?
2: इस शोरोगुल में इनकलाब के वो मेरे मायने कहीं गुम हो गए हैं, उन्हें ढूंढ रहा था।
0: नाकाम तो हम सब हुए हैं, प्रयोग तो हम सब के अधूरे हैं। वो देखो गौर से, हथियारों की फसीलों में चिने भय से पीले हुए हाकिमों के चेहरे, जो फांसियों सलीबों को ढोते ढोते थक गए। कहीं इराक तो कहीं अफगानिस्तान, कहीं ईरान तो कहीं अमेरिका, कहीं रूस, कहीं यूक्रेन। तजुर्बे तो उनके भी कामयाब नहीं हुए। उधर देखो, तकनीक और विज्ञान की चकाचौंध से चुंधियाई आंखें, ये हमारी ही आंखें हैं, जनसाधारण की, जो मानव जीवन की जीवंत समस्याओं का हल मुर्दा तकनीक में, मशीन में ढूंढते हैं। हाँ हाँ भगत, बहुत तरक्की की है हमने, घर में बैठे बैठे चांद से नाता जोड़ सकते हैं, लेकिन पड़ोस में खड़ी झोंपड़ी का दर्द दरवाजे पर दस्तक देते देते दम तोड़ देता है, दिलों तक नहीं पहुंचता। कोई तकनीक इस फासले को

0: भगत, तुम रुक क्यों गए?
1: माफ करें महात्मा, शायद हमारी राहें आज भी अलग हैं।
0: ये राह किसी की नहीं भगत, यहां सब राहें मिल जाती हैं। ये राह है प्रयोग की, सत्य के साथ एक अदद प्रयोग और करना ही होगा। बहरी आत्माओं तक आवाज पहुंचाने का एक और प्रयास करना ही होगा। ये राह ना तो मुझसे शुरू हुई, ना ही इसका अंत मुझ पर होगा। ये अनंत है, सत्य की तरह अनंत असीम।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 10:30 होए ने। जी हाँ, वेला हो गया है तुहाडे पसंदीदार प्रोग्राम हैलो फरमाइश दा। हैलो फरमाइश प्रोग्राम सुनन वालियां नूं रुपिंदर दी प्यार परी नमस्कार। जी हाँ, उही प्रोग्राम जिस दे विच तुसी अपनी हैलो हैलो दे नाल शामिल हो सकते हो, यानी कि फोन कॉल दे जरिए जुड़ सकते हो। 0181-43-173 नंबर कर रहा जी तुहाडा इंतजार, ते नाल ही नाल खूबसूरत गीत मेरे को बिल्कुल रेडी, बिल्कुल तैयार। ते फिर तुसी भी हो जाओ तैयार इस प्रोग्राम दे विच शामिल होने दे लई। ते तद तक गाइड फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर होना दी आवाज़ दे विच।

0: समय का ध्यान रखण। लो जी, इन्हां सूचनावां तो बाद एक बार फिर तो तुहाड़ा स्वागत करदे हां प्रोग्राम हैलो फरमाइश दे विच। हैलो,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी।
1: हाँ जी, वो सुना दो अपने लता मंगेशकर का ए मेरे वतन के लोगों जरा खबर लो।
0: बिल्कुल जी, यही सुनाऊंगी, पर उससे पहले अपना शुभ नाम बता दीजिए।
1: मेरा नाम है जगदीश शर्मा, गांव हीरा वाली फाजिलका से।
0: वाह जी वाह, फाजिल का तो फोन साड़ी स्टूडियोज दे विच मिल गया, तो बिल्कुल तो हाड़ी पसंद आ गई, तो हनु जल्दी दे नाल सुनाने आ प्रोग्राम दे विच फोन करने दे लिए शुक्रिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू।

0: श्री मुक्तसर साहिब तो फोन मिलाया
1: पेंड गोने आई
0: जी, ते फोन पहली बारी मिलाया?
1: हाँ जी पहली बारी लगे आई फोन, महीना आ गया लगे नहीं सीगा, ट्राई करी जाता है।
0: वाह जी वाह।
1: हाँ जी पहली बारी लगे आई।
0: चलो जी बहुत वधिया गल है, फोन कॉल मिल गई है, ते दस दियो अपनी पसंद का गीत सानू।
1: ठीक है जी।
0: हाँ जी गीत दस दियो।
1: गीत साजन फिल्म का सुना दी।
0: साजन फिल्म का।
1: हाँ जी बहुत प्यार करते हैं तुमको सुना।
0: ठीक है जी, यही सुनवा रही हूँ, फोन करने के लिए शुक्रिया। अनुराधा पोडवाल होना दी आवाज़ साजन फिल्म का ये गीत, प्रोग्राम का ये आखिरी फरमाइशी गीत।

0: ਇਸੇ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਇਸੇ ਦੁਆ ਇਸੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਰਹਿਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਬਰਕਰਾਰ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੇ 11 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਵੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਦਾ। ਆਓ ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा।

0: इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV केप डाओ पर हमले का उल्लेख कर रहे थे। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हुई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी उल्लेख किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थी। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। अमेरिका के 22 महान्यायवादियों के एक गठबंधन ने ट्रंप प्रशासन द्वारा कुछ H-1B वीजा आवेदनों पर $1,00,000 से अधिक का शुल्क लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। ये चुनौती भारतीय पेशेवरों और उन अमेरिकी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है जो उच्च कुशल पेशेवरों की भर्ती के लिए H-1B कार्यक्रम पर बहुत अधिक निर्भर हैं। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: ओडिशा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी अक्वापदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इधर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से हुई भारी बारिश के कारण राज्य के बस्तर संभाग सहित मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में नदियां उफान पर हैं। इसके कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उधर उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक जीवन में पूरी निष्ठा

0: बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से हुई भारी बारिश के कारण राज्य के बस्तर संभाग सहित मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में नदियां उफान पर हैं। इसके कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उधर उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक जीवन में पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बंगाल पुनर्जागरण के महान स्तंभ ईश्वरचंद विद्यासागर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विद्यासागर ने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का एक सशक्त माध्यम बनाया। जापान में एशियाई खेलों में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ईरान को 37-34 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। आज फाइनल में भारत ने मध्यांतर तक 22-16 की बढ़त बना ली थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले सवेर दे 11:05 हो चुके ने। हुण वेलाई प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी दा, आओ सुनदे हां।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिसिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्यकर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महा

0: निदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रियसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: छत्तीसगढ़ में पिछले तीन दिनों से हुई भारी बारिश के कारण राज्य के बस्तर संभाग सहित मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक जीवन में पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बंगाल पुनर्जागरण के महान स्तंभ ईश्वर चंद्र विद्यासागर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का एक सशक्त माध्यम बनाया। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। जापान में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह फोगाट और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। भारत की पुरुष कबड्डी टीम का आज फाइनल में ईरान के साथ मुकाबला होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मांडविया ने मैराथन में रजत पदक जीतने पर सावन बरवाल को बधाई दी है। एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष मैराथन में सावन बरवाल ने रजत पदक जीता। आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बसंती देवी से उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनरुद्धार के क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले दोपहर दे 12:05 हो चुके ने। हुण पेश है प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: नमस्कार। प्रोग्राम वास्ते वेड़े लैके अर्चना हाजिर
1: और ज्योति भी हाजिर है जी लैके प्रोग्राम वास्ते वेड़े। अर्चना की हाल चाल ने?
0: हाल चाल ठीक ने, तुसी सुनाओ तुहाडे की हाल चाल ने?
1: भाई देखो मेरे तो बहुत वधिया हाल चाल ने। त्योहारां दा समा है, बदलदी रुत्त है, तो हुण देखो किन्नी सारी शॉपिंग होनी है ना। तो अर्चना मैं ना शॉपिंग की शुरुआत जिहड़ी कीती है ना, एक मैं जूट का थैला लैके आई हाँ, तो एक मैं लैके आई हाँ कपड़े का थैला।
0: बिल्कुल जी, तुसी ये ठीक आख्या, क्योंकि जिहड़ा प्लास्टिक है वह साडे पर्यावरण वास्ते बिल्कुल भी चंगा नहीं है, तो इस करके जरूरत है असी कदे भी जाने मार्केट दे विच, यहां ता असी कागज़ दे बने हुए जड़े बैग्स ने उन्हां दा इस्तेमाल करिए ते कराइए भी, ते उहदे नाल नाल या असी अपने घरों जड़े थैले हुंदे सी ना पहला पहले पुराने वेलियां दे विच कपड़े दे थैले, उन्हां दा इस्तेमाल करना शुरू करिए।
1: और देखो गल किन्नी सोहणी होई कि जदों मैं थैले लैके आई ना, ते साडे गवांढ दे विच जिहड़ियां भैणां ने उन्हां ने भी मैनूं कहा भी बड़े सोहणे थैले लैके आए, असीं भी लैके आवांगे। और देखो साडे इह प्रचलन है कि असीं देखा देखी बहुत कम करदे आ, ते जदों असीं देखा देखी असी शुरू

0: रोडू पोडू देख के सानू पै जांदी ए गश।
1: पापा दी उमर भर दी कमाई, उन्हां दी सिख्या
2: अते हमेशा साडी फिकर करना।
3: वैसे उन्हां दी इक जमा पूंजी बैंक विच भी है,
1: पर क्लेम करना मुश्किल होवेगा।
2: हुण होर भी आसान हो गया है। बैंक दी वेबसाइट जा शाखा ते जाओ, क्लेम फॉर्म भरो, दस्तावेज जमा करो, 15 दिनां च रकम प्राप्त करो, अते नॉमिनी नाल क्लेम दा निपटारा होवे होर भी आसान।
4: आरबीआई कहिंदा है,
2: जानकार बनो, सचेत रहो।
5: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
6: जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, यह सब जानने लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर के वक् वक् चैनल्स से, FM रेनबो, प्राइमरी चैनल, DRM ते DTH चैनल्स से। ये नाल नाल अपडेट्स जाणोगे FM रेनबो चैनल से 20 सितंबर तो 3 अक्टूबर तक। एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।
7: स्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तों विशेष प्रसारण होण कारण अज तों 16 अक्तूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समें विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्तूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिलों जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, मलेरकोटला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर, मोगा अते फरीदकोट लई कॉन्ट्रैक्ट आधार ते पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट्स दे अहुदे लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मंग कीती जांदी है। अर्जी फार्म लैण अते भेजण लई पता हेड ऑफ ऑफिस आकाशवाणी नेड़े बीएमसी चौंक जलंधर ए। उम्मीदवार अर्जी फार्म समेत वधेरे जानकारी आकाशवाणी दी वैबसाइट www.newsonair.nic.in ते जाके वैकेंसी कॉलम तो भी डाउनलोड कर सकदे ने। अर्जियां भेजण दी आखरी तारीख 7 अक्टूबर 2026 है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार नहीं है।
4: जी, इस ब्रेक तो बाद फिर तो स्वागत है जी तुहाडा अपने प्रोग्राम वस्ते वेड़े ते सिलसिला चल रहा झांजरां दे बोर ते अगला खत जिहड़ा आया है सानू आया जी अनारकली बाजार जगराओं तो। लिखण वाले ने सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गैवी, भाई सुच्चा पाठक जी। तो अगला जिहड़ा खत सानू आया वो आया जी सानू मलोट कैंप पंजाब तो। लिखण वाले ने सतीश मेगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाडो, लखविंदर संधु ते महावीर संधु, गुरचरण गरोवर ते उना दा सारा परिवार जी। सबने फरमाइश की है अमरिंदर गिल होना।

0: जी बिल्कुल जी, भाबो तो बहुत कुछ कहती है। ते अगला खत जिहड़ा सानू आया जी, वह आया सानू मुहम्मदपुर सूत्र ढानी रतिया तो। ते लिखण वाले ने जीवन बुक, शंटी बुक, सिमरन बुक, कौशल्या रानी, गुरचंद्र बुक, बबलू बुक, कुलदीप बुक, किरत बुक, भुवन खेड़ा ते बलवीर सिंह जी। ते अगला खत सानू आया है मलोट तो। ते लिखण वाले ने कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमन गिल, जिला मुकसर पिंड मोहल्ला तो, पाल गिल, गुरदयाल गिल, साधु गिल, दिशा सोना ते उन्हां दा सारा परिवार। ते अगला खत आया जी इसे फरमाइश वास्ते, वो आया सानू बालद खुर्द तो, भवानीगढ़ संगरूर तो। लिखण वाले ने अश्विनी गर्ग, विनोद गर्ग, प्रियंका गर्ग ते उन्हां दा सारा परिवार
1: जी। और ये सारे जने सुनना चाहते ने मिस पूजा की आवाज़ के गीत। और ये फरमाइश आई है जी पिंड कैरो, जिला तरन तारण तो, गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता रजनी, शम्मी आकाशदीप, अनहद ते पुत्रा गुरबख्श, पिंड अमीर शाह वाला तो मुख्तियार सिंह ते इन्हां दे बहुत सारे साथी। ये ने जी अरायन तो डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल, बिमला जयपाल, सोनू, ममता, मोक्ष, दिशा, सुशांत ते विक्रम जयपाल। आओ सुनते हैं इन्हां सब दी रली मिली फरमाइश से मिस पूजा का गाया ये गीत।
2: जागो विच नची नी मैं

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵੇੜੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरियों को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 81वें सत्र में वैश्विक सहयोग को फिर मजबूत करने, सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और शांति, गरिमा तथा समानता के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्यकर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्प विकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।

0: प्रेषण कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इधर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में भी आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। जापान में रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। पुरुष कबड्डी के फाइनल में आज भारत और ईरान आमने सामने होंगे। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। भारतीय टीम ने 1763 अंक बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया। चीन 1773 अंक लेकर खेलों के रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक के साथ जीता और जबकि कजाकिस्तान को कांस्य पदक मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मैराथन में रजत पदक जीतने पर सावन बरवाल को बधाई दी है। एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष मैराथन में सावन बरवाल ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज से आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले दोपहर दे 1:05 हो चुके ने। आओ हुण जानदे आं अज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां। दोपहर 1:15 ते प्रोग्राम पेश कीता जाएगा फौजी वीरां लई। दोपहर 2:03 ते रंगली धरती दे विच अज दे लोक गायक होणगे परमजीत सिंह सिद्धू ते साथी। शाम 4:02 ते तुसी सुनोगे प्रोग्राम खेड संसार। शाम 4:30 श्री दरबार साहिब अमृतसर तों शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करांगे। शाम 5:30 तुसी सरवण करोगे साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार। शाम 6:30 कृषि विभाग पंजाब वालों स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम पेश कीता जाएगा किसान वाणी। आज दे इस प्रोग्राम दे सिलसिले होणगे किसान समाचार, किसान संदेश, कमाद दा वध झाड़ ते रिकवरी लई उपराले। इस बारे जानकारी देणगे डॉक्टर गुलजार सिंह संघेड़ा। शाम 7:00 तुसी आनंद माणोगे कुछ पंजाबी गीतां दा। शाम 7:10 ते दिल्ली केंद्र तो प्रोग्राम पेश कीता जाएगा जन सेवा से देश सेवा। शाम 7:45 ते साहित्य सुधा प्रोग्राम तहत तुसी सुनोगे वार्ता संस्कृत साहित्य विच सेहत संभाल। वार्ताकार होणगे डॉक्टर विजय गुप्ता कुमारी। शाम 7:55 ते स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम पेश कीता जाएगा लम्हे। रात 8:05 ते तुसी सुनोगे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। रात 9:15 प्रोग्राम आएगा स्पॉटलाइट ते 9:30 विज्ञान भारती दिल्ली केंद्र तो। रात 10:00 दिल्ली केंद्र तो ही वीवियां एशियन खेडां दियां मुख झलकियां तुसी सुनोगे। रात 10:20 ते शास्त्रीय संगीत दा प्रोग्राम होएगा सुर साधना। आज दे इस प्रोग्राम च तुसी सुनोगे पंडित शिव कुमार शर्मा दा संतूर ते वजाया राग सोनी ते धुन पंचम से गाए। इस अनाज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां। इस तों इलावा हिंदी, पंजाबी ते अंग्रेजी समाचार अपने अपने समें ते प्रसारित कीते जाणगे।

जय हिंद फौजी वीरो। हर रोज की तरह अज भी असी हाजिर हाँ लैके तुहाडे मनोरंजन लिए कुछ हिंदी फिल्मी गीत। उम्मीद करते हाँ कि तुहानू यह गीत पसंद आते होंगे और तुसी इंतजार करते होगे अपने लिए प्रसारित कीते जाते इस खास प्रोग्राम का। तो आओ जी इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं तो सुनवाते हैं तुहानू फिल्म तेरी मेहरबानिया का यह गीत जिसनू आवाज़ दिती शब्बीर कुमार ते अनुराधा पौडवाल ने। इस गीत दे बोल लिखे HS बिहारी ने ते संगीतबद्ध कीता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
3: आकाशवाणी जलंधर ते प्रोग्राम चल रहा है जी फौजी वीरां लई। तो फौजी वीरो, अगला गीत तुहाडे लई पेश करन जा रहे हां फिल्म करमा तों। आवाज़ कविता कृष्णमूर्ति दी, गीत दे बोल आनंद बख्शी दे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल दा।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानने लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर दे वक वक चैनल्स ते FM रेनबो, प्राइमरी चैनल, DRM ते DTH चैनल्स ते। इदे नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल ते 20 सितंबर तो 3 अक्टूबर तक। एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।
3: ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ।
4: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
5: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
4: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
5: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
6: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
7: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
5: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जानी कीता।
7: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
5: HIV
7: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
8: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 10

0: 97 ते कॉल करो. पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी.
1: आकाशवाणी जलंधर ते तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम फौजी वीरां लई. ते फौजी वीरो, अगला गीत पेश है थोड़े लई फिल्म खुद्दार तो आवाज़ां किशोर कुमार ते लता मंगेशकर दियां. गीत दे बोल मजरू सुल्तानपुरी दे ते संगीत राजेश रोशन दा.

0: ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ 37-34 ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੀ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਅਤੇ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਪਿਸਟਲ ਮਿਕਸਡ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸੁਰੁਚੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ 81ਵੇਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੁੰਨਿਆ ਸਲੀਲਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਆਲਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮ 6:20 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: अब ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं हबीब रहमान। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मसनूई जहानत के जरिए पैदा होने वाले इम्कानात तलाश करने की अपील की है। जनाब जयशंकर ने न्यूयॉर्क में बैनुल अक्वामी अमन सलामती के पस मंजर में मसनूई जहानत के जोखिम से मुतालिक तकरीब की मुस्तरक सदारत की। जनाब जयशंकर आज दोपहर न्यूयॉर्क में 81वीं अक्वामी मुत्तहिदा जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी ने तरक्की पजीर मुल्कों के लिए ज्यादा नुमाइंदगी की वकालत करते हुए अक्वामी मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में फौरी इस्लाहात की अपील की है। भारतीय महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। ईरान ने अमरीका की जानिब से शराइत मान लिए जाने की सूरत में 7 दिन के अंदर आबनाए हुरमुज दोबारा खोलने से मुतालिक तजवीज पेश की है। और एशियाई खेलों में खवातीन की भारतीय कबड्डी टीम ने ईरान को शिकस्त देते हुए सोने का तमगा जीता है। वहीं भारत ने खवातीन के निशानेबाजी और मर्दों के मैराथन में भी चांदी के 2 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर जयशंकर ने मसनूई ज़हानत AI से हासिल इम्कानात को बरूए कार लाने और उसके असरात का अंदाज़ा लगाने और ख़तरात को कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर मौसूफ ने एक प्रोग्राम के दौरान ये तबसरा किया। ये प्रोग्राम बहरी सलामती पर खसूसी तवज्जो के साथ बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के तनाज़ुर में AI के मौजू के तहत मुनाकिद किया गया, जिसकी सदारत वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर और यूनान के उनके हम मनसब जॉर्ज गेरा पेट्राइटस ने मुश्तरका तौर पर की। डॉक्टर जयशंकर ने अक़वामे मुत्तहिदा में इस बात का इरादा किया कि मसनूई ज़हानतें आए और बहरी सलामती भारत की अहम तरजीहात में शामिल हैं। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि नई दिल्ली एलामिये में इकतसादी तरक्की और समाजी फलाह बहबूद के लिए AI के वसाइल की सभी के लिए दस्तियाबी, महफूज और काबिल एतमाद निज़ाम की तामीर, इंसानी सलाहियतों को परवान चढ़ाने और AI से इस्तफादा करने पर जोर दिया गया है। वजीर खारजा जयशंकर आज न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें आला सतही इजलास से खिताब करेंगे। यह इजलास एतमाद की बहाली, बदलाव का इंतजाम, सभी के लिए कार आमद अक़वामे मुत्तहिदा के तहत मुनाकिद किया जा रहा है। अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली 193 रुकन ममालिक के सुदूर, उज़राए आज़म और सीनियर नुमाइंदों को यकजा करती है, जो अहम बैनुल अक़वामी मामलात पर अपनी तरजीहात और मौक़िफ़ वाज़ह करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके योम पैदाइश के मौके पर खराज

0: अजय अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि जनाब सिंह ने अवामी जिंदगी में बहुत साल गुजारे और मुल्क के लिए खुद को वक्फ करते हुए खिदमात अंजाम दी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज केरलम पहुंचेंगे। जनाब शाह आज दोपहर 2 बजे कुंद्रा में इमदाद बाहिमी के शोबे में खवातीन को बाइख्तियार बनाने वाली पहल का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद मरकजी वजीर दाखिला अमृता पुरी में अमृता कीर्ति पुरस्कार तकरीब में शिरकत करेंगे। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन कल केरलम का दौरा करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अजीम बंगाली समाजी मुसले ईश्वर चंद विद्यासागर को आज उनके योम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। जनाब शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विद्यासागर ने तालीम को समाजी तब्दीली का ताकतवर जरिया बनाया। उन्होंने कहा कि बरना परिचय के जरिए विद्यासागर ने नए बंगाली हरूफ तहजी पेश किए और बेशुमार बच्चों के लिए तालीम के दरवाजे खोले। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साइंसी और सनाती तहकीक की काउंसिल CSIR के 85वें योम तासीस के मौके पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और आसामी जबान में 5 नए मशहूर साइंसी जरीदों का आगाज किया है। इन जरीदों की अशात CSIR और साइंसी कम्युनिकेशन और पॉलिसी रिसर्च के भारतीय इदारे की जानिब से की गई है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने अक्वामे मुत्तहदा की सलामती काउंसिल में इस्लाहात की फौरी जरूरत पर जोर दिया है ताकि इस इदारे में तरक्की पजीर मुल्कों की ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जा सके। न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली के 81वें इजलास के मौके पर G77 उजराए खारजा की 50वीं सालाना मीटिंग के मौके पर भारत की तरफ से बयान देते हुए जनाब मिश्री ने आलमी खित्ते जनूब के मुल्कों में जाबतों पर अमलावरी करने वाले मुल्कों के बजाय जाबते तश्कील देने वाले मुल्क बनाने की खातिर मुश्तरक इकदाम पर जोर दिया है। उन्होंने आवाम पर मरकूज और तरक्की पर मबनी कसीर रुखी निजाम में G77 की मुसलसल अहमियत पर भी जोर दिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत में सेक्रेटरी पुनिया सलीला श्रीवास्तव ने न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहदा की आला सतही मीटिंग में आलमी सतह पर वबा से निपटने की तैयारी और कार्रवाई के तई भारत के आजम का इरादा किया। मीटिंग से खिताब करते हुए सेक्रेटरी मौसूफ ने हुकूमत और समाजी सतह पर वबाई बीमारियों की रोकथाम और कार्रवाई के तई भारत के मरबूत हिकमत अमली पर जोर दिया, जिसमें सेहत से मुतालिक मुमकिन तौर पर कई हंगामी हालात का इहाता किया गया है। उन्होंने सेहत से मुतालिक हंगामी सूरत हाल से मुअस्सर तौर पर निमटने के मकसद से निज़ाम को सहूलियात से आरास्ता करने की खातिर लेबोरेटरी नेटवर्क, हंगामी हालात में तालमेल, तिब्बी अफरादी कुव्वत और तिब्बी निगहदाश्त की सलाहियत के सिलसिले में भारत की तरफ से किए गए इकदाम के बारे में बताया। भारतीय महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। वहीं महकमे मौसमियात ने आज दिन में बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम के कुछ मकामात पर दरमियानी दर्जे से शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश की वजह से मामूलात जिंदगी मुतासिर हैं। महकमे मौसमियात IMD ने आज कई जिलों में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: बिहार के कई जिलों और पड़ोस में वाकई नेपाल के कुछ इलाकों में 4 दिन से जारी बारिश के सबब रियासत के कोसी, गंडक और बागमती समेत कई दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। सुपौल में वीरपुर कोसी बैराज के 40 गेट खोल दिए गए हैं। ये कोसी दरिया में पानी की सतह में इजाफे के तनाजुर में एहतियाती इकदाम के तौर पर किया गया है। इस दौरान मगरबी चंपारण में गंडक दरिया में पानी की सतह में इजाफा होने से नशेबी इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। गुज़श्ता 4 दिन के दौरान पटना और कई दीगर इलाकों में लगातार बारिश के सबब मामूलात जिंदगी भी मुतासिर हुए हैं। कई मकामात पर पानी भरने की इत्तला मिली है। पटना से सविता पारीक की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए कौनैन हैदर।
0: छत्तीसगढ़ में बस्तर डिवीज़न और वस्ती इलाकों समेत रियासत के कई अजला में 3 दिन से जारी शदीद बारिश के सबब दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। इंद्रावती दरिया खतरे के निशान से 7 फीट ऊपर बह रहा है। धमतरी जिले में गंगरेल डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। ईरान ने पेशकश की है कि अगर अमरीका ईरान की बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी खत्म कर दे, ईरान की तेल की फरोख्त पर से बंदिशें हटा ले और लेबनान समेत

बंदी पर अमल करे तो वो आबनाए हुर्मुज को दोबारा खोल देगा और 7 दिन के अंदर अंदर अपने न्यूक्लियाई प्रोग्राम पर बातचीत दोबारा शुरू कर देगा। जापान के नागोया में जारी एशियाई खेलों में कबड्डी में खवातीन की भारतीय टीम ने सनसनीखेज फाइनल मैच में आज ईरान को 34 के मुकाबले 37 से शिकस्त दी। इस तरह भारत ने अपना 3रा सोने का तमगा हासिल किया। इससे पहले भारतीय मैराथन खिलाड़ी सामन बारवाल ने मर्दों के मैराथन जुमरे में 44 बरस के वक्फे के बाद भारत के लिए चांदी का तमगा जीतकर तारीख रकम की। भारत ने खवातीन के 50 मीटर

0: के साथ ये कारनामा अंजाम दिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेल 2026 में मर्दों के मैराथन में चांदी का तमगा जीतने पर सावन बारवाल को मुबारकबाद पेश की है। इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने स्क्वाश में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। नौम्र भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह ने आलमी नंबर 6 जापान की सातोमी वातानाबा के खिलाफ मैच में जबरदस्त वापसी करते हुए फाइनल में दाखिला हासिल कर लिया। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मसनू जहानत के जरिए पैदा होने वाले इम्कान तलाश करने की अपील की है। जनाब जयशंकर ने न्यूयॉर्क में बैन अवी अमन सलामती के पस मंजर में मसनू जहानत के जोखिम से मुतालिक तकरीब की मुश्तरका सदारत की। जनाब जयशंकर आज दोपहर न्यूयॉर्क में 81 में अकवाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली से खताब करेंगे। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी ने तरक्की पदीर मुल्कों के लिए ज्यादा नुमाइंदगी की वकालत करते हुए अकवाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में फौरी इस्लाहात की अपील की है। भारतीय महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते आकाशवाणी दाई जलंधर केंद्र है। एक बारी फिर तो स्वागत है जी फौजी वीरों थोड़े अपने प्रोग्राम दे विच। ते आओ फिर शुरुआत करते हैं, सिलसिला उही शुरू रखते हैं हिंदी फिल्मी गीतां दा। अगला गीत थोड़े लिए पेश है जी फिल्म शेरशाह तो आवाज़ा जुबिन नौटियाल ते असीस कौर दियां। इस गीत दे बोल ते इस दा संगीत दोनों ही दिता तनिष्क बागची ने।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। ईरान ने अमेरिका द्वारा उसकी शर्तें मानने पर 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडबरू मध्य खोलने का प्रस्ताव दिया। अमेरिका ने प्रस्ताव खारिज किया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गिरा पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट।

0: के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्पविकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं।
2: सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने कोविड महामारी से मिले अनुभवों को दीर्घकालिक निवेश, मजबूत संस्थागत क्षमता और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलने पर बल दिया। उन्होंने आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों तक सभी देशों की समान और उचित पहुँच की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन की खुराक लगभग 100 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को उपलब्ध कराई। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
0: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों, जिनमें अदृश्य पीड़ित भी शामिल हैं, को एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहां पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि बच्चों में नशे की लत को केवल जनस्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बल्कि बाल संरक्षण के विषय के रूप में भी देखा जाना चाहिए। वे आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन ए में 16,726 अनधिकृत निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने शहर के 3 अन्य क्षेत्रों में अवैध निर्माण को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 358 तालुकों में से 265 को सूखा प्रभावित घोषित किया है, जो राज्य का 74% हिस्सा है। 32 जिलों में बारिश की कमी और लंबे समय तक सूखे की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों, खासकर उत्तरी जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
3: लगातार हो रही बारिश

0: उत्तरी ओडिशा में तबाही मचा दी है, जिससे बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। आखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे भद्रक और जाजपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण केंदुझर में जोड़ा के पास राणासाला घाट पर भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जहां चट्टानों और मिट्टी के गिरने से लोगों और वाहनों को आवाजाही के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है।
2: राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले चार दिनों से हो रही लगातार बारिश से कोसी, गंडक और बागमती समेत कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए एहतियातन वीरपुर कोसी बैराज के 40 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना समेत कई स्थानों पर हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उत्तर प्रदेश में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 63 जिले तेज बारिश की चपेट में हैं और पूरे राज्य में सिर्फ एक दिन में औसत से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। सभी जिलों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है, सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी दिन में कुछ स्थान पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के जरिए देश सेवा के मंत्र और अटूट संकल्प के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी विजन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अहमदाबाद स्थित गिफ्ट सिटी जैसी दूरदर्शी पहलों के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
3: वर्ष 2008 में परिकल्पित और भारत के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी आधुनिक शहरी नियोजन और वैश्विक वित्त के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। स्वचालित कचरा संग्रहण प्रणाली, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम और समर्पित यूटिलिटी टनल जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निर्मित गिफ्ट सिटी भारत का पहला कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बन चुका है। गिफ्ट सिटी की दूरदर्शी नींव और उसके विकास पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन का दौर था, लेकिन उस समय गुजरात फिनटेक के एक क्षेत्र में नए और बड़े कदम बढ़ा रहा था। मुझे खुशी है कि वो आइडिया आज इतना आगे बढ़ चुका है। गिफ्ट सिटी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। गिफ्ट सिटी वेल्थ और विजडम दोनों को सेलिब्रेट करता है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि गिफ्ट सिटी के जरिए भारत विश्व स्तर पर सर्विस सेक्टर में मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है।
3: इस अनूठे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
5: माननीय प्रधानमंत्री जी के गुजरात में निर्मित हुआ एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है गिफ्ट सिटी। आमतौर पर रियल एस्टेट के विकास का एक ट्रेंड होता है कि पहले उद्योग आते हैं, फिर लोग आकर बसते हैं और आवश्यकता अनुसार डेवलपमेंट होता है।
3: आज गिफ्ट सिटी भारत के बढ़ते प्रभुत्व का एक जगमगाता प्रतीक बन चुका है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसमें 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और क्षेत्र में जारी संघर्ष समाप्त करने की बात कही गई थी। ईरान फिलहाल अमेरिका के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है। ईरान ने प्रस्ताव दिया था कि सभी मोर्चों पर 7 दिन के भीतर संघर्ष समाप्त किया जाए, अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाए, ईरान की जब्त धनराशि जारी करे और उसके तेल पर लगे प्रतिबंधों में छूट दे। इसके बाद होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात कही गई थी। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का यह तीसरा स्वर्ण पदक।

0: है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महिला कबड्डी टीम को खिताब बरकरार रखने पर बधाई दी है। एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष मैराथन में रजत पदक जीतने वाले सावन बरवाल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन, धैर्य, टीम भावना और दृढ़ संकल्प ने देश को गौरवान्वित किया है। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और कोचालुमकल और आशी चौकसी को बधाई दी है। स्क्वाश में अनाहत सिंह ने जापान की सतोमी वातानाबे को हराकर महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष सिंगल्स में अभय सिंह ने भी पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को हराकर गोल्ड मेडल राउंड में प्रवेश किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज से ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:30 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੇਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੰਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ।
2: ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੂੰਜੇਗਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦਮ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਰੋਮਾਂਚ ਹੁਣ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਕੌਣ ਰਚੇਗਾ ਇਤਿਹਾਸ? ਕੌਣ ਚੁੰਮੇਗਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਖਰ? ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ? ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੁਣੋ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੇਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:20 ਤੱਕ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੈਨਲਸ 'ਤੇ, FM ਰੇਨਬੋ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੈਨਲ, DRM ਅਤੇ DTH ਚੈਨਲਸ 'ਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟਸ ਜਾਣੋਗੇ FM ਰੇਨਬੋ ਚੈਨਲ 'ਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਸਿਰਫ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੇ।
1: ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਤ 8:30 ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ।
3: ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ। ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਐਤਵਾਰ 27 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨੇ 11 ਵਜੇ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਗੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ DD ਨਿਊਜ਼, DD ਭਾਰਤੀ, DD ਇੰਡੀਆ ਤੇ DD ਕਿਸਾਨ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪਾਂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੈਨਲ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ, FM 102.7 ਮੈਗਾਹਰਟਸ

0: जस लड़दी ते सारा लड़ दे कित मैनू लड़दी कित मैनू लड़दी
1: कित
0: मैनू लड़दी
1: कित
0: मैनू लड़दी
1: कित

आजम वाला तहसील फाजिल का तो सोन सिंह बुक, निशान सिंह बुक, सीरत कौर, कीरत कौर ते दादी जसवंत कौर, राजमिस्त्री सहुआना बोतला ढाई ढाली तो सुरेंद्र कौर बुक ते रणधीर सिंह मैंबर, सोन लाल अमर लाल पोस्टमैन, जशन बराज रणजीत सिंह ते रूड़ राम चक्की वाला शायद लिखा जी। एक हाथ साढ़े को जी सैदुल शहर तो ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान है ना, इन्होंने भी कोई भी गीत की फरमाइश की है जी। एक खत साढ़े को बड़ी दूरों चल के आया जी छत्तीसगढ़ तो, भागवत शर्मा दत्तरेंगी से, भागवत शर्मा ते लवई तो गुलाबदास मानिकपुरी, ते लच्छनपुर तो विश्वनाथ साहू, चर डोगरी पिप्रिया तो दुर्गा राम साहू होना का खाता जी। बड़ी दूरों खत साढ़े को चल के आते हैं जी, इन्हों का बहुत बहुत स्वागत है। आओ सुनते हैं इन्होंने सारे की एक दो खत होर लै लें फिर सुनी तुम गाँव, ठीक है जी। एक ही खत लै लें असी, एक खत साढ़े को आया है जिला श्री फतेहगढ़ साहिब तो रामनाथ अत्तापुर तो सुखमनजीत सिंह, सहजप्रीत कौर होना का भी, इन्होंने भी क्या कोई भी गीत सुना दो तो साडा खत शामिल किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। लो जी तुहाडे खतां नाल ही साडे प्रोग्राम की रौनक है जी। आओ सुनते हाँ अगला गीत कंठ कलेर दी आवाज़।

जी मन्नत नूर होना दी आवाज़ से गीत से प्यारा गीत से, लेकिन टाइम बड़ी तेजी नाल जा रहा है। अगर असं दो खत पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते हैं जी। पटेल नगर मलोड़ तो हैगा जी, डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया ते बेबी आरजू, लेकिन टाइम जड़ा बहुत तेजी नाल जा रहा जी। पिंड पक्षी खुरद फरीदकोट तो सतनाम सिंह गिल, गुरिंदर गिल, गुरलीन गिल ते गिल परिवार सारा। असं गाने तो होर बहुत सारे सुनाना चाहते सी, लेकिन टाइम एक पाबंदी है, चार वजन वाले ने, इस करके सानू प्रोग्राम इत्थे ही समेटना पेगा। लेकिन चिट्ठियां मिठियां दा प्यारा सफर हमेशा चलता रहेगा। अज जिन्ना हो सकिया उन्ना कीता है, लेकिन कल नू फिर एक कार जी आणगे तुहाडियां नवीं चिट्ठियां लैके तुहानू सुन

0: मेडल ही जीत के लेके जाऊंगी। सोच रही थी कि शूटिंग में गोल्ड लेके आऊं, मैं लेके आऊं, लेकिन इंडिविजुअल तो मैं नहीं लेके आ पाई, तो मिक्स टीम में आ गया, तो आई एम हैप्पी।
1: सुरुचि सिंह दा साथ निभा के एक गोल्ड
2: किस्मत है, और मेरी जो मेरे 7 साल से जो मैं कर रहा हूँ मेहनत, वो है दिमाग में सर पूरा, मतलब इंजॉय था, या ऐसा नहीं था कि ज्यादा मतलब उसमें आ गए करना ही करना है। हमें पता था कि हम कर लेंगे मेडल, मतलब तब हम फाइनल में आए तो हम कह रहे थे आपस में बात कर रहे थे कि हमारा आ जाएगा आराम से मेडल, और गोल्ड का नहीं पता था कि हमारा गोल्ड आ जाएगा, और गोल्ड आ गया, वो भी एशियन रिकॉर्ड के साथ आ गया, तो बहुत अच्छी बात है सर।
1: एशियन खेडां च शूटिंग मुकाबलियां च भारतीय शूटर्स ने 1 गोल्ड मैडल, 6 सिल्वर मैडल ते 4 ब्रॉन्ज मैडल हासिल किए ने। कुल तमगियां की गिनती शूटिंग विचों ही 11 है। इस प्रदर्शन बारे की कहंदे ने अंतरराष्ट्रीय पद्धर दे शूटर ते अंतरराष्ट्रीय पद्धर दे शूटिंग कोच अक्षय जैन।
3: देखो जी, 10 मीटर एयर पिस्टल जी है ये ओलंपिक ईवेंट है, तो वन ऑफ द टफेस्ट आप ईवेंट इन मान सकते हैं, क्योंकि बहुत पुराना ओलंपिक ईवेंट है एयर पिस्टल, तो जिन्होंने अपना मैडल आया वा गोल्ड, वो इदा है कि ये मिक्स ईवेंट आ, नवा इंट्रोड्यूस होया क्योंकि 2012 या 2016 ओलंपिक तो बाद कुछ ईवेंट्स कटते, इसलिए स्टार्ट होया मिक्स ईवेंट जी, जो कि इन्हों का मैडल।

0: खेड संसार।
1: हुण तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम खेड संसार, आकाशवाणी दा ये जलंधर केंद्र है। हुण तुसी सुनो एक गीत जो साडे भारतीय खिडारियां नूं हिम्मत ते हौसला रखण दे लई कह रहा है।

मन की बात मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करनगे अपने मन की बात एतवार 27 सितंबर दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नू प्रसारित करनगे नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी किया जाएगा प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज डीटीएच दी एआईआर पंजाबी सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज ते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी 138वीं कड़ी।

तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे निमक निमक तुम ही प्रतिपालो हम बारिक तुमरे तारे। गुरबाणी दे इस फरमान तो पाव है कि सृजनहार प्रभु सबना दी प्रतिपालना करता है, सबना दा साई है, सारे जीव उसदे आसरे ही हन। वो प्रभु सदा सृष्टि दे जीवां नूं पालदा है। ये अकाल पुरख दा बिरध ही है क्योंकि वो मेहर करन वाला है, सबना दा साहिब है, दयालु है, सबना जीवां नूं प्राण उसे ने ही बख्शे हन। तो फिर

ए जीव, तू क्यों डोलता है? तेरी रक्षा करन वाला वही है जिसने तेनू साजिया है, जिसने तेनू पैदा किया है, वही तेनू आसरा भी दिंदा है। जिसने इस सृष्टि की उत्पत्ति की है उसने ही तेरी सार लेनी है। ओ परवरदिगार प्रभु हर हिरदे विच व्यापक है, उसकी सिरजन शक्ति का कोई अंदाजा नहीं। वह सब तो वड्डा है ते बेपरवाह है। इस करके ए बंदे जिन्ना चिर तेरे स्वास हन उससे दी ही बंदगी कर। हे प्रभु तू सर्व कला समर्थ है, कथनी तो परे है, इंद्रियां दी पहुंच तो परे है। ए जिंद प्राण तेरी ही दित्ती हुई रास पूंजी है। हे प्रभु तेरे अगे यही अरदास है कि तेरी रहमत सदका ही मैनू आत्मिक सुखां दी प्राप्ति हुई है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 724 ते तिलंग राग विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी का कथन है, तू काहे डोलै प्राणिया, तुद राखेगा सृजनहार, जिन पैदाइस तू किया सोई दे आधार। इस शब्द का गायन किया भाई महताब सिंह ते उन्हां दे

0: तू काहे डोलै प्राणिया तुद राखेगा सृजनहार, जन पैदाइस तू किया सोई दे आधार। इस शब्द का गायन कीता सी भाई महताब सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने। अकाल पुरख का मुढ़ कदीम तो ही सुभा है कि वह सबना का मां प्यो होण करके सबना की सार लैंदा है। हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक, वो प्रभु ही सबनी थाई रख्या करन वाला है। मन विच विचार आउंदा है कि वो प्रभु किस स्थान ते वसदा है। बाणी विच फरमान है कि सत संगत साध संगत ही प्रभु दा निवास स्थान है, क्यों जो साध संगत विच संत जन प्रभु प्यारे भगत साध संग करदे हन ते करता भी उत्थे ही वसदा है। मिल सत संगत खोज दसाई विच संगत हर प्रभु वसै जियो। प्रभु ते पूर्ण भरोसा रखण वाले भगतां दा अकाल पुरख ही सहाई है, राखा है, उन्हां दी रास पूंजी दी रख्या भी करदा है। ऐसे भगत संत जदों गुरु अगे कोई भी अरजोई करदे हन तां ओह परवान हुंदी है ते उन्हां दी इज्जत पद दी राखी ते रास भाव नाम रूपी पूंजी दी रख्या भी सृष्टि दा सरबुच ते मालक प्रभु आप करदा है। सुनदिया नवप्रीत सिंह होरां पासों वार्ता, रखवाला गोबिंद राय भगतन की रास।
1: विचार अधीन यह पावन वाक बाणी दे बोहित, महान उस रहिए श्रोमणी शहीद गुरु अर्जन देव जी ने बिलावल राग विच उचारिया है अते गुरु ग्रंथ साहब दे अंग 816 ते सुभाईमान है। इस पावन वाक अते समुचे शब्द राही गुरु साहिब सोझी बख्शदे हन कि अकाल पुरख अगे बेनती करन द्वारा मनुख नू कोई औकड़ मुश्किल पेश नहीं आउंदी है। वाहिगुरु अपने भगतां दी रास पूंजी दा आप रखवाला है। सारे गुणा नाल भरपूर प्रभु दा नाम सिमर के सारे कम सफल हो जांदे हन। परमात्मा आप साध संगत विच वसदा है अते भगत जनां लई साध संगत एक स्थान है जिथे बख्श

बोलता हर मनसा पूर्ण हार, सतगुर पुरख त्याय तू सब दुख विसारण हार। इस शब्द का गायन किया सी भाई जसबीर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

हुने तुसी सर्वन कर रही सी साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र ए तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकदे हो। हुण तो कुछ ही पलां विच यानी शाम 6 बजे साडे दिल्ली केंद्र तो सुनोगे हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी के क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
1: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: श्री शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, राज्य सरकार के मंत्री एम लीजू, पीसी विश्वनाथ, सांसद एन के प्रेमचंद्रन, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजीव चंद्रशेखर तथा अन्य लोग शामिल हुए। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र सरकार

आंध्र प्रदेश को विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुरनूल को विमानन और ड्रोन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल हवाई अड्डे पर एक कार्यक्रम में श्री नायडू ने कहा कि उनका ध्यान केवल हवाई अड्डों पर ही नहीं बल्कि पायलट प्रशिक्षण, रखरखाव, जमीनी संचालन और हवाई अड्डा प्रबंधन को शामिल करते हुए संपूर्ण विमानन इकोसिस्टम के निर्माण पर है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी

0: 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की क्षमताओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गैरो पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण को सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। महाराष्ट्र के मुंबई में प्रतिष्ठित लाल बाग चराजा और चिंचपोकलीचा चिंतामणि सहित कई गणपति प्रतिमाओं का आज विसर्जन किया गया। हजारों श्रद्धालु 21 घंटे से अधिक समय तक चले जुलूस में शामिल हुए। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशीष चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 11 रजत और 13 कांस्य समेत 28 पदकों के साथ 11वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। लो हुण सुनो साडे अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा।

शाम 6:30 बजे सुनोगे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम किसान वाणी। सात बजे कुछ पंजाबी गीत तुम सुनावांगी। शाम 7:10 ते साडी दिल्ली केंद्र तो सुनोगे विशेष प्रोग्राम जन सेवा से देश सेवा।

रात 10:20 ते शास्त्रीय संगीत दे प्रोग्राम सुर साधना विच अज तुसी संतूर वादन सुनोगे। कलाकार होंगे पंडित शिव कुमार शर्मा। हिंदी पंजाबी ते अंग्रेजी खबरां आपो अपने समय मुताबक नशर कीतियां जाणगियां। इस साडे अज दे बाकी दे प्रोग्रामां दा वेरवा। टाउन सुनदे इक देशभक्ति दा गीत।

रात पौने 9 बजे साढ़े दिल्ली के अंतर तो सुनोगे समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9, रात 9:15 बजे सुनोगे स्पॉटलाइट, 13:30 बजे सुनोगे विज्ञान भारती।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in। जापान दे खेड मैदान विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानने लई सुनो जापान च हो

मन की बात माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करनगे अपने मन की बात एतवार 27 सितंबर दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नू प्रसारित करनगे नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी किया जाएगा प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज डीटीएच दी एआईआर पंजाबी सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज ते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी 138

0: मृत्युजी देशभक्ति दसवों गान सुन रहे सी मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। हुण तो कुछ ही पलां विच यानी 6:20 ते सुनोगे प्रादेशिक खबरां।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम च देश विदेश दे लोकां नाल अपने विचार सांझे करनगे। पंजाब भर विच बीजेपी वल्लों नशा मुक्त पंजाब यात्रा दा सिलसिला जारी। तरन तारण विच रैली कढ़ी गई। खजाना मंत्रालय ने सूचित कीता सारे जनतक खेतर दे बैंक दे खेतरी देहाती बैंक कल 27 सितंबर नूं खुले रहणगे। राज्यसभा मैंबर संत बलबीर सिंह सिचेवाल ने मापियां नूं अपने बच्चों नूं पानी वालियां कैंकिंग अते नोइंग वर्गियां खेडां नाल जोड़न दा सद्दा दित्ता। पंजाब पुलिस ने फिरोजपुर विच काउंटर इंटैलीजेंस के इंस्पैक्टर बलदेव सिंह नूं 3 किलोग्राम तो वध हैरोइन ते हथियारां समेत गिरफ्तार किया। एशियाई खेडां विच भारत दीआं पुरश ते महिला कबड्डी टीमां ने ईरान नूं हरा के सोने के तमगे अपने नाम किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी ते रेडियो प्रोग्राम मन की बात च देश विदेश दे लोकां नाल अपने विचार सांझे करनगे। ए 138वां एपीसोड आकाशवाणी ते दूरदर्शन नैटवर्क दे नालों नाल आकाशवाणी न्यूज़ वैबसाइट अते न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप ते प्रसारित कीता जाएगा। ए प्रोग्राम आकाशवाणी न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री दफ्तर ते सूचना ते प्रसारण मंत्रालय दे यूट्यूब चैनल ते भी सीधा प्रसारित कीता जाएगा। हिंदी प्रसारण तो तुरंत बाद ए वख-वख खेतरी भाषावां च भी प्रसारित होगा। पंजाब भर विच भारतीय जनता पार्टी वालों नशा मुक्त पंजाब यात्रा का सिलसिला जारी है। इसे तहत बीजेपी वालों अज हलका तरन तारण के पालिका बाजार विखे नशा मुक्त पंजाब रैली का आयोजन किया गया। इस मौके बीजेपी के सीनियर आगुआ ने नशा के खात्मे लिए समाज के हर वर्ग को एकजुट होकर अपनी जिम्मेवारी निभाने का सदा दिता। रैली दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि नशा की समस्या को जड़ों खत्म करने लोगों को जागरूकता पैदा करना और नौजवान पीढ़ी को सही दिशा वाल प्रेरित करना समय की मुख्य लोड़ है।
2: संकल्प यात्रा लेके निकलना नौजवान हजारों की संख्या में माता के भेणा सड़कों से निकल के उन्होंने परिवारों की सुनी जिन्होंने परिवारों के बच्चे नशे खा के खत्म हो रहे हैं और अगे नशे बढ़ रहे हैं यात्रा।

0: माध्यम में संदेश देना चाहना है, नशे खत्म कराएंगे।
1: इस मौके साबका कैबिनेट मंत्री सुरजीत कुमार जियानी ने भी अपने विचार सांझे कीते। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अज मुकेरिया दसूहा ते उड़मुड़ विच बीजेपी वल्लों शुरू की नशा मुक्त पंजाब यात्रा दौरान रैलियां नूं संबोधन किया। श्री धामी ने कहा कि नशा मुक्त पंजाब यात्रा का उद्देश नौजवानों नूं नशा तो बचाने लई लोगों नूं जागरूक करना है। राज्यसभा संसद मैंबर डॉ विक्रमजीत सिंह साहनी ने अमृतसर स्थित स्वामी विवेकानंद ट्रक मुड़ बसेवा केंद्र का दौरा किया। उन्हें शहर में कथित तौर पर खुलेआम हो रही नशे की विक्री लैके चिंता जाहिर की। उन्हें कहा कि बेहद चिंताजनक स्थिति है कि एक पासे नौजवानों नशे की लत तो बाहर कढ़न लई मुड़ वसेबा केंद्र ते सरकारी ओट सेंटर चलाए जा रहे हैं, जबकि दूजे पास नशे की खुलेआम विक्री हो रही है। श्री साहनी ने दसिया कि मुड़ वसेबा केंद्र पिछले 15 साल तो पूरी तरह मुफ्त चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा,
2: असि 1250 बच्चिया हजे तक रिहेबिलिटेट कर चुके हैं, बच्चिया लभ लभ के लिया रहे हैं और फ्री ऑफ चार्ज है इतने, और सवेरे 7 बजे जगा के योगा मेडिटेशन तो बाद 3 घंटे की स्किल की क्लास है सिखा रहे हैं। असि बच्चिया एक नवी जिंदगी देके उन्होंने रोजगार दवा रहे हैं।
1: उन्हें अमृतसर के पुलिस कमिश्नर ते डिप्टी कमिश्नर नाल फोन ते गलबात करके मजीठा सड़क ते मुड़ वसेबा केंद्र दे नेड़े स्थाई पुलिस नाकाबंदी करन ते नशा वेचण वालियां खिलाफ सख्त कार्रवाई की मंग की। उन्हें कहा कि जेकर पुलिस प्रशासन वालों 1 महीने के अंदर ठोस कार्रवाई ना की गई तो वह इस गंभीर मुद्दे नूं संसद विच मजबूती नाल उठाउणगे। खजाना मंत्रालय ने सूचित किया है कि सारे जनतक खेत्र के बैंक अते खेतरी देहाती बैंक कल ऐतवार नूं खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम बैंक यूनियनों की संयुक्त फोरम वालों 28 से 30 सितंबर तक बुलाई गई तजवीशुदा 3 दिन देशव्यापी बैंक हड़ताल के मद्देनज़र चुकया गया। इसने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐतवार को सारिया बैंक शाखावां दफ्तर ATM लिंक शाखावां करंसी चेस्टा पूरी तरह चालू रहने की प्रवानगी दी है। इस दौरान जनतक खेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल दौरान महीनेवार मुफ्त हद तो वध ATM लेन देन ते लगन वाली फीस माफ करने का फैसला किया है। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर, यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनतक सेवा च 25 साल पूरे हो रहे ने ते एक अजिहा सफर है जिहड़ा जन सेवा तो देश सेवा दे मंत्र ते अटुट वचनबद्धता नाल प्रभाषित हुंदा है ते इस सिलसिला जारी है। सेवा ते सुशासन दी इसे सोच तो प्रेरित होके सरकार साल 2047 तक एक विकसित भारत दे टीचे नूं हासिल करन लई लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास ते समाजिक सशक्तिकरण राही इह समर्पण लोगों के जीवन च बदला लिया रहे। अज सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष लड़ी च असी तुहाडे लई एक मिसाल लैके आए हाँ कि किस तरह इस दृष्टिकोण नूं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना राही अमल च लिया गया। होर वेरवे नाल एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 विच भारत सरकार द्वारा उन्हां लोकां नूं फंड देण लई शुरू कीती गई सी जो अपने छोटे कारोबार शुरू करना चाहुंदे सन। पहलां ओह अपने कारोबारां नूं विकसित करन लई वित्त प्राप्त करन विच असमर्थ सन। सरकारी सूत्रां अनुसार बैंकां द्वारा पंजाब समेत देश भर विच 53 करोड़ तों वध लाभपात्रियां नूं 4 लाख करोड़ रुपए तों वध दे कर्जे वंडे गए हन। पंजाब दे 2 लाभपात्रियां ने अपने कारोबार शुरू करन लई मुद्रा योजना तहत कर्जा प्राप्त करन तों बाद अपनी खुशी सांझी की।
4: मैं गुरमुख सिंह हरिपुर का रहने वाला, मेरा CCTV और कंप्यूटर एसेसरी और नैटवर्किंग का काम है। काम नूं अगे वधाउण वास्ते 1 लाख रुपए की जरूरत सी। मैं अपने पिंड यूको बैंक विच गया और उत्थे मैनेजर साहब नाल गल की। सर हुणां ने दस्सिया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिहड़ी आ उहदे विच तुहाडा लोन कर दिंदे आ और उह लोन मैनूं मिलिया और उहदे विच मैं अपना बहुत वधिया काम कर रहा।
5: मैं पलक जलंधर, पंजाब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत यूको बैंक तो लोन लिया सीगा अपनी बुटीक खोलन वास्ते। मैं अज अपने पैरां ते स्टैंड हां। मैं धन्नवाद
3: रोजगार मंत्रालय मुताबिक इस योजना राही करोड़ां लोकां नूं नौकरियां मिलियां जो कि रोजी रोटी दे नाल नाल उद्यमां नूं बनाउण विच अपनी भूमिका नूं दर्शाउंदी है। 2024 विच मुद्रा कर्जे दी सीमा 10 लाख तो वधा के 20 लाख रुपए कर दी गई जिस नाल सफल उद्यमियों नूं फायदा होया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने नौकरी दी पाल वालियां नूं नौकरी देन वालियां विच बदल दिता। राजेश बाली, आकाशवाणी खबरां जलंधर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साबका प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह नूं उन्हां दी जयंती ते श्रद्धांजलि भेंट की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री मोदी ने कहा कि डॉ मनमोहन सिंह ने

0: प्रोग्राम किसान वाणी दे प्रायोजक ने खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार।
1: किसान वीरों जे तुसी सरों सोयाबीन मूंगफली तिल सूरजमुखी या होर तेल बीज फसलां दी काश्त करते हो तो तुहाडे लई एक लाभदायक सहायता सेवा उपलब्ध है ऑल सीड्स किसान मित्रा। ए सेवा भारतीय खेतीबाड़ी खोज परिषद ICAR दे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड्स रिसर्च हैदराबाद वालों किसानां नूं तेल बीज फसलां संबंधी खेतीबाड़ी सलाह देने लई शुरू कीती गई है। किसान वीरो ए सेवा राही तुसी फसल दी किस्म बिजाई खादां दी वरतों सिंचाई कीड़े मकौड़ियां अते बीमारी दी रोकथाम अते फसल दी सुचज्जी संभाल नाल संबंधित सवाल पूछ सकते हो। इसलिए अपने मोबाइल फोन विच 40 24 59 81 80 नंबर नूं ऑयल सीड्स किसान मित्रा दे नाम नाल सेव करो अते व्हाट्सएप राही अपना खेतीबाड़ी संबंधी सवाल पूछो। ए सेवा किसानां नूं तेल बीज फसलां बारे विज्ञानक अते खोज आधारित जानकारी प्राप्त करन विच मदद कर सकती है। सो किसान वीरो आधुनिक टेक्नोलॉजी नूं खेती नाल जोड़ो अते अपनी फसल दे नाल संबंधित सही जानकारी लई ऑयल सीड्स किसान मित्रा नाल व्हाट्सएप राही संपर्क करो। नंबर एक बार फिर तो नोट कर लो 40 24 59 81 80। वधेरे जानकारी लई जुड़े रहो आकाशवाणी जलंधर ते।

किसान वीरू अते किसान पैणो, उम्मीद है तुहानू ए गीत जरूर पसंद आया होवेगा। पर फिलहाल दे लई वेला हो गया है खेती खबरां दा। सूबे दीआं मंडियां विच 1 अक्तूबर तो झोने दी सरकारी खरीद शुरू होण जा रही है। प्रशासन वल्लों मंडियां विच सुचारू प्रबंधां दे निर्देश दित्ते गए हन। ते नाल दे नाल तुहानूं दस दईए कि रात दे समय नमी तो बचण लई शाम 7 वजे तो सवेरे 9 वजे तक कंबाइना नाल झोने दी कटाई उत्ते पाबंदी वी लगाई गई है। और पंजाब सरकार वल्लों पराली दे सुचज्जे प्रबंधन अते फसली विभिन्नता लई बजट तहत फंड मंजूर कीते गए हन। और प्रशासन वल्लों इस वार पराली नूं अग लाउण दे मामले जीरो तक लियाउण दी पूरी तैयारी कीती जा रही है। CRM मशीनां जिवें बेलर ते रेकर दा वरतों घेरा वी वधाया जा रहा है। झोने दे विकल्प वजों मक्की अते सूरजमुखी दी काशत नूं उत्साहित कीता जा रहा है। और खेतरी केंद्रीबाड़ी मंत्रालय अते PAU वल्लों वध तापमान सहन करन वालियां कणकां अते होर फसलां दीआं नवीआं किस्मां तैयार कीतीआं गईआं हन। और जेकर गल करिए खादां दी, जिवें कि NPK, इना दे रेटा विच वाधे कारण किसाना उत्ते आर्थिक बोझ वधिया है अते खेतीबाड़ी विभाग वल्लों नकली खादा अते कीटनाशकां दे गोदामां उत्ते छापे मारी करके सैंपल वी लए जा रहे हन। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना वल्लों सितंबर दे किसान मेलियां दी लड़ी विच अगला किसान मेला 29 सितंबर नूं गुरदासपुर विखे लगाया जा रहा है। अते पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना वल्लों किसानां नूं इस मेले विच शिरकत करन दा सद्दा वी दित्ता जांदा है। सो किसान वीरो, खेती खबरां तो बाद वेला हो गया है एक होर गीत दा आनंद मानण दा।

0: सो दोस्तों इस गीत तो बाद बेला हो गया है कि तुहाडे नाल एक अहम जानकारी जेड़ी है उसनु सांझा कीता जावे। ते तुहानू सब नू पता ही है कि कमाद जो है साडे पंजाब लई बहुत लाहेवंद है। ते असू कत्ते दे कमाद तो असी किहो जिहा लाहा लैणा है ते किवें उस तो वधिया रिकवरी लैणी है, इस संबंधी तुहानू जानकारी देणगे डॉक्टर गुलजार सिंह संघेड़ा जी।
1: मैं डॉक्टर गुलजार सिंह संघेड़ा, पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी खेतरी खोज केंद्र कपूरथला, जो कि साडे पंजाब दी जिहड़ी कमाद दी फसल है उहदे उत्ते जिहड़ी है अपनी ड्यूटी निभा रहा हाँ। तो अज असी जो गलबात करांगे, गलबात दा साडा विशा है कि कमाद दी फसल दे वध झाड़ ते वध रिकवरी लई की उतराले होने चाहिए ने। किसान भीरो, जिदा कि असी जानते हाँ कि जिहड़ी साडी कमाद दी फसल है ये 12 तो 14 महीने दी फसल है। तो इस फसल नूं जदों असी बीजना है तो उहदी जो ब्यूंतबंदी है वध झाड़ ते वध खंड दी मात्रा मिल दे विच लैण वास्ते उहदी प्लानिंग उहदी ब्यूंतबंदी सानूं पहले ही करनी पैंदी है। जिदा कि असी जानते हैं कि कमान की बिजाई दे दो समय है, एक तो हो गया जिहड़ा हुण असू कत्ते की बिजाई जिहड़ा कि बिल्कुल ढुकवां समा इस वेले चल रहा है और किसान भीर उहदी बिजाई भी कर रहे हैं। दूसरा हुंदा साडा जिहड़ा कि बहार रुद्दा जिहनूं आपां स्प्रिंग सीजन कहते हैं जां फगण वाली बिजाई करते हैं, पर जे असी हुण जिहड़ा साडा बिल्कुल ढुकवां समा जिहड़ा कि हुण बिजाई चलदी पई है बिजाई करनी है, यह समा साडा 15 सितंबर तो शुरू हुंदा होए ते 31 अक्तूबर तक प्लस माइनस 5-4 दिन मौसम के हिसाब नाल अगर गर्मी रहिंदी है तो बिजाई करते हैं। तो अगर इस सीजन दे विच इस रुत्त दे विच असीं गन्ने की बिजाई करनी है और उहदे तों असीं वध झाड़ ते अगले साल जदों उहदी कटाई करनी है मिल दे विच खंड की मात्रा चंगी आवे उहदे लई की नुक्ते हन उहदे नाल मैं गलबात करांगा। तो किसान वीरो, सब तो पहला जिहड़ी गल है, क्योंकि असीं जाणदे हां कि साडी जिहड़ी कमान की बिजाई है वह झोने कट्टण तों बाद जां कोई भी दूसरी फसल कट्टण तों बाद इस वेले अगर जो खाली खेत हुंदे आ उहनां दे विच करदे हैं, और असीं इह जाणदे हां कि साडा जिहड़ा वड्डा फसली चक्कर है वह कणक ते झोने वाला है, उहदे च बड़ी भारी मशीनरी आपां वरतदे हां। तो कोशिश ये करनी है कि जदों भी असीं कमाद की बिजाई करनी है उहदे खेत की जो तैयारी करनी है उहनूं डीप टिलेस मेरे कहण दा भाव यह है कि चाहे तुहाडा पलटावां हल होवे चाहे डिस्का होण, घट्टो घट 1.5 फुट तो थलों मिट्टी पलट के आपां रखिए, उस तो बाद उहदी खेत की तैयारी करिए, उस तो बाद असीं खाला बनाइए, उस तो बाद उहदे च असीं जिहड़ी कि कमाद दीआं पछियां कह लो मट्टियां कह लो बरोटे कह लो वह बिजाई करिए। तो सब तो पहला स्टैप तो यही हो गया, क्योंकि गन्ना 12 तो 14 महीने की मैं बार बार कहना कि फसल हैगी है, ये फसल डिगदी है जो गन्ने का थले साडे डीप उहदी खाली नहीं कढ़दे फरो नहीं बनाउंदे, तो बाद विच जाके जो अगले साल सितंबर अक्तूबर का महीना आता हवा चलती है तो गन्ना डिगदा है, क्योंकि उहदे मिट्टी पूरी नहीं चढ़ती उहदी बनाई चंगी नहीं आउंदी। दूजी चीज जिहड़े करांगे कि जदों असीं वध झाड़ लैणा है उस झाड़ वास्ते एक होर वड्डा इंपोर्टेंट जिहड़ा स्टैप है खेत की तैयारी तो बाद वो हैगा कि तुहाडी

0: क्वांटल रखिया गया है। ते किसान वीरों ते पैणो, साडा दूसरा खेती संदेश जो है वो है डेयरी फार्म ते रिकॉर्ड रखना जरूरी क्यों है। रिकॉर्ड रखना सुचजे पशु प्रबंधन का जरूरी हिस्सा है। जेकर किसाना कोल डेयरी दा रिकॉर्ड है ता ओ दस सकदे हन कि ओ दूजे किसाना दे मुकाबले अपनी डेयरी दा किन्ना वधिया प्रबंधन कर रहे हन अते ओ अपनी डेयरी कारजां दीआं शक्तियां ते कमजोरियां नूं वी देख सकदे हन। पिछले रिकॉर्ड जानवरां दे मुलांकण लई आधार प्रदान करदे हन। इस नाल जानवरां दी चोण हो जांदी है। इस नाल पशुआं दी वंशावली अते कुर्सीनामे दा रिकॉर्ड तैयार करन विच वी मदद मिलदी है। कुर्सीनामे दा मतलब है कि पशु दी मां दे दुध दा रिकॉर्ड देखिया जावे, क्योंकि जे मां दा दुध वध होवेगा ता उसदे बच्चे भी ज्यादा दुध देणगे। जेकर दुधारू पशुआं दे पिछले सुयां दे दुध दा पता लग जावे अते नाल ही दो सुयां विचकारला अंतर पता होवे ता सही पशु दी चोण सौखी हुंदी है, क्योंकि इस नाल आउण वाले सुयां विच पशु दी दुध पैदा करन दी समर्था दा अनुमान लगाया जा सकदा है। सो किसान वीरो ते पैणो, ए सन अज दे खेती संदेश। उम्मीद है कि तुहानू साडा अज दा ए किसान वाणी प्रोग्राम जरूर पसंद आया होवेगा। ते हुण वेला हो गया है तुहाडे तो इजाजत लैण दा। सो मैनू जसप्रीत कौर नू दिओ इजाजत। अगली वार फिर मुलाकात होवेगी। तद तक दे लई नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहा
1: है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाए?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता चलती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। तो पहली वाली बात कहा,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच
1: है? बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जल्दी खेती शुरू करूंगा।
3: मिट्टी नाल प्यार दी परंपरा है, परंपरागत खेती।
4: किसान वाणी प्रोग्राम दे प्रायोजक सन खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय, भारत सरकार।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 10वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा नारी से नारायणी तक। इसमें भाग ले रहे हैं शिक्षाविद प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: नमस्कार। एक बेटी जो कभी स्कूल की दहलीज तक पहुँच ही नहीं पाई, एक माँ जिसके लिए रोजमर्रा के जीवन में रसोई का धुआं एक अहम स्थान बन गया था, एक ग्रामीण महिला जिसकी मेहनत परिवार की ताकत तो थी लेकिन उसकी पहचान सिर्फ चार दीवारी तक सिमट कर रह गई थी। महिलाओं की ये बेरंग तस्वीर साल 2001 साल 2002 के आसपास बहुत ज्यादा नजर आने लगी थी। उसी समय अपनी रचनात्मक सोच और दूरदर्शिता से तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने महिलाओं की इस बेरंग तस्वीर में रंग भरने की शुरुआत की। गुजरात से शुरू हुई कन्या केलावणी और शाला प्रवेश उत्सव जैसी योजनाएं आगे चलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला, लखपति दीदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप और ड्रोन दीदी तक पहुंच गई। और यही नहीं रुकी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करें या तीन तलाक से जुड़ा सुधार, सबकी कोशिश यही थी कि बेटियों को शिक्षा मिले और महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जब बेटियों और महिलाओं को बेहतर करने की सोची तो उसके पीछे की सोच बिल्कुल स्पष्ट थी कि एक नारी की प्रगति से सिर्फ एक नारी का विकास नहीं होता बल्कि एक परिवार, एक समाज और एक राष्ट्र की तरक्की की शक्ति प्रदान होती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों पर आधारित आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के आज के एपिसोड की थीम है नारी से नारायणी। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: तकरीबन 25 साल पहले गुजरात में लड़कियों की शिक्षा को लेकर स्थिति बेहतर नहीं थी और जो बच्चियां पढ़ने जाती भी थी स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा थे। तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने वहां के आईएएस अधिकारियों के साथ गांव के सरपंच मुखिया को लेकर गर्मी की चिलचिलाती धूप में गाँव तक गए और परिवारों को बोला कि आप अपनी बच्चियों को स्कूल भेजिए और स्कूल में उनका स्वागत किया गया, उनको उपहार दिए गए, उन्हें ऐसा फील कराया गया कि आप एक विशेष जगह पर आई हैं। और फिर आंकड़े बताते हैं कि तकरीबन 99% ड्रॉपआउट रेट कम हुए। गुजरात में ड्रॉपआउट रेट कम करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम था शाला प्रवेश उत्सव। क्या थी योजना, किस सोच के साथ शुरू हुई और क्या रहे इसके परिणाम, आइए सुनते हैं इस विशेष रिपोर्ट में।
3: गुजरात में शिक्षा को घर घर तक पहुंचाने और बच्चों का स्कूल में दाखिला सुनिश्चित करने के लिए हर साल शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन किया जाता है। शाला प्रवेशोत्सव की शुरुआत वर्ष 2002 में हुई थी। इसके तहत राज्य के मंत्री, अधिकारी और स्थानीय प्रशासन

0: गांवों और दूर दराज के इलाकों तक पहुंचते हैं और बच्चों को स्कूल में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस पहल के साथ बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कन्या केलवड़ी कार्यक्रम भी चलाया जाता है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सिर्फ बच्चों का नाम स्कूल में दर्ज कराना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे नियमित रूप से शिक्षा से जुड़े रहें। खास तौर पर पहली कक्षा में दाखिला लेने वाले बच्चों और स्कूल से बाहर रह गए बच्चों पर ध्यान दिया जाता है। शाला प्रवेशोत्सव के दौरान जन प्रतिनिधि और अधिकारी बच्चों और उनके परिवारों से सीधे संवाद करते हैं। इससे अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करने और स्कूल में दाखिले को लेकर उनकी झिझक दूर करने की कोशिश की जाती है। गुजरात के समग्र शिक्षा पोर्टल के अनुसार राज्य में सरकारी और निजी स्कूलों की बड़ी संख्या मौजूद है। अगस्त 2026 तक राज्य में 40,554 सरकारी और 13,905 निजी स्कूल दर्ज हैं। वहीं सरकारी स्कूलों में करीब 61,15,000 लड़के और 52,35,000 लड़कियां दर्ज हैं। शिक्षा से वंचित बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। गुजरात के वर्ष 2024-25 के समग्र शिक्षा वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दिव्यांग बच्चों की पहचान और उनके नामांकन के लिए घर घर सर्वे किया गया। इसी वर्ष 68,629 दिव्यांग बच्चों को उनकी उम्र के अनुरूप कक्षाओं में नामांकन कराया गया। इनमें 2,770 बच्चे बाल वाटिका और 4,201 बच्चे पहली कक्षा में दाखिल हुए। राष्ट्रीय स्तर पर भी स्कूलों में नामांकन और बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने को प्राथमिकता दी जा रही है। शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूलों में सार्वभौमिक पहुंच, बुनियादी ढांचे, मुफ्त पाठ्य पुस्तकों और पात्र बच्चों के लिए मुफ्त यूनिफॉर्म जैसी सुविधाओं के लिए सहायता दी जाती है। इसमें नामांकन और बच्चों को स्कूल में बनाए रखने के लिए विशेष अभियान भी शामिल है। यानी शाला प्रवेशोत्सव सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि बच्चों को स्कूल की दहलीज तक लाने और उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की एक सामुदायिक कोशिश है, क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए स्कूल का पहला कदम उसके भविष्य की दिशा तय करने वाला कदम हो सकता है।
1: यही योजना आगे चलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में तब्दील हुई और हमने देखा कि किस तरीके से लैंगिक अनुपात भी भारत में बेहतर होता नजर आया। सुशीला जी, आपके साथ ही शुरुआत करते हैं, कैसे देखती हैं इस पूरे सफर को आप?
2: आप जो कह रहे हैं कि जो गुजरात में जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे, तब उन्होंने जो महत्वपूर्ण कदम उठाए जिसकी वजह से बहुत फर्क आया, ये अगर हम एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए आधुनिक भारत का, तो दो चीज कहूंगी मैं और फिर हमारी जो विशेष टॉपिक है उसके कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहूंगी कि आधुनिक भारत जो हम पढ़ाते हैं, जो पढ़ते हैं, ये इसकी शुरुआत राजा राममोहन रॉय से हुआ था, जब उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन थॉट कहा जाता है, इंडियन रेनेसां। उस टाइम से ये शुरुआत हुई थी कि नारी की जो स्थिति है, जब तक उसमें सुधार नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकते। फिर उनके बाद जो राणा डे, फिर विवेकानंद और ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इतने सारे महारथी थे जो उन्होंने इस पे बहुत गहराई से सोच के कदम उठाए। जब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुई थी, गांधी जी का जो योगदान था वो सबसे महत्वपूर्ण था। उन्होंने अहिंसा का जो मार्ग चुना स्वतंत्रता के लिए, उससे जो है बहुत सारे परिवारों में एक तरह का कॉन्फिडेंस आ कि अगर हमारी बेटियां, हमारी जो माएं हैं, अगर पब्लिक स्पेस जो कहते हैं वहां पे जाएंगे, गांधी जी है तो सुरक्षित है। और महिलाओं का बहुत योगदान था, और गांधी जी खुद कहते हैं उनकी माँ और साउथ अफ्रीका के जो नारी शक्ति थी उसके वजह से उनको वो समझ आई क्वालिटीज लाइक टॉलरेंस, किस तरह जब एंगर और जो गुस्सा, कैसे एक नारी जो है बिना रिएक्ट करे उसको कैसे अब्सॉर्ब करके उसको कैसे चेंज करती है। तो ये सारे उन्होंने कहा, कैसे उन्होंने अपने सत्याग्रह पे इनकॉर्पोरेट किया। जब संविधान बनी, भारत ऐसा एक संविधान है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो नारी को भी एक समान हक दिया गया था। हम लोगों को लड़ाई ज्यादा नहीं करना पड़ा राइट टू वोट के लिए, सबको समान रूप से मिला। और खासकर एक चीज बताना चाहूंगी, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इंडिया में, उनको इक्वल पे इक्वल वर्क, जो हमें और जगह और कंट्रीज में भी नहीं मिलता। अभी भी आप अगर यूएन रिपोर्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इतना फर्क है एक पुरुष की जो पे स्केल और एक औरत। ये हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। फिर मैं ये कहना चाहूंगी, 1970 में जब यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमन का जो घोषणा किया, तब 1969 में एक कमेटी की स्थापना करने की कोशिश हुई थी जो वीना मजूमदार, उन्होंने हेड करा, और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार करी थी टुवर्ड्स इक्वालिटी। उसके लिए जो गाइडलाइंस दिए गए थे वो यही था कि हम नारी को कैसे, उनकी जो स्थिति है उसको कैसे

0: उदास सकते क्योंकि नारी पीड़ित ही नहीं है पर उनके वजह से इतने सारे लोग भी पीड़ित है, उसमें पुरुष भी माने जाते हैं और अल्पसंख्यक और जो कमजोर वर्ग। तो ये जो ढांचा है जो बिल्कुल एक कहते हैं ना पेट्रियोकल, जो बड़ा ओप्रेसिव एक्सप्लॉयटेटिव, इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं? जैसे आपने बताया नारी के लिए शिक्षा, नारी के लिए एक आर्थिक सेफ्टी नेट जो बोलते हैं, ताकि वो जो कमा सकती है वो अपने हाथ में रखे डिसाइड कर सकती है। तो इस लेगेसी को एक बहुत अच्छा दिशा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है कि उन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर एंड देन एज अ प्राइम मिनिस्टर, ये उनका एक विजन रहा है शुरू से कि हमें जो नया भारत का निर्माण करना है उसमें महिलाओं की इक्वल भागीदारी देना है। उन्होंने जब आई थिंक 2014 या 15 मुझे याद नहीं है, रेडफोर्ट से जब उन्होंने एक आजादी के पर्व में जो प्राइम मिनिस्टर की जो भाषण होती है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम हर वक्त कहते हैं कि नारी की शिक्षा, नारी की स्थिति में कैसे फर्क लाएं, ये तो हम ध्यान देते हैं पर हम अपने बेटों के बारे में सोचते नहीं है, उनकी जो सोच है, उनकी जो परवरिश है, उनको कैसे सिखाया जाए कि अपने घर में जो बहन है, माँ है, बाद में बीवी आएंगी, उनके प्रति कैसे समान रूप से उनको हक, उनकी डिग्निटी, उनकी रिस्पेक्ट, ये जो सोच था ना ये की थी। क्योंकि हम हर वक्त फोकस करते हैं विमेन के ऊपर और मेन जो है आदमी को सोचते हैं कि जैसे वो अपने आप सुधर जाएगा, तभी तो कहते हैं एक नारी को शिक्षा दो पूरा परिवार शिक्षित होती है, वो सही है पर सोच में जो फर्क लाना चाहिए वो बहुत जरूरी है। और मैं ये मानती हूँ मोदी जी ने जो ये बात उठाई और फिर उनके जो जितने भी कार्यक्रम है और जितनी भी योजना है ये इसी पे जो एक तरह का केंद्र बिंदु कह सकते हैं ना, कि ये मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है उनके योगदान में।
1: जी, थोड़ा सफर आगे बढ़ाते हैं आदि जी। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रधानमंत्री ने शुरू किया और तब हरियाणा जैसे राज्यों की स्थिति अच्छी नहीं थी, वहां बेटियों को लेकर एक अलग सोच थी। अगर उस समय के लैंगिक अनुपात की बात करें तो 918 के आसपास पूरे राष्ट्रीय लैंगिक अनुपात था, जो बाद में बढ़कर इस समय 937 पर पहुंच गया है, जो ये बताता है कि बेटियों को लेकर पिछले 25 वर्षों में उनकी दूरदर्शिता से सोच बदली है। बतौर पत्रकार जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आप महसूस करती हैं?
2: देखिए, जो सबसे बड़ा बदलाव नजर आता है ना सिर्फ पत्रकार के तौर पर बट एक जनरल आम सिटीजन के तौर पर, वो ये आता है कि जो अप्रोच है महिलाओं को लेकर, कि जैसे पहले था कि एक वेलफेयरिस्ट अप्रोच थी कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, सशक्तिकरण का जो प्रकरण है वो हर सरकार के टाइम चला है, सबने कोशिश की है। इस सरकार में जो बदलाव देखने को मिला वो ये था कि एक महिला लेड डेवलपमेंट की तरफ पॉलिटिकल सोच का बदलाव, जैसा कि अभी सुशीला जी ने कहा कि एक पॉलिटिकल लीडर का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, समाज को कैसे बदला जा सकता है, वो सिंबोलिज्म से बदला जा सकता है। आप किस तरीके का मैसेज समाज को दे रहे हैं महिलाओं के प्रति, आप क्या सोच रख रहे हैं। गवर्नेंस का पूरा मॉडल जो है वो विमेन वेलफेयर से बदल कर विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और वो एक कॉन्टिन्यूम है, वो आप पॉलिसी में भी देख सकते हैं। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र किया, वो एक बहुत मेजरेबल आउटकम हमें अब नजर आने लगा है, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो स्टैटिस्टिक्स अभी आया है और हमने देखा कि जो ओवरऑल सेक्स रेशो है वो पहली बार 1000 से ऊपर भी चला गया, 1020 भी हो गया, 1000 पुरुषों के प्रति 1020 महिलाएं हो गईं। तो इन इंडिकेटर्स में ये जो माइंडसेट अप्रोच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से बदलने की कोशिश की गई है, समाज को ये मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि जो महिलाएं हैं वो ड्राइवर्स हैं इकोनॉमी की, वो ड्राइवर्स हैं ग्रोथ की, वो विकसित भारत की यात्रा में एक म्यूट स्पेक्टेटर्स नहीं है, वो इक्वल पार्टिसिपेंट्स हैं। उसी तरफ हर स्कीम अगर आप उठा के देखें सरकार की, महिलाओं के प्रति जो भी स्कीम्स लागू की गई हैं उनका मोटा मोटा पर्पस ये है कि महिला को, मतलब ऐसा नहीं कि हमें उनको डोल देना है कि हमने ये दे दिया हमने वो दे दिया कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, बल्कि उनको डिसीजन मेकिंग टेबल पर इक्वल भागीदारी देने का एक मकसद है। वही रिफ्लेक्ट हो रहा है सेक्स रेशो में, वही रिफ्लेक्ट हो रहा है अगर आप स्कूली स्तर पर देखें, प्राइमरी लेवल पर ड्रॉप आउट रेट काफी कम हो गया है, जो नेशनल लेवल पर अगर आप ड्रॉप आउट रेट देखें इस वक्त शायद 1.9% है, जो काफी एनकरेजिंग है, इट्स नॉट इनफ, वो बिल्कुल जीरो होना चाहिए लेकिन काफी हद तक सुधार हुआ है। ये जो आपने पॉलिसीज का जिक्र किया, जैसे आपने कहा शाला प्रवेशोत्सव गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने अपने चीफ मिनिस्टर काल में लागू की थी मेरे ख्याल से 2003 में, और वो अब

0: बढ़ बढ़कर उसका रिजल्ट ये हुआ है कि एक आम तौर पे पूरा का पूरा समाज ये मानने लगा है, गरीब समाज भी, कि लड़कियों को स्कूल भेजना एक रूटीन है, यू नो एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्म है। जो पहले एक्सेप्शन था वो अब नॉर्म है, ये बदलाव है।
1: 2015 से शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने अपने 11 वर्षों के अब तक के सफर में कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। आइए सुनते हैं इस पर एक रिपोर्ट।
2: किसी भी समाज की प्रगति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ बेटियों को कितने अवसर मिलते हैं। बेटी का जन्म, उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता ये केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज के विकास से जुड़े सवाल हैं। इसी सोच के साथ 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य था लड़कियों के प्रति समाज की सोच में बदलाव लाना, लिंग आधारित भ्रूण चयन को रोकना और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना। समय के साथ यह अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम न रहकर बेटियों के अधिकार और उनके भविष्य को लेकर जागरूकता का एक व्यापक प्रयास बना। इसमें परिवार, स्कूल, स्थानीय समुदाय और अलग अलग सरकारी विभागों की भागीदारी पर जोर दिया गया। अगर आंकड़ों की बात करें तो माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 2014-15 के करीब 75% से बढ़कर 2025-26 में 83.4% हो गया। यानी सवाल सिर्फ यह नहीं है कि बेटी का जन्म हो रहा है या नहीं, सवाल यह भी है कि क्या उसे पढ़ने, आगे बढ़ने और अपने फैसले खुद लेने का अवसर मिल रहा है। अब बात गुजरात की। गुजरात में बेटियों की शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए गए हैं। सुकन्या समृद्धि योजना इसका एक उदाहरण है। जनवरी 2026 तक गुजरात डाक परिमंडल में बालिकाओं के नाम 16,35,000 से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके थे। इन खातों में 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा थी। उत्तर गुजरात में भी इस दिशा में विशेष अभियान चलाया गया। 2024 में क्षेत्र के 487 गांवों को संपूर्ण सुकन्या समृद्धि ग्राम घोषित किया गया। इन गांवों में पात्र बालिकाओं के सुकन्या समृद्धि खाते खोलने पर विशेष ध्यान दिया गया। लेकिन किसी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने का मतलब सिर्फ उसके नाम पर बचत खाता खोलना नहीं है, उसे स्कूल तक पहुंचाना, पढ़ाई जारी रखने के लिए परिवार को प्रोत्साहित करना, बाल विवाह जैसी चुनौतियों से बचाना और आगे चलकर कौशल तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी है। गुजरात में कन्या केलवड़ी और शाला प्रवेशोत्सव जैसे अभियानों ने भी बालिकाओं को स्कूल से जोड़ने और शिक्षा के महत्व को घर घर तक पहुंचाने पर जोर दिया है। इन पहलों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की व्यापक सोच के साथ देखा जा सकता है, जहां बेटी के जन्म से लेकर उसके शिक्षा और आत्मनिर्भरता तक हर चरण को महत्व दिया जाता है। क्योंकि जब एक बेटी पढ़ती है तो उसका असर सिर्फ उसकी जिंदगी तक सीमित नहीं रहता। शिक्षा उसे अपने अधिकार समझने, बेहतर फैसले लेने और आर्थिक रूप से मजबूत बनने का रास्ता देती है। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश सिर्फ इतना नहीं है कि बेटी को बचाना है और पढ़ाना है, संदेश यह भी है कि बेटी को अपने सपने देखने और उन्हें पूरा करने का समान अवसर देना है और यही सोच आगे बढ़कर महिला नेतृत्व वाले विकास की मजबूत नींव तैयार करती है।
1: सुशीला जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शिक्षा से हम आगे बढ़े तो एक योजना जिसने बहुत ज्यादा ध्यान खींचा वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आप सभी ने घरों में खाने बनाए और हमने अपने बचपन में देखा कि हमारी माँ लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाया करती थी, धुआं बहुत निकलता था, आंखों से आंसू निकलने लगते थे। इस सोच को और इस समस्या को दूर करने के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई और आज तकरीबन भारत में 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को इस योजना से रसोई गैस उपलब्ध कराई गई है, जिससे उनका सेहत बेहतर हुआ है, सामाजिक सुरक्षा के स्तर पर बेहतरी देखने को मिली है और जिसे कहते हैं कि महिलाओं का समग्र विकास हुआ है। कितना बड़ा गेम चेंजर मानती हैं आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को?
3: देखिए, जो आपने कहा ना, हम सब ने देखा है अपनी माँ को, मेरे तो अपनी माँ को नहीं देखा, क्यों कहते हैं ना इंडिया वर्सेस भारत
1: जी।
3: शुरू से था जो रूरल अर्बन डिवाइड, रूरल एरियाज में ये सब जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो वो जरूर था, अभी भी शायद होगा, पर परसेंटेज कम है, क्योंकि जो हमारा हिंदुस्तान है एक तो बहुत विशाल देश है, समस्याएं बहुत थी। 300 साल का जो राज था अंग्रेजों सरकार का, जो कलोनियलिज्म, आप जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कितना कुछ लूटा गया इस देश से, तो उस सबको जो बदलने के लिए बहुत टाइम भी लगता है और प्रयत्न भी होते हैं। और हिंदुस्तान में ना 10 सेंचुरी जो है 100,000 साल एक साथ जीता है, हमें ये

भी मान के चलना पड़ता है। तो शहरी इलाकों में खासकर गैस चूल्हा ही देखा है हमने, मेरे परिवार, मेरे मित्रों के परिवार, हम लोगों ने। हाँ, टाइम लाइक जब युद्ध हुआ, बांग्लादेश युद्ध हुआ, तब हम सब ने, जैसे आप कह रहे हो, चूल्हा में खाना बना के देखा हुआ है। बट रूरल इंडिया में ये नहीं था। जो फर्क जो आया है उसके वजह से, वो डेफिनेटली एक गेम चेंजर है। और इंक्रीजिंग एक और जो कॉन्शियसनेस देश में ही नहीं पूरा विश्व में, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, कि ये जो कार्बन एमिशन है, ये चूल्हा जलाने की वजह से जो कार्बन एमिशन है, उसका भी एक टैकलिंग दैट प्रॉब्लम। सो यस, जो खाना बनाते हैं घरों में, उसके वजह से उनका जो हेल्थ है, सुविधा है। और देखिए, घर का खाना हर वक्त कहा जाता है इट्स अ वेरी हेल्थी वन। सो द एम्फेसिस कि घर में खाना बना के टाइम जो है उसको एक अच्छी तरह यूज करिए। टाइम जो है 24 घंटा हर एक के पास होता है, उस टाइम का हम कैसे उपयोग करें? अगर चूल्हा में ये सारा टाइम निकल जाता है, कितनी सारी कहानियां पहले पढ़ते थे, एक औरत का जो टाइम है सिर्फ चूल्हा चौके में गुजरता है, अब तो वो टाइम भी बचत होती है। और उस टाइम की जो सेविंग की वजह से लोग बहुत कुछ जो सीख सकते हैं। बहुत बार मैं देखती हूँ कि रूरल इंडिया का जो एक साइड है, जो सोशल मीडिया में नजर आती है, कि इनके पास टाइम की वजह से ये कितने अपने जो हुनर है, अपनी जो कला है, वो अपना सोशल मीडिया में रील्स बना के फैलाती हैं। तो ये जो टाइम की बचत थी, ये सब जो कर पाते हैं, ये भी तो एक बहुत गेम चेंजर है। कि खाना भी बन जाता है सुविधा के अनुसार, कार्बन एमिशन इन अ वे लेस, एंड एट द सेम टाइम इतना टाइम मिलता है फॉर देम टू लिव अ गुड लाइफ। बिकॉज आधुनिक समाज का जो एक बहुत खास बात है, हमारे पास जो है सुविधा है, जो जिससे हम एक अच्छा लाइफ गुजार सकते हैं, पर उस सुविधा को सबके लिए देना, ये मोर चैलेंजिंग है। आई थिंक ये जो प्रयास रहा है इस सरकार का, कि इतने सारे लोगों को, जितने मैक्सिमम लोगों को दे सकते हैं, ये भी तो एक बहुत बड़ा, आई वुड से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट। इट्स नॉट कन्फाइंड टू स्मॉल सेगमेंट्स, द प्रिविलेज्ड वन, इट इज फॉर एज लार्ज अ सेगमेंट। तो इसमें आप नॉट वेरी वेल ऑफ उनको भी जोड़ देते हैं।

0: जो सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का, वो होता है कि आपको बैंकिंग और क्रेडिट का एक्सेस मिलता है कि नहीं। सबसे पहले हमने देखा कि जैम ट्रिनिटी के माध्यम से बहुत सारे अकाउंट्स खोले गए। हम सब जानते हैं कि आज की डेट में करीब 60 करोड़ अकाउंट्स खोले जा चुके हैं और जो बैंकिंग की सुविधा है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। और इन 60 करोड़ में से, अगर आंकड़े मैं सही कह रही हूँ, मेरी याददाश्त यही बताती है कि करीब 50% से ज्यादा महिलाओं के नाम पे हैं। आपने सबसे पहले उनके अकाउंट्स खोल दिए, उसके बाद आपने मुद्रा योजना लागू की। मुद्रा योजना के माध्यम से आपने इजी क्रेडिट महिलाओं को देना शुरू किया। उनके अकाउंट्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं, उसमें पैसे आने लगे, महिलाओं को क्रेडिट मिलने लगा छोटे छोटे कामों के लिए। तो महिलाएं अपनी अपनी जगह कोई रेडी लगा सकती है, कोई अपनी दुकान चला सकती है, कोई खाना बना सकती है, टिफिन की सर्विस शुरू कर सकती है। छोटा छोटा क्रेडिट उनके हाथ में आने लगा। सशक्तिकरण का ये जो सिलसिला है ये वहां से शुरू हुआ। तो नेक्स्ट स्टेज क्या है? नेक्स्ट स्टेज ये है कि जब महिलाएं एक लेवल पर आकर सेटल हो गईं, तो आप उनको और फिलिप कैसे देंगे? उस फिलिप के लिए अब ये लखपति दीदी योजना का इम्पोर्टेंस है। ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि ये संगठित तरीके से महिलाओं को सशक्त करने का एक माध्यम है कि एक साल में हर महिला 1,00,000 रुपए कमाने का सामर्थ्य रखे। उसके लिए क्या किया गया है? बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स इवॉल्व किए गए हैं। पहले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एक पूरा नेशनल नेटवर्क क्रिएट हुआ है, एक पूरा मूवमेंट चल रहा है। मुझे लगता है कि जिस तेजी से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बढ़ रहे हैं हमारे देश में, ऑर्गेनाइज तरीके से महिलाएं एक दूसरे की मदद कर रही हैं, पैसा कमा रही हैं, आज की डेट में 95,00,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भारत में हैं और इन 95,00,000 ग्रुप्स में करीब 10 करोड़ महिलाएं मेंबर्स हैं। तो आप संगठित तरीके से SHGs के माध्यम से जुड़ चुके हैं। इन SHGs को अब लखपति दीदी प्रोग्राम में क्या इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं? फॉर एग्जांपल, आप नमो ड्रोन दीदी प्रोग्राम ले लीजिए। वो प्रोग्राम क्या है? उस प्रोग्राम का जो फाउंडेशन है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप ही है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 2023 से 2026 तक की यह स्कीम है जो बढ़ाई जाएगी। आई एम श्योर 1200 करोड़ इसका आउटले रखा गया। 15,000 SHGs को आप ड्रोन सप्लाई करेंगे। ड्रोन किस लिए सप्लाई करेंगे? कि आप उनको ट्रेनिंग देंगे SHGs की महिलाओं को, कुछ चोजन महिलाओं को जिनका उस चीज में इंटरेस्ट होगा। हर कोई महिला का इंटरेस्ट भी नहीं होगा। तो ड्रोन के माध्यम से आप उनको ये सिखाएंगे कि फार्मिंग की प्रैक्टिसेस, आप एग्रीकल्चरल फार्मलैंड्स पर पेस्टिसाइड्स कैसे स्प्रे कर सकते हैं, आप सीड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ड्रोन के माध्यम से। तो ये एक माध्यम बन जाता है सशक्तिकरण का और इससे पैसा बनते बनते फिर वो लखपति दीदी के प्रोग्राम में ऐड होता रहता है। जैसे पहले लखपति दीदी प्रोग्राम के तहत मुझे लगता है 3 करोड़ महिलाओं को रीच करने का टारगेट था, जो अब बढ़ा के शायद 6 करोड़ या 5 करोड़ कर दिया गया है। बहुत एम्बिशियस टारगेट है पर पुराने प्रोग्राम्स ने दिखाया है कि ये अचीवेबल है।
1: अदिति जी, एक और योजना की बड़ी चर्चा रही वो नीतिगत सुधार देखने को हमें मिला। मुस्लिम महिला अधिनियम के तहत 3 तलाक का जो सुधार हुआ उसमें एक बहुत ही सामाजिक परिवर्तन देखने को मिला। आंकड़े बताते हैं कि 80% तक तलाक की दर कम हो गई। एक सामाजिक परिवर्तन को लेकर जो ये निर्णय लिया गया और प्रधानमंत्री की जो इसके पीछे की सोच थी, जमीनी स्तर पर कितना बदलाव आपको नजर आया?
0: देखिए, मुस्लिम महिलाओं की जो आम तौर की जिंदगी में इस लॉ का बहुत बड़ा महत्व है और ये बहुत ज्यादा, अगर ओपनली वो बोल भी नहीं पाती होंगी तो भी उनकी जिंदगी में जो इसका असर है वो आई एम श्योर हर लेवल पर नजर आता होगा। क्योंकि इस लॉ से ये हुआ है कि एक तो डिग्निटी मैरिज में बरकरार हुई है, एक एश्योरेंस मिला है मुस्लिम महिला को कि उसके साथ जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन होता था कुछ प्रैक्टिसेस की वजह से, और ऐसा भी नहीं है कि इस्लाम में ये प्रैक्टिसेस मान्य है, और बहुत सारी डिस्टॉर्शंस रिलीजन के माध्यम से आ जाती हैं आमतौर के डिबेट्स में, जिसकी वजह से ये एक आम चर्चा में हो गया था कि ये चलता है। उस चलता है एटीट्यूड को तोड़ने के लिए जो ये 3 तलाक के कानून को लाया गया, क्रिमिनलाइज किया गया इस प्रैक्टिस को। हम सबको पता है कि शाह बानो का केस कितना फेमस हुआ था और फिर उस वक्त की राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की अलमनी का जो डिसीजन, इतने जंदोजहद के बाद शाह बानो ने एक अलमनी का डिसीजन जीता था सुप्रीम कोर्ट से और फिर उस वक्त की सरकार ने उसको ओवरटर्न कर दिया था लॉ लाकर। तो वो एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस, बहुत लोगों ने ऐसा माना कि 3 तलाक के कानून से करेक्ट किया गया क्योंकि आपने फाइनली ये बोला कि आप इस तरीके का बिहेवियर मुस्लिम महिला तो क्या किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि कुछ रिलीजन स्पेसिफिक इशू है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट जो यूनिफॉर्म सिविल

0: कोर्ट की डिबेट हमारे देश में चल रही है, अगर एक कॉमन पर्सनल लॉ पूरी कंट्री के लिए होगा तो ये जो कुरीतियां हैं किसी भी समाज में हो वो उनसे लड़ने की ताकत महिलाओं को मिलेगी। तो जो सबसे बड़ा जस्टिफिकेशन यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के वक्त कहा था और ये उम्मीद की थी कि आने वाली सरकारें इनैक्ट करेंगी ऐसा एक लॉ, तो इसी उम्मीद से की थी कि हम आने वाली सरकारों पे छोड़ते हैं कि उस वक्त की सामाजिक स्थिति क्या होगी, उस वक्त की राजनीतिक इंपेरेटिव्स क्या होंगे, उन सबको ध्यान में रखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड की पहल कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने की थी और कहा था कि आने वाली सरकारें इस चीज को देखेंगी। तो ये जो मुस्लिम महिला की आपने बात की, ये एक तरीके से पर्सनल लॉ की ही रिफॉर्म की तरफ कवायद है कि आप किसी भी महिला को, वो किसी भी रिलीजन में हो, इस तरीके से तो ट्रीट नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो फिर गवर्नमेंट को अपनी साख दिखानी होगी। गवर्नमेंट इसीलिए है कि उसमें एक पावर है चीजों को बदलने की, और ये एक बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है जिससे मुस्लिम महिलाओं को सशक्त करने का एक मौका मिला है।
1: सुशीला जी, चर्चा को अगर थोड़ी आगे बढ़ाएं तो घर की चार दीवारी में तो महिलाएं काफी समय से सक्रिय रहीं, लेकिन नेतृत्व के मेज तक उनको लाना अपने आप में एक बड़ी बात थी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में लाना। हमने देखा कि जब भारत में G20 की अध्यक्षता की भारत में और नई दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ वहां पर महिला नेतृत्व को प्रमुखता दी गई, साथ ही साथ जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमने देखा कि महिलाओं ने किस तरह फाइटर जेट के माध्यम से दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने में अहम भूमिका निभाई। युद्ध के मैदान से देखें या अंतरिक्ष तक देखें या फिर खेल के मैदान में देखें, महिलाएं न सिर्फ आगे आ रही हैं बल्कि निर्णायक स्थिति में भी पहुंच रही हैं। ये परिवर्तन जो पिछले 25 वर्षों में हुए हैं और इसके पीछे नरेंद्र मोदी की एक अहम सोच रही है, कैसे देखते हैं आप?
2: मैं इसको अगर एक रेफरेंस दूंगी, 1968 में गुरनल मुरल की एक किताब आई थी एशियन ड्रामा, उसमें मुरल साहब लिखते हैं, वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट, कहते हैं कि पूरा साउथ एशिया का एक सर्वे था, हिंदुस्तान के बारे में कहते हैं कि इट इज अ कंट्री वेयर इट हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन इन डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, मिड 60s, बीच में कहीं गायब हो गई, तो शुरुआत जो था कहीं जो गायब हो गई थी उसको पिकअप किया गया, और कि वुमेन शुड बी फाउंड इन इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडीज इन प्लेसेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों पीछे रह गया उसकी एनालिसिस करिए और उसको रेक्टिफाई कैसे करना चाहिए। और खासकर हम जब नारीवाद पढ़ाते हैं हर वक्त कहते हैं कि नारीवाद जो है ना एक मिडिल क्लास मूवमेंट रह गया, ये सिमोन द बोअर का क्रिटिसिज्म है, सिर्फ मध्यम वर्ग के जो विमेन है उन्हीं के बारे में चर्चा है, उन्हीं की कंसर्न्स है, इसीलिए आम महिला जो है उसके साथ जुड़ती नहीं है, क्योंकि विमेन एज अ कैटेगरी वो जो है ना ऐसा है ही नहीं, उसमें जेंडर आप देखोगे इम्पोर्टेंट है पर उसके साथ आपको क्लास, कास्ट, रिलीजन, रीजन ये सब भी देख के चलना पड़ता है। मेरा जो कहने का मतलब है कि आपकी जो प्रोग्राम्स उसकी जो विजन ऐसी होनी चाहिए कि आप जितना ये प्रोग्राम्स एक शिक्षित हाईली वेल प्लेस्ड वुमेन अपील करती हैं, उसी तरह एक ऑर्डिनरी वुमेन को भी जब तक आप उस तरह का एक ब्रॉड स्वीप नहीं रखोगे, कैच ऑल जो बोलते हैं, तब तक जो है ना सारे वुमेन जुड़ेंगे नहीं। जो मध्यम वर्ग की वुमेन के जो कंसर्न, स्त्री के जो कंसर्न है और आपके घर में जो डोमेस्टिक हेल्प है उसके जो कंसर्न है वो बहुत हटके होते हैं, कहने को दोनों महिला हैं यही मैं कहना चाह रही हूँ, पर उनके जो कंसर्न है बहुत, उनकी जो फिक्र होती है वो बहुत अलग होती है। आपका जो लीडरशिप क्वालिटी ये है कि आप इन दोनों को ब्रिज कैसे करें, अगेन ये जो एम्फेसिस है ऑर्डिनरी लोगों को कैसे आप आगे बढ़ाएं, उनकी जो प्रॉब्लम्स उनकी जो समस्याएं उनको आप कैसे टैकल करें, और इससे जो है बाकी लोग भी जो फायदा उठा सकते हैं, ये जो बॉटम अप टू टॉप जा रहा है वो ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो आप जो कह रहे हो ना कि इतने सारे महिलाएं देखे और ये ऑर्डिनरी महिलाएं हैं, ये दे आर नॉट फ्रॉम वेरी यू नो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, दीज आर ऑर्डिनरी पीपल हुम वी कैन सी इन द स्ट्रीट्स, राइट, आई मीन दे हैव कम अप फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स बट मेड इट टू द टॉप बिकॉज दे हैव गॉट द अपॉर्चुनिटीज, दिस इज व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ अ गुड सोसाइटी, अ इक्वल सोसाइटी।
1: अदिति जी, तो महिला नेतृत्व की जो बात नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं को अब नेतृत्व क्षमता में आगे आना चाहिए, बतौर पत्रकार आप किस तरीके से बदलाव महसूस करती हैं?
0: देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो बदलाव का एक मैसेजिंग है वो यही है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है किसी भी क्लास और ऑफ सिटीजंस के लिए, चाहे वो पुरुष हो या कोई भी हो। तो अब ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से 33% आरक्षण की बात हो रही है लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में, ये एक मीनिंगफुल

0: स्टेप फॉरवर्ड है महिलाओं को लीडरशिप रोल में एक इम्पोर्टेंट स्थान देने के लिए. कहने में आसान लगता है लेकिन डिसीजन मेकिंग में जब एक्चुअल रोल देने की बात आती है वो बहुत अलग और एक बहुत डिफरेंट डिबेट हो जाती है. अगर कोई पॉलिटिकल लीडर ये कहता है कि हम इक्वल पार्टिसिपेशन महिलाओं को देना चाहते हैं, जैसे कि आपको याद होगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में जब पहली बार आरक्षण आया था तो ऐसे ही शुरू हुआ था और आज की डेट में आप देखिए कितनी सारी महिला नेतृत्व नेत्रियां हमारी लोकल बॉडीज में हैं, अर्बन लोकल बॉडीज में हैं, पंचायत्स में हैं. तो लीडरशिप डेवलप होने में भी वक्त लगता है. आप आज लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण देंगे तो कल वो उभर के आएंगी. ये लॉजिक देना कि महिलाएं कहाँ से मिलेंगी, उनको चुनाव लड़ने के लिए पार्टीज कहाँ से ढूंढेंगी, ये बहुत लेम लॉजिक है और ये हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि ऐसी चीजें हमें सुनने को मिलेंगी जब ये लॉ पास होगा. पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड है. और मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखना अपने आप में महिलाओं की सशक्तिकरण का एक सिग्नल था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि महिलाओं के पतियों को वहां मारा गया था पहलगाम में. दूसरी बात, बहुत देर तक सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को देश के बिहाफ पे ऑपरेशन सिंदूर की अपडेट्स देने के लिए जो बुलाया गया, जो स्टेज दिया गया, वो महिलाओं के प्रति एक विश्वास का सिग्नल था, एक बहुत ही सेल्फ एश्योर्ड गवर्नमेंट का सिग्नल था कि हम तैयार हैं महिलाओं की नेतृत्व को एक्सेप्ट और स्वीकार करने के लिए.
1: जी हाँ, पिछले 25 वर्षों में अपने सार्वजनिक जीवन के दौरान नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ बदला, लेकिन महिलाओं के संदर्भ में अगर कहें तो महिलाओं को जो उन्होंने एक बदलाव दिया वो था उनके अंदर का आत्मविश्वास कि आप जो करना चाहती हैं आप कर सकती हैं और देश में उसके लिए माहौल है. अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं, अगर आप खेल के मैदान में भारत का तिरंगा लहराना चाहती हैं, फाइटर जेट उड़ाना चाहती हैं या फिर आप कुछ और भी करना चाहती हैं तो आपके लिए आपकी जो सीमा है वो आकाश ही है. और इन 25 वर्षों में हमने बहुत सारे बदलाव देखे और वो बदलाव भारत को एक नया भारत और विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे लेकर जा रहा है. प्रोफेसर सुशीला जी और अदिति जी दोनों कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे दर्शकों और श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार.
2: धन्यवाद. विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 10वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा नारी से नारायणी तक. इसमें भाग ले रही थी शिक्षाविद प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन. कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और YouTube चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044.

0: कि यह रोग का ही नहीं बल्कि रोग की जड़ का इलाज करता है। ऐसे करके जल में औषधि के रूप में ग्रहण करके अनेक रोगों तो छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसे नु जल चिकित्सा कहा जाता है। अगली चिकित्सा है अग चिकित्सा या अग्नि चिकित्सा। वेदां विच अग नू गृहपति कहा गया है। यज्ञ विच कई प्रकार की जड़ी बूटियां का प्रयोग किया जाता सी जिन्हां दे अग दे संयोग नाल वातावरण नू शुद्ध करन ते अनेक रोगां नू नष्ट करन दा वर्णन मिलता है। अथर्ववेद ते यजुर्वेद विच कहा गया है कि जदों अमृत दे समान घ्यो विच मिला के सर्वश्रेष्ठ जड़ी बूटियां अग विच जलाईयां जांदियां हन ते उन्हां ते निकलण वाला धुआं अनेक रोगां नू नष्ट करदा है ते शरीर विच दाखल होके वात पित्त कफ आदि रोगां नू दूर करके जीवन देन देने वाले तत्तां नू वधांदा है। अथर्वेद विच कपूर अजवैन गुग्गल आदि दे धुएं नू भी अनेक रोगां दा नाशक कहा गया है। अज भी जेकर प्राचीन समय दे अनुसार घरां विच रोजाना हवन यज्ञ कीते जान ते वातावरण शुद्ध होवेगा ही नाल ही रोगां दे कीटाणु भी नष्ट होणगे। ते होर ओरां दी स्वाह फसलां वास्ते बड़ी उपयोगी दसी गई है क्योंकि हवन दी स्वाह धरती नूं उपजाऊ बनांदी है ते दीमक आदि अनेक प्रकार दे कीड़ियां तों बचांदी है। अगली चिकित्सा है वायु चिकित्सा। वेदां विच वायु अर्थात हवा नूं सेहत दा दाता ते रोगां नूं शांत करन वाली कहा गया है। अथर्ववेद विच कहा है कि जदों असी साह द्वारा शुद्ध हवा अंदर खिंचदे हां ते ओ दक्ष अर्थात शक्ति प्रदान करता है ते जदों साह द्वारा दूषित वायु नूं बाहर कढ़दे हां ते ओ अपने नाल रपा अर्थात रोगां नूं बाहर लै जांदा है। अथर्ववेद विच वियुग भी विमुंच कह के साह दी खास योजना नूं मुक्ति दा साधन कहा गया है। ऐसे तरह वेदा विच शुद्ध वायु दे प्रयोग नू औषधि कह के वैदिक महापुरखां ने प्राणायाम विधि दे एक बहुमूल्य सिद्धांत नू बनाया सी जो कि भारत दे ऋषियां दी अनोखी देन है ते निश्चित रूप विच एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति है। अगली चिकित्सा पद्धति है सूरज चिकित्सा। वैदिक ऋषियां ने सूरज नू केवल अग जां अनेक गैसां दा गोला ही नहीं बल्कि असीम सत्ता दा प्रतिबिंब मन्या है। अथर्ववेद विच सूरज दी सत रंग वाली किरणा नू अनेक रोगां दा नाश करन वाला कहा गया है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति विच भी सूरज दी किरणा नाल पीलिया आदि रोगां नू दूर करन दा उपाय दस्या जांदा है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति दे जानकार चिकित्सक अनेक रोगां दी शांति वास्ते सूरज दी किरणा विच तैयार हरे नीले लाल रंग वाले पानी अते तेल आदि नू दवाई दे रूप विच प्रयोग करन दी सलाह दिंदे हन। अथर्ववेद दे अनेक मंत्रा विच कहा गया है कि सवेर दे समय सूरज विचों अल्ट्रावायलेट रेज निकलदियां हन जिन्हां दे विच रोगां नूं शांत करन दी ज्यादा समर्था हुंदी है अते शरीर विच विटामिन बी सी तथा डी दी कमी नाल होण वाले रोग शांत हुंदे हन। वेदां विच सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ब्लड अर्थात रक्त प्रवाह चक्र दा वी वर्णन मिलदा है। उत्थे खून वास्ते आपह शब्द दा प्रयोग किया गया है। अथर्ववेद विच सूरज दी किरणा नू दिल दे रोगां नू शांत करन वाला ते कीटाणुआं नू नष्ट करन वाला कहा गया है। अंतिम ते अगली चिकित्सा है शल चिकित्सा। वेदां विच शल चिकित्सा दा भी उल्लेख मिलता है। अज प्लास्टिक शल चिकित्सा नू अज दे युग दी देन मन्या जांदा है पर इस क्षेत्र विच ईसा तो भी पहला भारतीय शल चिकित्सक सुश्रुत ने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली सी। उन्हां ने शल क्रिया दे साधना नाल दिमाग दी शल क्रिया सफलतापूर्वक कीती सी। सुश्रुत संगीता विच चिकित्सालय दे अनेक नियमां दा वर्णन मिलदा है जिन्हां ते साडे देश तो ज्यादा बाहर दे देशां दे विज्ञानिक खोज कर रहे हन। अथर्ववेद विच रुके हुए पेशाब नू सलाई नाल कड्ढण दा उल्लेख मिलदा है। शल चिकित्सा दा संबंध शरीर दे बाहरी ते अंदरूनी अंगां नू कट्टण वड्ढण लई अनेक प्रकार दे छोटे वड्डे शस्त्रां दी जरूरत हुंदी है। अतः सार रूप विच कहा जा सकता है कि संस्कृत साहित्य विच अनेक प्रकार दे रोगां नू दूर करन लई अनेक पद्धतियां दा वर्णन मिलदा है। वेदां विच चिकित्सा विज्ञान संबंधी जानकारी मिलदी है।
1: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਹਿਤਯ ਸੁਧਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਗੁਪਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਸੁਣਦੇ ਸਪੌਂਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਮਹੇ।

आज के समय में व्यस्त जीवन शैली, बढ़ती महंगाई और इंटरनेट पर बढ़ती निर्भरता के कारण सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ डायग्नोसिस लोगों की आदत बन चुकी है। बिना किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लिए लोग फार्मासिस्ट को समस्या के लक्षण बताकर दवाई ले लेते हैं। हालांकि ये आदत गंभीर बीमारी को जन्म दे सकती है। आज हम इस लम्हे प्रोग्राम के माध्यम से बताएंगे कि किस तरह डॉक्टर से बिना सलाह लिए दवाइयों का सेवन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम चेतन के साथ। ड्राई कॉफ, टाइटनेस इन द चेस्ट, गले में दर्द और खराश के साथ कफ निकलने पर कफ सिरप लिया जाता है, लेकिन कफ सिरप के कारण सुस्ती, नौजिया, घबराहट, याददाश्त में कमी जैसे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ऐसे में बिना डॉक्टर के सलाह लिए कफ सिरप न लें। मामूली खांसी से छुटकारा पाने के लिए घरेलू नुकसान का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यह ज्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह लें। कब्ज जैसी समस्या को दूर करने के लिए लैक्सेटिव मेडिसिन इस्तेमाल में लाया जाता है। साधारण तौर पर किसी भी डिलीवरी या सर्जरी के पहले पेट साफ करने के लिए ऐसी दवाई दी जाती है, लेकिन इन दवाइयों का लंबे समय तक सेवन करने से पेट में दर्द, डिहाइड्रेशन, लैक्सेटिव कोलाइटिस, लूज मोशन, किडनी में स्टोन और हार्ट की मसल्स में कमजोरी हो सकती है। आमतौर पर बुखार और किसी भी तरह के एलर्जी से होने वाली जुकाम की स्थिति में ऐसी दवाइयाँ दी जाती है जो बैक्टीरिया, फंगस और ऐसे ही अन्य परजीवियों को नष्ट करने का काम करती है। लेकिन इन दवाइयों के सेवन से त्वचा में एलर्जी, डायरिया जैसी समस्या हो सकती है। ऐसे में डॉक्टर से बिना सलाह लिए इन दवाइयों का सेवन करने से बचना चाहिए। जोड़ों का दर्द होने पर या किसी दुर्घटना में चोट लगने पर लोग दर्द से राहत पाने के लिए पेन किलर ले लेते हैं, लेकिन पेन किलर के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे में जी मचलना, गैस की समस्या, पेट दर्द और लूज मोशन आदि। इसके अलावा ऐसी दवाइयां लेकर और किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में बिना डॉक्टर की सलाह लिए पेन किलर का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें। सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ डायग्नोसिस आप घर पर बैठकर मत कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि डॉक्टर की पर्ची के बिना सेल्फ मेडिकेशन काफी है तो आप गलत हो सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन के कई नुकसान हैं, जिसका असर लंबे समय में जाहिर हो सकता है। बुनियादी तौर पर जब दवाइयां आपके शरीर में प्रवेश करती है तो तेजी से अवशोषित हो जाती है और प्रतिक्रिया पैदा कर सकती है। हो सकता है कभी आपको राहत मिल जाए या बाद में साइड इफेक्ट जाहिर हो। खरीदी गई हुई दवाएं बहुत नशीले और खतरनाक हो सकती है। मिसाल के तौर पर रेगुलर मिलने वाला कॉफ सिरप खासकर इलाज में बहुत मशहूर है। ऐसे कॉफ सिरप्स इस्तेमाल करने पर मरीज नींद से भरा हुआ महसूस करने लगता है, लेकिन अधिकतर लोग राहत के लिए ऐसे कॉफ सिरप ले लेते हैं। हमने ऐसे कई एग्जांपल्स देखे हैं जहां कॉफ सिरप लेकर लोग नींद में चले जाते हैं और यह खासकर ड्राइवर्स के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। वर्तमान में यह सिरप डॉक्टर की सलाह पर बेचा जा रहा है। इसके विपरीत कई एंटीबायोटिक्स डॉक्टर की पर्ची के साथ बेची जाती है। एंटीबायोटिक्स की खरीदारी डॉक्टर के सुझाव पर करनी चाहिए। बिना प्रिस्क्रिप्शन के उसकी बिक्री को अपराध समझना चाहिए। कभी कभी लोग डॉक्टर के मशवरा के बिना पेन किलर को खरीद लेते हैं। शरीर में पहुंचने पर पेन किलर भविष्य में दर्द का कारण बन सकता है। सेल्फ डायग्नोसिस और सेल्फ मेडिकेशन को रोका जा सकता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत खुद से करनी चाहिए। आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयों की खरीदना छोड़ देनी चाहिए। इसके अलावा भी सोशल मीडिया के माध्यम से सेल्फ मेडिकेशन के खतरे से लोगों को अवगत कराया जा सकता है। सबसे ज्यादा अहम है दुकानदार को बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा की बिक्री रोकने के लिए शिक्षित किया जाए। पिछले सालों में लोगों के खानपान और हेल्थ केयर संबंधी आदतों में कई सारे बदलाव आए हैं। कोविड से बचाव में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए लोगों ने बिना डॉक्टर से बिना सलाह मशवरा किए इंटरनेट पर पढ़कर कई तरह के दवाइयों और मल्टीविटामिन का खुद से ही सेवन शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अब उन्हें किडनी और लिवर से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह बहुत ही गलत आदत है जो इन दो अंगों को ही नहीं बल्कि आपके ओवरऑल हेल्थ को प्रभावित कर सकती है। तो जान ले कौन सी दवाइयों को ज्यादा सेवन से किस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि लोग बीमारी के साथ साथ खुद से दवा लेना साइड इफेक्ट भी झेल रहे होते हैं। इन्हें बाद में गलती का

एहसास होता है, पर कब तक बॉडी पर इसका असर पड़ चुका होता है। खुद से दवा लेने के खास पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। शर्म या लिहाज के चलते महिलाएं खुद से ही दवा ले लेती है या परिवार को प्राथमिकता देने के चक्कर में वो अपनी तबीयत पर ध्यान नहीं देती और खुद से इलाज शुरू कर देती है। ऐसी गलती न करें। कुछ लोग खुद से सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, पर आपको बता दें कि इससे भी आपकी सेहत बिगड़ सकती है। सप्लीमेंट्स का असर हर शरीर पर अलग ढंग से होता है। अगर सही तरीके की बात की जाए, सप्लीमेंट्स लेने से पहले भी आपको कई टेस्ट करवाने चाहिए। जैसे कई लोग प्रोटीन, विटामिन आदि सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, पर उन्हें इसकी जरूरत नहीं होती, इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन आपको बीमार कर सकता है। सेल्फ मेडिकेशन का मतलब है बिना डॉक्टर की सलाह लिए खुद से दवा ले लेना। जो लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं उन्हें इसके नेगेटिव परिणाम भी झेलने पड़ते हैं। सेल्फ मेडिकेशन के असर से उल्टी, चक्कर आना, सिर में दर्द से लेकर मोटापा, कैंसर जैसे जानलेवा बीमारियां भी हो सकती है। इसीलिए आप अपने और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए सेल्फ मेडिकेशन से बचे। उम्र और बीमारी के मुताबिक तय होता है दवा की डोज। डोज ऑफ मेडिसिन इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू एज एंड डिजीज। आपने दवाओं पर नाम के साथ उसकी एमजी भी लिखी देखी होगी, जैसे 75 एमजी या 500 एमजी। ये दवा की डोज होती है। उम्र और बीमारी के मुताबिक डोज डॉक्टर तय करता है। अगर आपने छोटे बच्चे को हाई डोज दे दी तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। वही अगर हल्के बुखार में आपने हाई डोज ले ली तो आपको घबराहट ये बेचैनी होगी। इसीलिए भी डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेना खतरनाक है। वायरल होने पर या मलेरिया जैसे रोगों में भी लोग खुद से दवा ले लेते हैं जिनका प्रिस्क्रिप्शन उनके पास नहीं होता है। कई बार तो इन रोगों से बचने के लिए लोग पहले से ही दवा खाना शुरू कर देते हैं, पर इन दवाओं को खाने से आपको रोग नहीं होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बिना प्रिस्क्रिप्शन सप्लीमेंट्स खाने के नुकसान बहुत है दोस्तों। साइड इफेक्ट्स ऑफ टेकिंग सप्लीमेंट्स विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। टीवी पर एड देखकर या इंटरनेट पर पढ़कर लोग सप्लीमेंट्स लेने के बारे में सोचते हैं, पर आपको नेचुरल फूड से ही पोषक तत्वों की कमी पूरी करनी चाहिए। खुद से सप्लीमेंट्स लेना हानिकारक हो सकता है। उम्र बढ़ने पर पोषक तत्वों की कमी होती है जिसे पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स की मदद ली जाती है, पर उसे डॉक्टर

0: कई बार हार्मोन का स्तर घटा या बढ़ जाता है, जिससे आपको स्ट्रेस हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। खुद से दवा लेने पर लीवर को नुकसान पहुंच सकता है। बहुत सी दवाइयां लीवर को इफेक्ट करती है, इसीलिए डॉक्टर दवा के साथ एंटीबायोटिक भी देते हैं, पर खुद से दवा लेने पर आपका लीवर डैमेज हो सकता है। अगर आप दर्द के लिए पेन किलर खा रहे हैं, तो लंबे समय तक इसका सेवन करने से आपके बाल झड़ सकते हैं, पेट में ब्लीडिंग हो सकती है, सुस्ती आना, मुंह सूखना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, डिप्रेशन, मसल टाइटनेस एंड सोरनेस, ये सब पेन किलर से होते हैं। बुखार, खांसी या वायरल की दवा अगर आप खुद से लेते हो, तो आपके पेट में गड़बड़, एसिडिटी, किडनी से जुड़ी शिकायत आदि हो सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक केमिस्ट की बताई हुई दवा भी न ले, कई बीमारियों में जांच की जरूरत होती है। दवा के साइड इफेक्ट तुरंत न दिखे, पर आपको बाद में खुद से दवा लेने के दुष्परिणाम झेलना पड़ सकता है, इसीलिए डॉक्टर की मदद ले। With this very useful information about the harmful effects of self-diagnosing and self-medication, this is Chetan wrapping up for today. I'll get back to you in our next segment. Till then, bye. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039. I repeat 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat feedbackamc1@gmail.com. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: हुए तुसी सुन रहे सी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र है।
2: जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा शिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, इह सब जानण लई सुणो जापान च हो रहीयां एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तों 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तों 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर दे वक-वक चैनल्स दे FM रेनबो, प्राइमरी चैनल, DRM ते DTH चैनल्स दे। इदे नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल ते 20 सितंबर तों 3 अक्टूबर तक। एशियन खेडां दी पल-पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।

दोस्तों आगाज करते हैं प्रोग्राम जिंदगी हसीन है दा। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी दे दो बड़े खास पहलू कह लो कि बड़े खूबसूरत पहलू ने, एक याद ते दूसरा इंतजार। जी हाँ, यादां खुशबू ने जो दूर होके भी साहां विच वसियां रहिंदियां ने, अते इंतजार वो रोशनी है जो हर हनेरे नू एक उम्मीद विच बदल दिंदा ते एक उम्मीद दी लौ जगाई रखता है। किसी दे इंतजार दा भी अपना ही मजा हुंदा है। ये उह एहसास है जो दूरियां नू कटा के दिल नू होर नेड़े लै आउंदा है। ते यादां यादां बीते हुए कल दी ओ मिठी जी कहानी हुंदी है, जिन्हां नू याद करके अखां विच कदी ते नमी आ जांदी है ते कदी चेहरे ते एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कान भी आ जांदी है। इंतजार सिर्फ एक समा बतीत करन दा नहीं, बल्कि उस पल दी उड़ीक है जदों साहां नू सुकून अते दिल नू मुकम्मलता मिलदी है। जैसे अगर गल करिए दिल दे उना तो सब तो करीबी साथियां दी, जिन्हां नू असीं याद ते इंतजार कहंदे हां। जदों कोई अपना दूर हुंदा है तां याद बन के साहां विच घुल जांदा है ते अखां विच इक उम्मीद बन के ठहर जांदा है। घड़ी दी सुइयां जिवें रुक जांदियां।

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लग दी है, मुबारका फेरते, पर किते उन्होंने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाने की गलत नहीं कही। जे कही है तो फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि आजकल ये ठगण के नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मांगते।

आकाशवाणी जलंधर से सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी सब एक नजरिया है। जिस तरह असी अपना नजरिया बना लवांगे, जिंदगी उस तरह ही लगेगी। जी असी खुश रवांगे तो जिंदगी खुशनुमा होएगी, और जी असी उदास रवांगे तो मायूस रवांगे तो जिंदगी भी सानू मायूस लगेगी। सानू हमेशा खुश रहना चाहिए। दोस्तों, एक बार एक नौजवान अपने दादा जी को गया तो कहने लगा, बाबा जी जिंदगी विच बड़े दुख अते मुश्किल ने, मन हमेशा उदास रहिंदा है। दादा जी ने बड़े ध्यान नाल दी गल सुनी तो उन्हें वेड़े विच लगे गुलाब के बूटे को लै गए तो पूछया, तैनू इस बूटे च की दिखाई दे रहा है? पोते ने ध्यान नाल देखा तो जवाब दिता, बाबा जी थोड़े जे फुल ने पर तिखे तिखे कंडे बहुत ज्यादा ने। दादा जी मुस्कुराए तो बोले, पुत्र तेरा ध्यान कंडियां वल गया, पर तू यह नहीं सोचा कि इन्हें कंडियां दे विचकार भी वो गुलाब किन्नी खुशबू अते खूबसूरती बिखेर रहा है। बेटा, इसे तरह ही मुश्किलां कंडियां वर्गियां होंदियां ने, पर खुशी साढ़े हाथ विच ही है। असीं खुशबू बननी है या कंडियां तो डर के दुखी होना है। या दोस्तों, जिंदगी विच कंडे नहीं, अपने अंदरले गुलाब नूं देखो ते हमेशा मुस्कुराते रहो। जी हाँ दोस्तों, और मुस्कुराते हुए इस प्रोग्राम अगे वधाने ते अगला गीत तुहाडे लई फिल्म करमा दूं।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਤਾ ਸਾਥੀ ਤੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਸੀ ਯਾਰੀ ਜੱਟੀ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਰਾਤ 9:15 ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ, 9:00 ਨਿਊਜ਼ ਐਟ 9, ਰਾਤ 9:15 ਸੁਣੋਗੇ ਸਪੋਟ ਲਾਈਟ, ਤੇ ਰਾਤ 9:30 ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਗਿਆਨ ਭਾਰਤੀ, ਤੇ ਰਾਤ 10:00 ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਵੀਹਵੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਝਲਕੀਆਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, बीएलओ उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम में स्वर्ण, तजिंदर पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। बीएलओ बाद में इन दस्तावेजों को ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पूरा हो चुका है।
2: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर एसआईआर के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के बारे में निर्वाचन आयोग पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
3: इसी एसआईआर को केरला की कांग्रेस ने सही माना कि उनके कारण हमको जीत मिली है, क्योंकि वामपंथियों ने जो इलीगली नाम घुसवाए थे वो निकले, फेक वोटर्स, और हम जीते। चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि शी मार्ट कॉन्सेप्ट महिला उद्यमियों को बाजार से जुड़ने के लिए बेहतरीन मंच देगा।
4: एनसीसीएफ द्वारा 2500 से अधिक रिटेल आउटलेट्स के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में 300 से अधिक सी मार्ट स्टोर भारत ब्रांड उत्पाद और लोकल उत्पाद इसके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके कारण प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डायरेक्ट रिटेल मार्केट इस सब

0: का फायदा किसानों को और इसके साथ साथ महिला उद्यमियों को मिलेगा।
1: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। गृह मंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृता नंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर मिसाल कायम की है।
0: 10 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की भावना और इसके साथ साथ 101 गांवों को पूर्णतया से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अम्मा ने बहुत बड़ा काम किया है। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विश्व शांति सम्मेलन और विश्व धर्म संसद जैसे कई मंचों में हिंदुत्व का, सेवा का संदेश अम्मा ने पहुंचाया।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष में हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है।
2: परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक संवाद कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं और परीक्षा के तनाव को कम करने के साथ साथ पढ़ाई को आनंददायक बनाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। 2018 में एग्जाम वॉरियर्स अभियान के तहत शुरू की गई यह पहल युवाओं को तनाव के बजाय आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। इस पहल ने परीक्षा को डर या दबाव के बजाय सीखने पर जोर दिया है। परीक्षा पे चर्चा के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खुद को मजबूत बनाने और हर तरह के दबाव का सामना करने में सक्षम बनने की सलाह दी।
3: किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, एक तो संकल्प करना।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मध्य प्रदेश की छात्रा कृतिका सेन ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा से उन्हें प्रेरणा मिली और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली।
4: पीएम नरेंद्र मोदी जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने हमें बताया कि एग्जाम्स की तैयारी से लेकर फाइनल एग्जाम तक हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें एग्जाम्स से एकदम वॉरियर्स की तरह लड़ना चाहिए। फिर वहां से आके हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्स दिए और हमने बहुत अच्छा स्कोर किया।
2: इस कार्यक्रम में सिर्फ अच्छे अंक लाने पर नहीं बल्कि छात्रों के समग्र विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। यह परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के साथ साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखें अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद ही जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। मुख्य न्यायाधीश आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के पुनः एकीकरण विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए।
6: चाइल्ड एनकाउंटर्स,
7: जब कोई बच्चा नशीले पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसकी शिक्षा बाधित होती है, परिवार के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो शोषण, हिंसा, मानव तस्करी और अन्य प्रकार के कई दुर्व्यवहारों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए बच्चों में नशीले पदार्थों का सेवन केवल जन स्वास्थ्य की चिंता के रूप में नहीं बल्कि समान रूप से बाल संरक्षण से जुड़ी चिंता के रूप में भी समझा

0: जाना चाहिए।
1: चाइल्ड प्रोटेक्शन कंसर्न।
2: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 10% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में सुश्री सीतारामन ने कहा कि उच्च विकास दर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में प्रगति को गति देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा को कल तक के लिए रोक दिया गया है। तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। उधर ओडिशा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 10 जिलों में 73,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं।
3: उड़ीसा के 10 जिलों में लगातार बारिश से 80 ब्लॉक, 325 ग्राम पंचायतों और 1071 गांव के 73,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 4,480 हेक्टेयर खेती की जमीन भी प्रभावित हुई है। उत्तरी ओडिशा में जड़का और बैतरणी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। पानी का बहाव बढ़ने के कारण हीराकुद बांध के 20 गेटों से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी आज दोपहर से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य में बारिश की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
4: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज अचानक बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्के हिमपात की खबर है। राजधानी शिमला में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। वहीं निचले इलाकों में बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल 27 सितंबर को प्रदेश के 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और किन्नौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: इस बीच मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका के कारण 28 सितंबर तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरलम तट पर 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। पर्यटन सहित समुद्र तट पर सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
5: जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाजी में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। स्कॉश में जोशना चिनप्पा और वेलावन संथल कुमार की मिक्स डबल जोड़ी ने कांस्य पदक देश के नाम किया। वहीं अभय सिंह पुरुष सिंगल्स और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है।

0: नमस्कार, विज्ञान भारती के इस अंक में मैं शिबा राकेश
1: और मैं सुरेंद्र राजेश्वरी
0: आप सभी का स्वागत करते हैं। विज्ञान भारती के इस अंक में आप सुनेंगे संपादकीय, जिसका विषय है निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय पर प्रोफेसर उमेश वाघमारे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव से भेंट वार्ता।
0: ब्रह्मा मिशन लैब, अतीत से भविष्य का सफर, विषय पर डॉक्टर अंजलि त्रिवेदी, अध्यक्ष ब्रह्मा मिशन, बीरबल सहानी पुरा विज्ञान संस्थान लखनऊ से बातचीत।
1: CSIR नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट की वरिष्ठ वैज्ञानिक पूनम अरोड़ा से भेंट वार्ता, विषय होगा भारत का अपना टाइमिंग सिस्टम।
0: स्वच्छ और स्वस्थ नदी, पारिस्थितिकी तंत्र के सूचक, गांगेय डॉल्फिन विषय पर जीव विज्ञानी डॉक्टर गोपाल शर्मा से भेंट वार्ता।
1: कुछ विज्ञान जगत की बातें, विज्ञान समाचार, महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों की जयंती, निधन, विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े प्रमुख दिवस।
0: आज हम विज्ञान भारती की शुरुआत निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत विषय से कर रहे हैं। निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के लिहाज से एक क्रांतिकारी अध्याय है। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र आज स्वतंत्र, आधुनिक और बेहद आक्रामक निजी विजन के साथ वैश्विक मंच पर अपनी धाक जमा रहा है। सरकार द्वारा वर्ष 2020 में किए गए नीतिगत सुधारों और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस के गठन ने वो ठोस धरातल तैयार किया जिस पर आज नए भारत के स्पेस प्रोनियर्स अपनी कामयाबी की इमारत खड़ी कर रहे हैं। आंकड़ों के झरोखे से देखें तो ये बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में वर्ष 2014 तक मात्र एक पंजीकृत स्पेस स्टार्टअप था, जिसकी संख्या अगस्त 2026 तक बढ़कर 440 से अधिक हो चुकी है। ये आंकड़ा ये दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि भारत के युवाओं में अंतरिक्ष तकनीक को लेकर कितनी उत्सुकता और प्रतिभा है। इस नीतिगत और वित्तीय प्रोत्साहन का परिणाम पृथ्वी से आकाश तक साफ दिख रहा है। स्काई रूट एरोस्पेस ने निजी रॉकेट विक्रम एस लॉन्च कर इतिहास रचा, तो वहीं जुलाई 2026 में विक्रम एक की सफल उड़ान ने देश को लो अर्थ ऑर्बिट में निजी उपग्रह स्थापित करने की पूर्ण क्षमता दी है। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन विकसित करना, ये साबित करता है कि भारतीय स्टार्टअप्स अत्याधुनिक नवाचार का नेतृत्व कर रहे हैं। हाल ही में सरकार द्वारा घोषित 1,000 करोड़ रुपए का स्पेस वेंचर कैपिटल फंड और 500 करोड़ रुपए का टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड इस रफ्तार को और तेज करेगा। फिलहाल भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था यानी स्पेस इकोनॉमी का आकार 8.4 से 9 बिलियन डॉलर के बीच आंका गया है, जो वैश्विक अंतरिक्ष बाजार का लगभग 2-3% है। भारत सरकार का लक्ष्य इस अर्थव्यवस्था को वर्ष 2035 तक 40 से 45 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है, जिससे वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 8% हो जाएगी। स्पष्ट है कि भारत का स्पेस सेक्टर अब सिर्फ अकादमिक शोध या सरकारी गौरव का विषय नहीं रह गया। ये एक आत्मनिर्भर, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक उद्योग बन चुका है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया उपग्रह भारत के निजी लॉन्च पैड से अंतरिक्ष की सैर पर निकलेंगे।
1: जब हम वर्ष 2047 की कल्पना करते हैं तो आंखों के सामने एक ऐसे भारत की तस्वीर उभरती है जो आत्मनिर्भर हो, आर्थिक रूप से सशक्त हो और विश्व पटल पर ज्ञान विज्ञान का नेतृत्व कर रहा हो। इस महासंकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम है विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार, और इसे साकार करने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। तो आइए सुनते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर उमेश वाघमारे से प्रवीण कुमार की बातचीत।
2: देश को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा?
3: द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देयर वी आर वर्किंग इन वेरियस लेवल्स। इन वन प्रोग्राम वी फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, जहां पे स्कूल चिल्ड्रन

0: से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स, पीएचडी स्टूडेंट्स, उसके बाद में फैकल्टी मेंबर्स, सबको सपोर्ट किया जाता है। इसको इंस्पायर स्कीम कहते हैं। दूसरे एफर्ट में मिशन लेवल में काम चल रहा है, यानी एक मिशन है नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज, जिसके थ्रू क्वांटम बिट्स, क्वांटम कंप्यूटर्स बना सकते हैं, क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क बना रहे हैं, और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसकी वजह से सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी जिसको कहते हैं, वो अचीव कर सकते हैं। और एक एफर्ट है क्वांटम सेंसिंग पर, कि जिसके थ्रू बहुत टाइनी चेंजेस जो होते हैं एनवायरनमेंट में, मैग्नेटिक फील्ड हो, वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सेंसर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, दे कैन बी यूज्ड इन डिफेंस, दे कैन बी यूज्ड इन ड्रोन्स। लॉट्स ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजीज आर बीइंग डेवलप्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और एक मिशन है जो MIT का, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारा भी एफर्ट जारी है, जिसमें एक है कि हमारे देश का फाउंडेशनल मॉडल बनाने जा रहे हैं, यानी जिसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, जो आप टेक्स्ट का टेक्स्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, इमेज में कन्वर्ट सकते हैं, मल्टी मॉडल में, वैसा मॉडल डेवलपमेंट जो करना है हमारी लैंग्वेजेस के लिए, हमारे नॉलेज के लिए, तो जो है इंडिजिनस वो डेवलप हो रहा है।
1: और आए दिन सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स की चर्चाएं होती रहती हैं, तो इसके लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है?
0: सो सेमीकंडक्टर इज अगेन अ मिशन, नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन, जिसमें फोकस इंडस्ट्री पर, नॉट रिसर्च बट मोस्टली ऑन डेवलपमेंट कैपेबिलिटी टू फैब्रिकेट चिप्स ऑन अ लार्ज स्केल। डिजाइनिंग वाज ऑलरेडी डन इन इंडिया, इनफैक्ट मोस्ट सेमीकंडक्टर चिप्स डिजाइन इज डन इन बाय आवर कलीग्स, बट एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इज बीइंग डेवलप्ड नाउ by involving industry and also government funding for national semiconductor mission. Critical minerals ek naya initiative hai jo ministry of mines, department of science technology kafi sare haath milakar kaam kar rahe hai us par, kyunki isme problem aise hai na ki ek hota hai extraction from mines is one type of thing, second is recycling, jo apne electronic equipment hoti hai, batteries hoti hai, batteries mein lithium hota hai, uska lithium ek baar battery die ho gayi to kaise extract kare, wo kafi sari technologies develop ho rahi hai ki jiski wajah se sustainability support ho jaye। इनोवेशन इंडेक्स अभी वो 39 जो था हमारा ना, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज नाउ होस्टिंग व्हाट इज कॉल्ड एज RDIF, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड, जिसमें 1,00,000 crore रुपीज हैव बीन इन्वेस्टेड फॉर 5 years, एंड ईच ईयर दे विल गिव 20,000 crores, एंड दिस इज यूज बाय सेकेंड लेवल फंड मैनेजर्स टू गिव अ लोन टू अ स्टार्टअप कंपनी और अ डीप टेक कंपनी। डीप टेक कंपनी ये होती है कि साइंस के प्रिंसिपल बहुत क्रूशियल करके वो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, स्केलिंग अप करते हैं, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 4 से ऊपर जाने के लिए ये फंडिंग है, खाली इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन इंडस्ट्री को 50% फंडिंग खुद को लेके आना पड़ता है, और ये 50% हाँ, ये 50% बहुत लो इंटरेस्ट लोन होता है, लंबा पीरियड का लोन होता है
1: जी। और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है?
0: वो भी मिशन जैसा ही एफर्ट चल रहा है, जिसमें एक बड़ा एफर्ट है CCUS, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वो जो ग्रीन हाउस गैस है उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है एटमॉस्फेयर का, उसको कैप्चर करके स्टोर करना है और कन्वर्ट करना है कि जो यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जो कि मिथेनॉल हो, मिथेनॉल इज अ फ्यूल यू कैन यूज इन कार्स, so it's also called as carbon recycling, you use solar energy to reduce carbon dioxide using hydrogen to generate methanol। clean energy एक आपने सुना होगा, government ने अभी nuclear policy relax कर दी है, जिसमें private players भी आ सकते हैं। nuclear energy if you look at it, it's one of the cleanest energies, और इसमें अगर micro size reactors set कर सकते हैं छोटे छोटे गांवों के लिए, ये बहुत इफिशियंट सॉल्यूशन होगा। दूसरा डेवलपमेंट है फ्यूजन बेस्ड एनर्जी भी आ रही है, बाकी जो रिन्यूएबल एनर्जीज है जो सोलार हो वो ऑलरेडी बहुत इकोनॉमिक हो गई है उसमें, और मैन्युफैक्चरिंग का ही काम बाकी है। हाइड्रोजन स्टिल एक्सपेंसिव, सी जनरेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एट लो कॉस्ट इज स्टिल अ चैलेंज।
1: और युवा श्रोताओं के लिए आपकी क्या सलाह होगी?
0: वन इज बी वेरी एम्बिशियस एंड करेजियस, नॉट टू बी स्केर्ड ऑफ फेलियर्स। दूसरी चीज है कि हार्ड वर्क के सिवा कुछ नहीं होता है, अगर आपको बड़ा कुछ अकम्प्लिश करना है तो दो चीजें करनी पड़ती है, एक है लोगों के साथ काम करो सेल्फलेसली, और दूसरा है हार्ड वर्क करना चाहिए।
2: देश में एक राष्ट्र एक समय को लागू किया जा रहा है, इसके लिए भारत सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2023

0: 26 को नोटिफाई कर दिया है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं CSIR नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी भारत का राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक पूनम अरोड़ा से दिलीप झा की बातचीत। भारत का अपना टाइमिंग सिस्टम,
1: एक देश एक समय को लेकर के अधिसूचना जारी की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
2: हम भारत का माप विज्ञान केंद्र है, CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, और हम सभी प्रकार की जो मानक इकाइयां हैं सभी के स्टैंडर्ड हम मेंटेन करते हैं, टाइम भी उनमें से एक है। तो हम देश का जो भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, हम देश का समय रखते आ रहे हैं काफी दशकों से, 1950-55 से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। अभी हम ये भारत का मानक समय बनाते हैं, इसको इंटरनेशनल रेफरेंस टाइम जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय रेफरेंस टाइम है, जिसको कि कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम UTC के नाम से जाना जाता है, हम उसके साथ इसको बिल्कुल फॉलो करके चलते हैं। तो कुछ नैनो सेकंड्स के साथ हमारा भारतीय मानक समय UTC को ट्रैक करता है। ये कार्य हम कर रहे हैं, जो कि एक हमें कॉन्स्टिट्यूशन की एक जिम्मेदारी है जो हम निभा रहे हैं, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, डिसेमिनेट भी करते हैं, आम जनता तक हम समय को पहुंचाते हैं। अलग अलग तरह के माध्यम है, बहुत ज्यादा जिसको जरूरत है एक्यूरेसी की, जैसे कि इसरो है, उसको नैनो सेकंड से चाहिए, तो हम सैटेलाइट के माध्यम से देते हैं, आम जनता को हम इंटरनेट के जरिए टाइम देते हैं। अब ये जो अधिसूचना है, इसका महत्व ये है कि अभी तक हमारे देश में जो समय है, इसका एक रेफरेंस, सेंट्रल एक नेशनल रेफरेंस, वो अभी तक लीगल स्टेटस समय को नहीं मिला था। कई देशों में ये बहुत टाइम से पहले से चला आ रहा है कि वहां का जो राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान है, जो वो समय को रखता है, उसी समय को उस देश का लीगल समय माना जाता है। तो ये जो अभी अधिसूचना जारी हुई है, ये हमारे भारतीय मानक समय को वो लीगल स्टेटस दे रहा है। इसका ये मतलब है कि हर पर्पस से, जैसे इसमें मेंशन किया गया है कि चाहे वो कानूनी हो या प्रशासनिक हो या जो भी हो, अब यही एक रेफरेंस रहेगा। उसकी ज्यादा जरूरत क्रिटिकल सेक्टर्स को, आजकल हम लोग बहुत डिजिटल काम कर रहे हैं, सब डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आ गए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, हम पैसा पे करते हैं, हम UPI ट्रांजेक्शंस करते हैं, मोबाइल बैंकिंग करते हैं, फिर हमारी जो आजकल की आधुनिक सुविधाएं हैं, आजकल हम 4G 5G 6G वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, हम कनेक्टेड रहते हैं, तो ये जो सारा कुछ हम कर पाते हैं, इसमें टाइम स्टैम्प की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। और अगर आप किसी चीज के बारे में कुछ जानकारी करना चाहें, छानबीन करना चाहें, अगर कुछ गलत हो जाता है, तो वो जो छानबीन तभी अच्छे से हो सकती है कि अगर सभी टाइम स्टैम्प्स मैच हो। अगर उसमें मिसमैच होता है, और मिसमैच कब होगा, अगर सभी लोग अलग अलग सोर्स से टाइम लेंगे। अगर ये अधिसूचना को फॉलो करा जाएगा और सभी लोग एक ही मानक समय को फॉलो करेंगे, उसी सोर्स से कनेक्टेड रहेंगे, तो ऐसी समस्याएं हैं जो आती हैं, ज्यादातर की जो फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड की बात की जाती है, वो फ्रॉड्स कंट्रोल में आएंगे, वो कम होंगे। तो देश की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ज्यादातर क्रिटिकल सेक्टर्स, जैसे कि बैंकिंग है आपका, फाइनेंशियल सेक्टर है आपका, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, नेविगेशन ऑफकोर्स हमारी स्पेस एजेंसी है, स्मार्ट अगर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पावर ग्रिड्स है, ये जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, अगर ये सब कर लेंगे, भारतीय मानक समय को फॉलो करेंगे, तो काफी हद तक जो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, देश की सिक्योरिटी भी बेहतर होगी। तो ये इस अधिसूचना का अभी पर्पस है।
0: सितंबर का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने में भौतिकी, रसायन, औषधि और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में युगांतरकारी योगदान देने वाले कई दिग्गज वैज्ञानिकों का जन्म हुआ। आइए उनके योगदान को याद करें। भारत के महान सिविल इंजीनियर और राजनेता सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर को हुआ था। उनकी दूरदर्शी जल प्रबंधन और बांध तकनीकों के सम्मान में भारत प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाता है।
3: महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 में हुआ। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस के नियमों का जनक इन्हें माना जाता है। इनके आविष्कारों ने आधुनिक इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर की नींव रखी। जॉन डाल्टन का जन्म 6 सितंबर 1766 को हुआ था। इन्हें आधुनिक परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी के प्रणेता और वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस या डाल्टोनिज्म पर पहला वैज्ञानिक शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक के तौर पर याद किया जाता है। श्रोताओं, हमारी पृथ्वी और प्रकृति अपने गर्भ में लाखों करोड़ों वर्षों का इतिहास समेटे हुए हैं। प्राचीन जीवाश्म, पुरानी तलछट, पेड़ पौधों के सूक्ष्म अवशेष और बदलते मौसम के निशान। लेकिन ये केवल अतीत की धूल नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की कुंजी हैं। आज हम आपको ले चलते हैं लखनऊ स्थित ऐतिहासिक बीरबल सहानी पुराविज्ञान संस्थान BSIP

0: में, जहां आधुनिक तकनीक और प्राचीन रहस्यों का संगम हो रहा है एक बेहद महत्वाकांक्षी पहल में, जिसका नाम है ब्रह्मा मिशन। इस मिशन और प्रयोगशाला में क्या कुछ होगा और इससे कौन कौन से हमें लाभ होंगे, इसे जानने के लिए सुनते हैं ब्रह्मा मिशन की प्रमुख वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अंजलि त्रिवेदी से प्रवीण कुमार की बातचीत।
1: डॉक्टर त्रिवेदी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ब्रह्मा मिशन है क्या और इसका नाम ब्रह्मा क्यों रखा गया है।
2: ब्रह्मा मिशन एक ऐसा मिशन है जो पहली बार भारतवर्ष में शुरू किया गया है। इसका पूरा नाम है बीरबल साहनी रिपोजिटरी फॉर AI एनेबल्ड फॉसिल हेरिटेज मॉडलिंग एंड आर्काइव। ऐसी वैज्ञानिक पहल है जिसमें हमारे पास उपलब्ध फॉसिल जैसे पॉलन, स्पोर्स, लीव्स, वुड, फ्रूट और अन्य जितने भी साइंटिफिक रिकॉर्ड्स हैं, उनको डिजिटली व्यवस्थित करना और संरक्षित करना है। इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और आधुनिक मॉडलिंग टेक्निक्स को भी जोड़ा जाएगा। हमारा उद्देश्य है पृथ्वी के अतीत को समझना, वर्तमान को बेहतर ढंग से देखना और भविष्य के लिए वैज्ञानिक ज्ञान तैयार करना। पृथ्वी का इतिहास बहुत लंबा है, लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है और इस इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राकृतिक अभिलेखों में सुरक्षित हैं। हमारे पास जीवन की उत्पत्ति से लेकर आज तक जैविक और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रमाण फॉसिल, सेडिमेंट और पोलन एक्सेट्रा के रूप में रिकॉर्ड के रूप में मौजूद हैं। समस्या ये है कि जितने भी रिकॉर्ड हैं, वो अलग अलग कलेक्शंस और अलग अलग लेबोरेटरीज और रिसर्च प्रोजेक्ट में बिखरे हुए हैं। इसीलिए ब्रह्मा मिशन का प्रयास है कि इन वैज्ञानिक अभिलेखों को डिजिटाइज स्टैंडर्डाइज किया जाए और भविष्य में रिसर्चर इनके प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके। ब्रह्मा मिशन की खास बात यही है कि इसे मल्टी प्रॉक्सी साइंटिफिक रिकॉर्ड्स के रूप में बनाया गया है। पॉलन और स्पोर्स के साथ बाकी और भी जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसे पत्तियां हैं, लकड़ियां हैं, सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो होते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। इसके अलावा जियोकेमिकल रिकॉर्ड्स, पेलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड, सेडिमेंट्स और अन्य जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर प्रॉक्सी अपने अतीत के पर्यावरण का अलग अलग पहलू बताते हैं। जब हम इन सभी रिकॉर्ड्स को एक साथ देखेंगे तो पेलियो एनवायरनमेंट की इंटरप्रिटेशन अधिक मजबूत और वैज्ञानिक बन जाएगी।
1: अभी आपने जीवन उत्पत्ति की बात की, तो इतने छोटे छोटे फॉसिल्स यानी जीवाश्म जीवन की कहानी कैसे बताते हैं?
2: यह वास्तव में पेलियो साइंस की सबसे रोचक बात है। एक छोटा सा फॉसिल भी अपने समय में बहुत बड़ी कहानी बता सकता है। फॉसिल से हमें पता चलता है कि अतीत में कौन कौन से जीव और पौधे मौजूद थे, उनका विकास किस प्रकार हुआ और समय के साथ बायोडाइवर्सिटी में क्या परिवर्तन आया। जैसे पॉलन और स्पोर्ट्स हमें अतीत की वेजिटेशन को समझा सकते हैं, इसी तरह अलग अलग रिकॉर्ड्स को हम एक साथ देखने पे जीवन के विकास, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंट के साथ जीवों का क्या संबंध था, वो हम ज्ञात कर सकते। क्लाइमेट चेंज आजकल एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल इशू है, लेकिन क्लाइमेट को समझने के लिए केवल वर्तमान के डेटा को देखना पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी जानना होगा कि अतीत में क्लाइमेट और एनवायरनमेंट किस प्रकार बदलते रहे हैं। जो भी हमें मिलता है, जैसे पॉलन है, पत्तियां हैं, लकड़ियां हैं, सेडिमेंट्स हैं, जो भी हमें मिलता है वो हमें पास्ट एनवायरनमेंट की जानकारी देते हैं। जब हम इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को मॉडर्न रिकॉर्ड्स डेटा के साथ मॉडलिंग के साथ जोड़ते हैं तो हमें क्लाइमेट वेरिएबिलिटी और इन्वायरमेंटल चेंजेस की बहुत लंबी जानकारी मिल जाती है। इससे हम फ्यूचर रिसर्च और इन्वायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बता सकते हैं। आज रिसर्च तेजी से इंटरडिसिप्लिनरी हो रही है। एक युवा साइंटिस्ट केवल एक सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है, वो बहुत सारे विषयों को एक साथ लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो एक युवा साइंटिस्ट के लिए ये जरूरी है कि उसको AI, पैलियोंटोलॉजी के साथ साथ डेटा साइंस, पैलिनोलॉजी और क्षेत्र में जिसमें वो काम कर रहा है उसमें AI की वजह से उसको मदद मिले। ब्रह्मा मिशन ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्लेटफॉर्म बन सकता है।
3: और अब कुछ विज्ञान समाचार।
0: देश की सबसे बड़ी ऑयल एक्सप्लोरेशन और महारत्न कंपनी ONGC ने ओडिशा तट के पास महानदी ऑफशोर बेसिन में एक गहरे पानी वाले कुएं में गैस की खोज की है। समुद्र मंथन पहल के तहत ये कुआं खोजा है। कोणार्क से लगभग 43 किलोमीटर दूर स्थित ये कुआं इस अभियान के तहत ONGC द्वारा महानदी बेसिन में खोदा गया पहला कुआं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने अपने अंतरिक्ष सहयोग समझौते को 8 जनवरी 2032 तक बढ़ा दिया है। पुराने सहयोग के अलावा इस समझौते में कुछ नए क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है, जैसे मानव और रोबोटिक अंतरिक्ष अन्वेषण, अंतरिक्ष मौसम और बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों की स्थिरता। भारतीय वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका के इर्द गिर्द समुद्री बर्फ में बार बार दिखाई देने वाले खुले पानी के एक रहस्यमय

0: इलाके के 250 वर्ष तक के इतिहास का पता लगाने में सफलता मिली है। इससे ये जाहिर होता है कि अतीत में इस तरह की घटनाएं कई बार हुई। इनमें से कुछ बड़ी घटनाओं को देखा भी जा चुका है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR के शोधकर्ताओं की अगुवाई में ये अध्ययन किया गया है। इसमें डेनमार्क और नॉर्वे के वैज्ञानिक भी शामिल रहे। शोधकर्ताओं की टीम ने मॉड राइस पोलिना यानी समुद्री बर्फ से घिरे खुले समुद्र का एक बड़ा इलाका के इतिहास का पता लगाने के लिए अंटार्कटिक आइस कोर का उपयोग किया। असम के मुख्यमंत्री ने 21 सितंबर को गुवाहाटी के पास चंद्रपुर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एडवांस्ड रडार रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखी। प्रोजेक्ट नेत्रा के तहत विकसित होने वाली ये सुविधा अंतरिक्ष में मौजूद वस्तुओं और कक्षीय मलबे की निगरानी तथा ट्रैकिंग में भारत की क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से स्थापित की जा रही है। आइए अब उन महान वैज्ञानिकों को याद करते हैं जिनकी पुण्यतिथि सितंबर माह में है। सितंबर का महीना न केवल महान वैज्ञानिकों के जन्म के लिए जाना जाता है, बल्कि इस महीने में विज्ञान जगत ने कई ऐसी विभूतियों को खोया है जिन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। भारत के प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राजा रमन्ना का निधन 24 सितंबर 2004 को हुआ। वे 1974 में भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के मुख्य रणनीतिकारों और सूत्रधारों में से एक थे। उन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के महानिदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी।
1: सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पाश्चर का निधन 28 सितंबर 1895 को हुआ था। उन्होंने दूध और पेय पदार्थों को जीवाणु रहित रखने की पाश्चरीकरण विधि खोजी और रेबीज एंथ्रेक्स के जीवन रक्षक टीकों का आविष्कार किया। डीजल इंजन के आविष्कारक रुडोल्फ डीजल का निधन 29 सितंबर 1913 को हुआ था। उनके द्वारा तैयार किए गए उच्च दक्षता आंतरिक दहन इंजन ने औद्योगिक उत्पादन, भारी परिवहन और समुद्री जहाजरानी के क्षेत्र में क्रांति ला दी।
0: नदियों की अविरल धारा केवल पानी का बहाव नहीं, बल्कि जीवन का एक पूरा संसार अपने भीतर समेटे हुए है। और जब बात हमारी पावन गंगा, घाघरा, चंबल या ब्रह्मपुत्र जैसी सदानीरा नदियों की हो, तो जल की गहराई में एक ऐसा अद्भुत जीव तैरता है जिसे प्रकृति ने दृष्टि तो सीमित दी, लेकिन संवेदनाएं और बुद्धिमत्ता अपार बख्शी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेय डॉल्फिन यानी गैंगेटिक डॉल्फिन की। गांगेय डॉल्फिन इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? इसे समझने के लिए आइए सुनते हैं जीव विज्ञानी डॉक्टर गोपाल शर्मा से अल्पी कुमारी की ये बातचीत।
2: ये पूरे विश्व के लिए एक अद्वितीय प्राणी है जो हमारे गंगा में है, और गंगा में रहते हुए पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को अपने ओर आकर्षित किया है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली रिवर सिस्टम में मिलता है, जिसमें इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश आते हैं। पूरे इसके जो भी वितरण क्षेत्र हैं, वो चाहे गंगा हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, चाहे मेघना हो, सभी जगहों पर इसकी हत्या बहुत ही तेजी से हो रही थी। और मछुआरों को पता नहीं था कि हमारे जल तंत्र में, हमारे जलीय जो सिस्टम है, उसमें इसकी उपयोगिता क्या है। इसलिए हम लोगों ने जा करके लोगों को बताया और खास करके मछुआरों को बताया कि आप गंगा के डॉल्फिन को नहीं मारें, इनको बचाएं, इससे आपको मछली भी ज्यादा मिलेगा। और ये जो विचित्र प्राणी है जो हमारे गंगा के रिवर सिस्टम में मिलता है
3: जी,
2: ये और कहीं पर नहीं मिलता है, इसलिए इसको बचाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हेरिटेज एनिमल जैसा है। ये प्रस्ताव आया वैज्ञानिकों की तरफ से कि गंगा के डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित कर दिया जाए, तो इस पर विशेष संरक्षण का प्रभाव रहेगा और लोग इस पर ध्यान देंगे। जब गंगा के डॉल्फिन और समुद्री डॉल्फिन दोनों के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की 2020 में, तब से राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाने लगा है। गंगा के डॉल्फिन को सोंस इसलिए बोलते हैं कि एक मिनट से लेकर के तीन मिनट के बीच में पानी के ऊपर आकर के इनको सांस लेना पड़ता है, तो ये बार बार सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं। और जब सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं, उस समय सूं की आवाज निकलती है, इसीलिए इसका नाम सूसू या सोंस बोलते हैं। गंगा के डॉल्फिन अगर नहीं रहेगी हमारे इकोसिस्टम में, तो पूरी की पूरी जो खाद्य श्रृंखला है, जो फूड चैन है, वो समाप्त हो जाएंगी, वो परेशान हो जाएंगी और वो पूरे रिवर तंत्र को प्रभावित करेगा। गंगा का डॉल्फिन और जो समुद्र का डॉल्फिन है, सभी का फिजियोलॉजी एक ही है। डॉल्फिन रेस्क्यू वैन

0: या गंगा रेस्क्यू वैन के नाम से आप एक एम्बुलेंस चलाइए और एम्बुलेंस बनाइए जिसमें 24 आवर्स ये सारी व्यवस्थाएं रहनी चाहिए जिसमें हम गंगा के डॉल्फिन को एक जगह से दूसरी जगह रेस्क्यू करें। ये बातें प्रधानमंत्री जी तक गया और पर्यावरण मंत्रालय में भी इसकी चर्चा हुई और आज ये कंसेप्ट आया कि हम एक गंगा रिवर डॉल्फिन एम्बुलेंस और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बिहार की नदियों में लगभग 2220 डॉल्फिन हैं, उत्तर प्रदेश में लगभग 2300 के आसपास डॉल्फिन हैं। गंगा के डॉल्फिन का असल गार्जियन मछुआरे ही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा करीब और सबसे ज्यादा समय 24 घंटा में मछुआरे ही उसके साथ देते हैं और रहते हैं। तो अगर घाटों पर आप जाते हैं तो आप प्लास्टिक न ले जाएं, या वैसे वेस्ट, वैसे धातु या वैसे कोई भी प्लास्टिक या कोई भी कपड़ा या कोई भी सामान न ले जाएं जो गंगा में आप सीधे फेंकते हैं। बहुत लोगों की मान्यता ये है कि हम जो भी घर में पूजन सामग्री जब हम को डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं तो शुरू से धारणाएं हैं कि गंगा में ले जाकर इसे प्रवाहित कर दिया जाए, लेकिन प्रवाहित करने से गंगा प्रदूषित होती है, इसलिए आप गंगा के तरफ ले जाएं। गंगा के हरेक घाटों पर एक जगह बनाया गया है, नियत जगह है, उन जगहों पर आप फेंकिए, आपकी आस्था बरकरार रहेगी कि गंगा की डॉल्फिन घड़ियाल और मगर नहीं है, ये बहुत ही ह्यूमन फ्रेंडली है, आपसे गंगा के डॉल्फिन प्यार करती है, गंगा के डॉल्फिन से आपको कोई खतरा नहीं है। गंगा के डॉल्फिन अगर आपको नहाते वक्त मिल जाए तो आप डरे नहीं, आप खूब आराम से स्नान करिए, क्योंकि आपको किसी तरह का कोई हार्म या कोई भी इससे खतरा नहीं पहुंचेगा।
1: और अब बात करेंगे विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े खास दिवसों की, जिन्हें भारत सहित विश्व भर में सितंबर महीने में उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है।
2: 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया। हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, जैव विविधता की सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे मनाया गया। भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक नवाचार और राष्ट्र निर्माण में तकनीकी योगदान के सम्मान में इस दिवस को मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। वर्ष 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में ये दिवस मनाया जाता है। ये पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करने वाली ओजोन परत के संरक्षण का संदेश देता है।
1: 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। तेजी से बढ़ने वाले और पर्यावरण अनुकूल बांस के सतत उपयोग कार्बन अवशोषण और हरित आजीविका को रेखांकित करता है। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। विश्व भर में गैंडों की सभी 5 प्रजातियों, विशेषकर भारत में एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण और अवैध शिकार पर रोक का संकल्प लिया गया।
2: तो ये थी आज की हमारी विशेष प्रस्तुति। अगली बार फिर मिलेंगे नए उत्साह और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: नमस्कार।

वाचन स्वर शिबा राकेश और सुरेंद्र राजेश्वरी के थे। आकाशवाणी दिल्ली और आकाशवाणी पटना के सहयोग से तैयार किए गए इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रवीण कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया। कुछ मुकाबले सिर्फ स्कोर बोर्ड पर दर्ज होते हैं और कुछ मुकाबले किसी खेल की पहचान बन जाते हैं। आईजी नगोया के एशियन गेम्स में आज भारत के लिए ऐसा ही एक दिन रहा। कहीं मैट पर दांव पेस थे, कहीं शूटिंग रेंज पर सांसों को थाम देने वाला सन्नाटा, कहीं दौड़ती हुई सड़क पर एक एथलीट 42 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर रहा था, तो कहीं स्क्वॉश कोर्ट पर हर पॉइंट इतिहास के और करीब ले जा रहा था। और इन तमाम तस्वीरों के बीच भारत ने आज सिर्फ पदक नहीं जीते बल्कि अपनी खेल विरासत की कई कहानियों को एक साथ आगे बढ़ाया। तो आईजी नगोया में आज भारत ने कितने मौके बनाए, कितने मकाम हासिल किए, किसने तिरंगा पोडियम तक पहुंचाया और किन मुकाबलों ने बढ़ाई कल की उम्मीद, इन सब की पूरी तस्वीर अब आपके सामने है। एशियन गेम्स 2026 में आज क्या कुछ हुआ, पूरे रोमांच को समेटे डेली हाइलाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन की हेडलाइंस पर। कबड्डी में भारत का स्वर्णिम डबल धमाका, महिला टीम के बाद पुरुष टीम ने भी ईरान को हराकर जीता गोल्ड मेडल। 42 किलोमीटर की दूरी, 44 साल का इंतजार खत्म। सावन बरवाल ने मैराथन में सिल्वर मेडल जीतकर बनाया नया नेशनल रिकॉर्ड। शूटिंग में आया एक और पदक, आशीष चौकसी, तिलोत्तमा सेन और विदर्शा विनोद ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में जीता सिल्वर मेडल। स्क्वॉश कोर्ट पर कामयाबी भरा दिन, जोशना चिनप्पा और विलावन सेंथिल कुमार ने जीता ब्रॉन्ज, जबकि अनाहत और अभय सिंह ने सिंगल्स फाइनल में जगह बनाकर दो और पदक किए पक्के। शुरुआत करते हैं कबड्डी से। आज मैट पर हर रेड में रोमांच था, हर टैकल में ताकत और अंत में तिरंगा रहा सबसे ऊपर। कबड्डी के डबल गोल्ड की पूरी कहानी बता रही हैं मेघा अपनी रिपोर्ट में।
1: इंडिया कंप्लीटेड अ गोल्डन डबल इन कबड्डी विद बोथ द मेंस एंड वुमेन्स टीम्स ओवरकमिंग ईरान इन देयर रिस्पेक्टिव फाइनल्स। द वुमेन वर फर्स्ट टू स्ट्राइक इन अ टेंस गोल्ड मेडल कॉन्टेस्ट। इंडिया हेल्ड देयर नर्व टू डिफीट ईरान 37-34 एंड सक्सेसफुली डिफेंड द टाइटल दे वन एट हांगझो। इट इज इंडियाज फोर्थ Women's Kabaddi Gold since the event entered the Asian Games program in 2010. A few hours later, the men made it 2 out of 2. India defeated Iran 40-34 to retain their crown and underline their extraordinary dominance of the sport at the Asian Games. Men's Kabaddi has featured at the Asian Games since 1990 and India have now won 9 gold medals in 10 editions.
0: निशाने लगाने के लिए आंखों से ज्यादा जरूरी होता है उस एक पल में खुद को बिल्कुल स्थिर रखना। शूटिंग रेंज में आज भारत ने कैसे साधा पोडियम का सफर, बता रहे हैं दर्पण टिकिया।
2: शनिवार को एक बार फिर शूटिंग रेंज में भारत की चांदी हुई। महिलाओं की 50 मीटर थ्री पोजीशन राइफल टीम स्पर्धा में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशीष चौकसी की तिगड़ी ने रजत पदक हासिल किया। तीनों ने कुल मिलाकर 1763 पॉइंट हासिल किए और दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही 20वें एशियन गेम्स में भारत शूटिंग के खेल से 11 पदक हासिल कर चुका है। 2023 में बनाए अपने खुद के एशियन गेम्स रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए चाइनीज तिगड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। इन परिणामों के आधार पर विदर्शा और तिलोत्तमा को इंडिविजुअल प्रतियोगिता के फाइनल में भी जगह मिली। हालांकि स्टैंडिंग पोजीशन में कुछ खराब शॉट्स के बाद पिछली बार इसी प्रतिस्पर्धा में एशियन गेम्स का ब्रॉन्ज मेडल लेने वाली आशीष चौकसी क्वालिफाइंग राउंड से ही बाहर हो गई। फाइनल में जहां चीन की जियाउ हान ने एक नया एशियन रिकॉर्ड स्थापित किया, तो भारत की तिलोत्तमा चौथे और विदर्शा विनोद पांचवें स्थान पर रही और दोनों ही एकल वर्ग में पदक से चूक गई।
0: ट्रैक पर रफ्तार, फील्ड में फासले और भारतीय खिलाड़ियों के नाम होते गए पदक। एथलेटिक्स में भारत के शानदार दिन का पूरा हाल बता रही हैं मेघा।
1: इट वॉज अ 3-medal day फॉर इंडिया इन एथलेटिक्स विद 2 silvers एंड अ ब्रॉन्ज एंड लीडिंग द चार्ज वॉज सावन बरवाल हु प्रोड्यूस्ड अ सुपर्ब रन इन द मेंस मैराथन क्लॉकिंग 2 hours 11 minutes and 37 seconds। बरवाल वन सिल्वर एंड बेटर्ड हिज ओन नेशनल रिकॉर्ड बाय 21 seconds। लेटर इन द डे तेजिंदर पाल सिंह तूर एडेड अनदर एशियन गेम medal to his collection. The two-time defending champion registered a best throw of 20.64 meters to take silver in the men's shot put. There was a bronze on the track as well. Prachi Chaudhary finished third in the women's 400 meters, clocking 53.21 seconds, while Kiran Pehel missed out on the podium. National record holder Vishal TK finished fifth in the men's 400 meters final. Vishal had impressed in qualification, clocking 45.27 seconds to win his heat, the fastest time

0: disciplines take place on Sunday.
1: बॉक्सिंग रिंग में हर राउंड के साथ रणनीति बदलती रहती है, लेकिन लक्ष्य वही रहता है, यानी अगले दौर में जगह। भारतीय मुक्केबाजों के लिए कैसा रहा आज का दिन, सुनते हैं शाहिद आजमी की ये रिपोर्ट।
2: एशियन गेम्स में बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए दोहरी खुशी की खबर है। प्रिया घंघास और कपिल पोखरियार शानदार जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला 60 किलोग्राम वर्ग में प्रिया घंघास का सामना दक्षिण कोरिया की ओह योन जी से हुआ था। प्रिया ने यह मुकाबला 5-0 से जीतकर अंतिम 8 में जगह पक्की कर ली है। वहीं पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पोखरिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। राउंड ऑफ 16 में कपिल के सामने ईरान के सैम एस्टाकी थे। कपिल ने पूरे मुकाबले में बेहतरीन नियंत्रण दिखाया और जजों ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से उन्हें विजेता घोषित किया। इस जीत के साथ कपिल ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। हालांकि 55 किलोग्राम वर्ग में जादू मनीष सिंह को निराशा हाथ लगी। राउंड ऑफ 16 में उनका मुकाबला फिलीपींस के कार्लो पालम से हुआ। कड़े मुकाबले में जादू मनी को 0-3 से हार का सामना करना पड़ा और उनका एशियन गेम्स में अभियान समाप्त हो गया।
1: पुरुष हॉकी में भारत ने जापान को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारत की ओर से अभिषेक ने 15वें मिनट में फील्ड गोल किया, जबकि कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 40वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया। ये पूल ए में भारत की लगातार चौथी जीत थी और टीम ने 12 अंक के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। एक तीर एक निशाना और पदक की ओर बढ़ता भारत। दर्पण टिकिया की रिपोर्ट में जानते हैं कि आर्चरी रेंज में आज कैसा रहा भारतीय तीरंदाजों का दिन।
3: शनिवार को एशियन गेम्स 2026 में तीरंदाजी का भी आगाज हुआ। पुरुषों की रिकर्व प्रतिस्पर्धा के क्वालिफाइंग राउंड में ही उन्होंने कुल संभव 720 में से 698 अंक हासिल करते हुए एक नया गेम्स रिकॉर्ड सेट किया। रैंकिंग राउंड में धीरज पहले पायदान तो उनके साथ ही नीरज चौहान 20वें और यश भोगे 25वें पायदान पर रहे। बतौर टीम भारत दूसरे स्थान पर रहा। महिलाओं की प्रतिस्पर्धा में भारत की टीम रैंकिंग छठी रही, तो वहीं बतौर इंडिविजुअल्स कुमकुम मोहद को 10वां, कीर्ति को 20वां तो अंकिता भकट को 26वां स्थान प्राप्त हुआ। महिलाओं की टीम प्रतिस्पर्धा में पहले स्थान के लिए भारत और चीन में टाई रहा, हालांकि टाई ब्रेकर में चीन ने बाजी मारी। इंडिविजुअल स्टैंडिंग्स में चिकिता तानीपारथी पहले, पिछली बार की स्वर्ण पदक विजेता ज्योति वेनम 13वें और प्रतिका प्रदीप 20वें स्थान पर रही। तो वहीं मेंस टीम तीसरे और इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा में साहिल जाधव 5वें, मणिरत्नम गणेश 14वें और कुशाल दलाल 16वें स्थान पर रहे। आपको याद दिला दें कि क्वालिफिकेशन या रैंकिंग राउंड से केवल ड्रॉ का फैसला होता है और असली प्रतियोगिता का अभी शुरू होना बाकी है। इसके साथ ही रिकर्व मिक्स टीम प्रतियोगिता में धीरज और कुमकुम, तो वहीं कंपाउंड मिक्स टीम प्रतिस्पर्धा में साहिल और चिकिता भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
1: एशियन गेम्स में भारतीय घुड़सवारों की आज की चुनौती पर शाहिद आजमी की रिपोर्ट।
2: घुड़सवारी से भारत के लिए अच्छी खबर है। एशियन गेम्स के पदक विजेता हृदय छेदा और जय सूद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए व्यक्तिगत रेसेस के फाइनल में जगह बना ली है। दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने 2 क्वालिफाइंग राउंड के बाद टॉप 15 में स्थान हासिल कर लिया है। हृदय छेदा 135.059 अंकों के साथ 11वें स्थान पर है, जबकि जय सूद ने 133.559 अंक हासिल कर 13वां स्थान हासिल किया। वहीं श्रुति बोरा 129.941 अंकों के साथ 24वें स्थान पर रही। व्यक्तिगत रेसेस का फाइनल कल खेला जाएगा, जहां हृदय और जय की नजर पदक पर होगी।
1: रुख करते हैं अब बैडमिंटन कोर्ट का। आज बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों के लिए मिला जुला दिन रहा। मेघा बता रही हैं अपनी रिपोर्ट में कि कौन बढ़ा आगे और किसका सफर हुआ समाप्त।
0: A day of contrasting fortunes for India in the individual badminton competition at the Asian Games. Lakshya Sen's singles campaign came to an early end against former world champion Lokheen Yu. The Indian fought back after losing the opening game, but the Singaporean prevailed 21-12, 15-21, 21-14 in a contest that lasted over an hour. It meant an individual Asian Games medal continues to elude Lakshya, although he has already won a bronze from the men's team event at these games. Ayush Shetty began with a commanding 21-7 victory over Kazakhstan Maksud before being stretched by the experienced Chao Tien Chen. Ayush pushed the third seed to 3 games but went down 16-21, 21-19, 17-21 in the pre-quarterfinals. The standout performance though came from 19-year-old Unnati Huda. After surviving a 3-game battle against Malaysia's Wong Ling Ching, Unnati stunned world number 6 Putri Kusuma Vardhani 21-19, 21-13 to book her place in the quarterfinals, where she faces Japan's Akane Yamaguchi. PV Sindhu also

0: Began her individual campaign with a straight games win over Chinese Taipei's Chiu Pin Qian before overcoming Japan's Tomoka Miyazaki 21-9, 21-13 in the round of 16 to book her place in the women's singles quarterfinals.
1: कैनो में भारत की चुनौती का क्या रहा नतीजा, दर्पण टिकिया की ये रिपोर्ट।
2: शनिवार को भारत के लिए कनू स्प्रिंट की अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में हर्षवर्धन सिंह शेखावत, पार्वती गीता और प्रसन्ना कुमार सत्यप्रकाश की जोड़ी, तो वहीं राजू रावत और नेहा देवी लिचुनबाम की जोड़ी शिरकत कर रही थी। इनमें से कोई भी भारत के लिए पदक नहीं दिला सका।
1: स्क्वॉश में आज भारत के लिए कहानी सिर्फ एक पदक की नहीं रही। एक तरफ अनुभव ने पोडियम छुआ तो दूसरी तरफ नई पीढ़ी ने फाइनल में जगह बनाकर इतिहास के दरवाजे पर दस्तक दी। स्क्वॉश कोर्ट का पूरा रोमांच मेघा के साथ।
0: इंडियन स्क्वॉश एंजॉयड वन ऑफ इट्स बिगेस्ट डेज एट दीज एशियन गेम्स विद टू सिंगल्स फाइनलिस्ट एंड अ मिक्स्ड डबल्स ब्रॉन्ज। द परफॉर्मेंस ऑफ द डे केम फ्रॉम 18 ईयर ओल्ड अनाहत सिंह अप अगेंस्ट होम फेवरेट एंड वर्ल्ड नंबर 6 सतोमी वतानबे। अनाहत फाउंड हरसेल्फ टू गेम्स डाउन एंड देन टू मैच points down in the third, but the Indian produced a remarkable turnaround, saving both match points and winning 4 consecutive points to take the third game. From there, the momentum completely shifted. Anahat registered a stunning comeback, winning 9-11, 11-13, 12-10, 11-6, 11-3 to reach the women's singles final. It was also the biggest win of a young career by ranking. Abhay Singh then ensured India would have representation in both singles finals. He beat Pakistan's Mohammad Irfan in straight games 11-3, 12-10, 11-6 to move within one victory of gold. Earlier, Joshna Chinnappa and B. Senthil Kumar had claimed bronze in the mixed doubles after an agonizing semi-final defeat to Hong Kong. The Indians had match points in the deciding game but eventually went down 10-11, 11-2, 10-11. For the veteran Joshna, it is a 6th Asian Games medal. And there is history on offer on Sunday. India has never won an Asian Games singles gold in squash. Both Anahat and Abhay now have the opportunity to change that with Olympic qualification also at stake.
1: टेबल टेनिस में आज भारतीय खिलाड़ियों को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पॉइंट दर पॉइंट चली इस जंग में भारत का सफर कहां तक पहुंचा, बता रहे हैं शाहिद आजमी।
3: एशियन गेम्स में आज खेले गए महिला और पुरुष एकल मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों को हार का सामना करना पड़ा। महिला एकल के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में भारत की यशस्विनी घोरपड़े का सामना जापान की मीवा हरिमोटो से हुआ। यशस्विनी ने मुकाबले में अच्छा संघर्ष किया लेकिन जापानी खिलाड़ी ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय खिलाड़ी को 4-1 से शिकस्त दे दी। इस हार के साथ यशस्विनी घोरपड़े का महिला एकल में अभियान समाप्त हो गया है। मीवा हरिमोटो ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष एकल के राउंड ऑफ 32 में भारत के शाह के सामने चीन के लिन शिनडोंग की चुनौती थी। लिन शिनडोंग ने शुरुआत से ही मुकाबले पर पकड़ बनाए रखी और मानुष शाह को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बना ली। इस हार के साथ मानुष शाह भी पुरुष एकल स्पर्धा से बाहर हो गए। इस तरह आज खेले गए टेबल टेनिस के दोनों मुकाबलों में भारत को निराशा हाथ लगी। हालांकि टेबल टेनिस में भारत के लिए इस एशियन गेम्स में पदक का खाता खुल चुका है। कल मिश्रित युगल में दिया चितले और मानुष शाह की भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक जीतकर भारत को टेबल टेनिस में इस बार का पहला और एकमात्र पदक दिलाया था।
1: फेंसिंग में मुकाबले पलक झपकते बदलते हैं, एक टच जीत और हार का फैसला कर सकता है। भारतीय फेंसर्स ने आज किस तरह पेश की अपनी चुनौती, मेघा बता रही हैं एरिना का हाल।
0: India's campaign in the team fencing events came to an end at the quarterfinal stage. The men's saber team of Karan Singh, Gisho Nidhi, Lakshya Batser and Vishal Thapar began strongly, beating Philippines 45-27 in the round of 16. That set up a much tougher quarterfinal against Asian powerhouse South Korea. India could not repeat their opening round performance and went down 25-45, ending their medal challenge. There was a similar story in the women's foil. Joyce Ashishtha, Stalin Raj, Sonia Devi Vaikom, Kanu Priya Chawla and Meena Devi Narim registered a convincing 45-24 victory over Indonesia to reach the last eight, but host Japan proved too strong in the quarterfinal, bringing India's campaign to an end.
1: एशियन गेम्स के सातवें दिन यानी आज 22 गोल्ड मेडल दांव पर थे। आइए मेघा से जानते हैं मेडल टैली का लेटेस्ट अपडेट।
0: With two gold medals in Kabaddi, India have moved up to the 10th in the medals tally, ending the day with 30 medals, 4 gold, 12 silver and 14 bronze. China continue to lead the standings, followed by host Japan in 2nd and South Korea in 3rd.
1: कल का दिन आईची नागोया में भारत के लिए सिर्फ एक और दिन नहीं होगा।

क्योंकि सुबह की पहली लहर से लेकर शाम के आखिरी ट्रैक तक भारत की उम्मीदें एक के बाद एक कई मैदानों पर उतरेंगी। सुबह करीब 4 बजे समंदर की लहरों के बीच कमाली मूर्ति और उसके कुछ देर बाद शुगर शांति बनार से सर्फिंग के विमेंस शॉर्टबोर्ड में अपनी चुनौती पेश करेंगी। यानी भारत का दिन मैदान से नहीं लहरों से शुरू होगा। इसके साथ ही एथलेटिक्स में प्रियंका गोस्वामी और मंजू रानी महिला मैराथन रेस वॉक के फाइनल में उतरेंगी। तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और तनी पर्थी चिकिता की कंपाउंड टीम मंगोलिया के खिलाफ उतरेगी, जबकि पुरुष टीम का सामना UAE से होगा। और अगर ये टीमें आगे बढ़ती हैं, तो कुछ ही देर के बाद क्वार्टर फाइनल का रास्ता भी खुल सकता है। बैडमिंटन कोर्ट पर त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की महिला डबल्स जोड़ी क्वार्टर फाइनल में मलेशियाई जोड़ी का, जबकि मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा कास्त्रो की जोड़ी चीन की चुनौती का सामना करेगी। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में उन्नति हुडा के सामने जापान की अकाने यामागुची होंगी। शूटिंग रेंज में मनु भाकर, ईशा सिंह और राही सरनोबत 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पदक पर निशाना साधने उतरेंगी। वहीं ट्रैप में कायनन चनाई, अहवर रिजवी और शपथ भारद्वाज पुरुष वर्ग में, जबकि नीरू, मनीषा कीर और आशिमा अहलावत महिला वर्ग में निशाना लगाएंगी। दोपहर तक एथलेटिक्स ट्रैक भी पूरी तरह भारतीय रंग में नजर आएगा। डिकैथलन में तेजस्विन शंकर और तौफीक नौशाद एक्शन में होंगे। 400 मीटर हर्डल्स में संतोष कुमार, तमिला रासन, यहास पलाक्षा, विद्या रामराज और अनु राघवन चुनौती पेश करेंगे। लॉन्ग जंप में नजरें रहेंगे मुरली श्रीशंकर और डेविड सोलोमोन पट्टूराज पर। और फिर आएगा दिन का एक बड़ा पदक सत्र। वेटलिफ्टिंग में हरजिंदर कौर महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में उतरेंगी। कुराश में संगीता भारती, यश कुमार चौहान और विशाल पदक की दौड़ में होंगे। दोपहर बाद स्क्वॉश कोर्ट पर निगाहें टिकेंगी। महिला सिंगल्स में अनाहत सिंह और पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अभय सिंह शानदार प्रदर्शन कर इतिहास बनाने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। बॉक्सिंग रिंग में भी एक्शन होने वाला है। अंकुश 80 किलोग्राम, प्रवीण 65 किलोग्राम, सचिन 60 किलोग्राम और नरेंद्र 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल में विनिंग पंच जड़ने की कोशिश करेंगे। और फिर शाम ढलते ढलते नागोया का एथलेटिक्स स्टेडियम एक बार फिर भारतीय उम्मीदों का केंद्र होगा। एनसी सोजन और शैली सिंह लॉन्ग जंप के फाइनल में उतरेंगी। सर्वेश कुशारे और आदर्श राम हाई जंप के फाइनल में होंगे। नंदनी कोंगान 100 मीटर हर्डल्स के फाइनल में होंगी। अनिमेश कुजूर 200 मीटर में पदक जीतने का जोर लगाएंगे और 3000 मीटर स्टीपल चेज में पारुल चौधरी और अंकिता पदक के लिए दौड़ेंगी। और इसी बीच हॉकी के मैदान पर भारतीय महिला टीम के सामने होगी सिंगापुर की चुनौती। वॉलीबॉल में पुरुष टीम वियतनाम से भिड़ेगी। फेंसिंग में भवानी देवी और भारतीय महिला सेबर टीम की चुनौती जारी रहेगी। और दिन का अंत होगा एथलेटिक्स में महिला 4x100 मीटर रिले के साथ। एक दिन, इतने सारे मैदान और ढेर सारी उम्मीदें। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इस कार्यक्रम के एडिटर थे विशाल कुमार और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शाहनवाज खान। आईची नागोया से भारत की उम्मीदों और उपलब्धियों का ये सफर यहीं जारी रहेगा। कल फिर मिलेंगे खेल के नए रोमांच और तिरंगे की नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आनंद श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार। एशियन गेम्स 2026 आईची नागोया।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स, आकाशवाणी अमृतसर ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। लो सुनो शास्त्रीय संगीत दा प्रोग्राम सुर साधना। अज दे इस प्रोग्राम च तुसी संतूर वादन सुनोगे, कलाकार होंगे पंडित शिव कुमार शर्मा।

विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित कर रहे हैं। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं उनके घरों पर

0: बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। बीएलओ बाद में इन दस्तावेजों को ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर एसआईआर के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सारणी में निर्वाचन आयोग ने संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब महाराष्ट्र की संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 16 नवंबर को किया जाएगा। पहले अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होनी थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मॉर्ट पहल सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: गृहमंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृतानंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद की जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. The Election Commission has reiterated that the decision of the Special Intensive Revision SIR of electoral rolls issued for all the states and UTs was taken unanimously. Addressing a press conference in New Delhi, Director General Media Ashish Goyal said that a meeting of the Commission was held today where Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi were present. He said the order for the SIR issued on the 24th of June last year for all the states and UTs, starting with Bihar, was issued with the unanimous approval of the Commission.

0: चलो शुक्रिया शुक्रिया। आज मैं यही पूछ रहा हूँ कि खास सौगात लेके आए हो साढ़े लिए। ठीक है जी, थोड़ी पसंद तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं फोन करने लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया वीर जी, तुहाडा भी शुक्रिया,
0: धन्यवाद। थैंक यू। बिल्कुल दोस्तों, तुसी भी नंबर मिला के अपने दोस्त पारस तक पहुंच सकते हो। नंबर तुहाडे दिलां च फसदा है, बस जल्दी जल्दी नंबर डायल करो, अपने दोस्त पारस तक पहुंचो। इंतजार तुहाडियां कॉल्स का है।

0: लो जी अगले दोस्त भी नंबर मिला के साढ़े को पहुंच गए ने। प्रोग्राम चल रहा है सौगात 0181-23-4471 नंबर मिला के तुसी अपने दोस्त पारस तक पहुंच सकते हो। प्रोग्राम सौगात है, सौगात चिट्ठियां दी, सौगात थोड़े मैसेज दी, सौगात थोड़ियां कॉल्स दी। सो नंबर मिला के दोस्त साढ़े को पहुंचे ने, आओ गलबात करते हैं। हैलो
1: हैलो सर जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहा है? गुरदासपुर वाले में बहुत बहुत स्वागत है थोड़े अपने प्रोग्राम सौगात आकाशवाणी जलंधर दे वेड़े च।
1: जी
0: देखो जी, असी तो बैठे ही थोड़े करके हैं, थोड़े करके प्रोग्राम सजदा है और थोड़े अर्गे जिहड़े दोस्त प्रोग्राम च कॉल करदे ने आकाशवाणी जलंधर दे वेड़े च तुहाडा निघा स्वागत है। जी साढ़े वालों भी सुनने वाले सारे श्रोतियां नूं बाबा सोडल जी दे इस समागम दी, इस प्रोग्राम दी सारियां नूं बहुत बहुत मुबारकां। मेले दे इस त्यौहार च साढ़े पूरे पंजाब च कहिंदे ने मेले लगदे रहन, उन्हां दा आशीर्वाद जिहड़ा है साढ़े सारियां नूं मिलदा रहे और इदां ही असीं हर एक त्यौहार जिहड़े आने वाले समें दे विच सारे जणे मिल के इदां मनाउंदे रहिए। ते अज गीत किहड़ा सुणना है? ठीक है जी, पसंद तक पहुंच रही है, फोन करने बहुत बहुत शुक्रिया।

0: लो जी, नंबर मिला के दोस्त पहुंच के नहीं, और कल बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन बोल रहे ने?
1: फिरोजपुर। हाँ
0: क्या बात है, फिरोजपुर वाले में बहुत बहुत स्वागत है थोड़े अपने प्रोग्राम।
1: बहुत
0: होर सुनाओ, फिरोजपुर का की हाल है?
1: ठीक है जी, मौसम
0: चलो मौसम मतलब सारे पास्यों जड़ी सानू ये जड़ी न्यूज़ मिल रही है भी, दिल्ली भी ठंडा है, चंडीगढ़ भी ठंडा है, इस वेले फिरोजपुर भी ठंडा है। मतलब
1: पूरा शिमला बनाया है।
0: क्या बात है। अच्छा जी, चलो असी दुआ करते हैं थोड़ा जहा शिमला जलंधर वाल भी आ जाए।
1: अच्छा
0: तो अज कि गीत सुनना है? ठीक है जी, थोड़ी पसंद तक पहुंच रही है, फोन करने बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।

0: आज हर जगह से हमें बारिश और ठंडे मौसम की खुशबू पहुंची है। दिल्ली से कॉल आया है, फिरोजपुर से कॉल आया है, गुरदासपुर से आया है। सबने बोल दिया है कि आज हमारे यहाँ बारिश हो रही है और मौसम जो है बहुत अच्छा हो गया है।
1: हाँ जी, सुबह शाम की ठंड लग गई जी होने ना
0: जी। थोड़ा सा जलंधर में भी भेज दीजिए ताकि मौसम जो है करवट ले। दोपहर को बहुत गर्मी होती है तो यहाँ भी ठंडा मौसम हो जाए।
1: जी एक लाइन बोल दो कुछ
0: जी।
1: द्वारे शिव जी ये नाद बजाया, गिरि पर्वत से निकल सदा शिव बिच मथुरा दे आए, नंदी पहलू थी चर के सवारी घर घर अलोक जगाए, शिव जी ये नाद बजाया द्वारे नंद रे जी।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऐसे ही कॉल करते रहें, बहुत अच्छा लगता है। हर बार आप कुछ अंदाज लेके आते हैं फोन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज कौन सा गीत सुनेंगे?
1: सर जी आप सुना दो, मिस पूजा की आवाज में सुना दो, नचदी दे प्यारे थे मेरे पै गया कहंदे गल ना बनना।
0: ठीक है जी, आपकी पसंद है, आप तक पहुंचा रहे हैं फोन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ठीक है सर जी, आपने कॉल उठाई इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: शुक्रिया।
1: और जितने भी हमारे इस टाइम सुन रहे और आप जो होशी थे सबको डेडिकेट है जी गाना।
0: चलिए शुक्रिया।

लो जी, इस प्रोग्राम में इतनी खत्म करने दो इजाजत। अगले शनिवार ठीक 11:10 में लैके हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम सौगात। सौगात प्रोग्राम में आकाशवाणी जलंधर में अपने दोस्त पारस चढ़ा ऐदा ही प्यार देंदे रहो, याद करते रहो, तुहाडे सदका ही असी प्रोग्राम च कोशिश करते हैं हर बार कुछ ना कुछ नवे गीत तुहाडे तक पहुंचाए जाए। तुहाडा प्रोग्राम है, तुहाडे करके ही सजदा है। सो जिन्हां दोस्तों के नंबर इस वक्त नहीं मिल पाए, मैं उम्मीद करता हूँ अगली बार बिल्कुल नंबर मिला के अपने दोस्त पारस तक पहुंचणगे। इस साथ ही प्यार विश्वास इदा ही आकाशवाणी जलंधर के नाल बने रहना। तुसीं जाणा कितें नहीं कि साथ जिहड़ा है सफर है ये ठीक सवेर तक साढ़े नाल चढ़ना है तुहाड़े लिए पंजाबी नाटक, क्योंकि अज की इस कड़ी में सब तुहाड़ी गल है तुहाड़े लिए पूरे 1 आवर का 1 घंटे का जिहड़ा पंजाबी नाटक है असीं ठीक 1 बजे लैके हाजिर।

0: एट प्रेजेंट बंगाल जैसे बड़े बड़े साम्राज्य हमारे सामने घुटने टेकने लगे हैं। फिर अमित्रे तो बहुत छोटा राजा है, बट ब्रिटिश सरकार के लिए वो एक चैलेंज बन गया है। नाउ उसकी प्रेज करने का मतलब है टू डिसरिस्पेक्ट आवर एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स।
1: सॉरी डियर, मैं तो भूल गई थी कि आप कंपनी सरकार के बड़े अफसर हैं। No. मेरी बात आपको बुरी लगी होगी। प्लीज फॉरगिव मी।
0: इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट।
2: जय जय सिकंदे,
3: जय जय त्रिशूल,
2: जय जय सिकंदे,
3: जय जय त्रिशूल।
2: दोस्तों, आप पातूत कुटी पहुंच गए हैं। ये है किला, ब्रिटिश फौज इतने ही है। किले लू चुपेरियों के राह पालो, हल्ला बोलो, हल्ला बोलो। जय जय सिकंदे,
3: जय जय
2: सिकंदे,
3: जय जय
2: किले उते टूट पाओ, हल्ला बोलो। सेनापति जी, असी जीत गए, असी जीत गए सेनापति जी।
4: वधाइयां आदि राम, दुश्मनों विच चुप छा गई। उन्होंने हथियारों उत्ते साड़ी फौज ने कब्जा कर लिया। फौजियों मेरे वालों बधाइया दो।
2: एक अंग्रेज साड़ी फौज की पकड़ में आ गया है सेनापति जी,
4: उसनु पेश किया जाए।
2: सेनापति के सामने खड़ा हो जाए।
4: आदि राम, ये तो भोला भाला मासूम गभरू लगता है। मैं जानता कि जंग विच इन्हां गल्लां दी कोई थां नहीं, पर इसनु देखते ही मन विच तरस की भावना आ रही है।
2: ये साड़ी बोली नहीं जानता जनाब, ते असी इसकी बोली नहीं जानते, फिर इसनु केड़ी सजा देंगे?
4: वो इसकी हाले उम्र ही की है, इसलिए मेरा मन इसनु सजा देने लिए नहीं मनता। उदा भी इसनु सजा दे के सानू की मिलना आदि राम?
2: तो इसनु रिहा कर दईए।
4: ये तो सोचने वाली गल है। इदा करते हैं, इसनु छोटी जी बेड़ी विच बिठा के समुद्र विच ठेल देंगे। जे इसके भागी बचना लिखा होया तो बच के अपने मुल्क चलिया जाएगा।
2: सच्ची साढ़े सेनापति जी पत्थर दिल नहीं?
4: ध्यान नाल सुन वही मुड़िया, साढ़े कुलदेव सिकंदेव जी की कृपा नाल असी तेरे उत्ते तरस खाने। तू बेड़ी विच सवार होके अपनी मातभूमि वल रवाना हो जा। देखी पुल के भी साड़ी जन्मभूमि हड़पन की इच्छा नाल इधर पैर पाउन दा जेरा ना करी।
2: सेनापति जी, तुहाडी गल समझ गया लगता है, ताही तां चुक चुक के शुकराने करता है।
4: चंगा भई जवाना,
2: कोई होर सलाह मशवरा सेनापति जी?
4: हुण तुतकुट्टी दे मुख अधिकारी बकट दुरेई नूं गिरफ्तार करना है।
2: जिद्दां तुहाडा हुक्म सेनापति जी, मैं फौजियां नूं तैयार करदा।
4: जल्दी
1: सर,
0: क्या हुआ वरी? तुम इतनी तेजी से भागती क्यों आ रही हो?
1: सर, पंचाल कुरीची दे लोग सेना नाल आ गए ने, पूरे शहर च हंगामा मच गया है।
0: हमें तो रह की सेना तो नहीं आ गई? अभी जाता हूँ उधर, अभी जाता हूँ।
1: सर नहीं, हुन तो अड़े जान नाल उत्थे कोई फायदा नहीं होना। उन्होंने किले दे उपर अपना झंडा ला लिया, यानी किले दे उपर अमेतुरे दी सेना दा कब्जा हो गया।
0: पर वरी, विनोला मर गई हुई है, उसको कोई मुश्किल हो गई तो?
1: तुसी चिंता ना करो सर, मैं मैडम नो अपनी सहेली दे कर लुको के आई हां। तुसी सब तो पहले तो बच निकलने की कोशिश करो।
0: कैसे बच पाऊंगा, कुछ समझ नहीं आता।
1: सर, सेना इत्थे पहुंच चुकी है, तुसी दौड़ जाओ सर।
5: ओ देखो, बकट रही दौड़ रहे है, फड़ो उनु, किले पदिया जावे, फड़ो।
0: मेरे पास आना, गोली चला लूंगा, खबरदार।
5: ओए, ता पिस्तौल दे डरावे दिंदे है। 870 फौजी जवान ने, और किन्नियां गोलियां है तुहाडे कोल? भला इसे विच ही है, अपने आप नूं साडे हवाले कर दियो। लिया पिस्तौल फड़ा। ओ तुसी तड़फदे क्यों हो जनाब? साडे फौजियां ने तुहानूं कहा तां कुछ नहीं, एक थप्पड़ मार के जनाब तो पिस्तौल ही खोया ना।
0: पिस्तौल इसने साडे जवानां वल गोली चलाउण दी जरूरत कीती है, इसलिए इसका सिर वढ़ दिता जावे।
5: नहीं नहीं आदि राम, जेरा करो, इकल्ले आदमी नूं मारना बहादुरी नहीं है। इसनु कैद करके महाराज दे सामने पेश करांगे, फिर वो जो मर्जी सजा देन।

0: मिट्टी के स्फोट को तोड़ने के लिए मुझे और बड़ी सेना कॉल करने की क्या जरूरत था?
1: कर्नल, आई नो आपने बड़े बड़े फोर्स जीते हैं, बट दिस स्मॉल फोर्ट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आवर एनमी इज मोर स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव आल्सो। हमारे प्रीवियस कमांडर जिबलॉल्डर इस फोर्ट में एंटर ही नहीं हो पाए थे।
0: I know, 53 days तक फाइट हुआ, but फोर्ट के बाहर से ही लौटना पड़ा। It is very shameful to us, very shameful।
1: मेरा भी यही कहना है कर्नल, हमारा एनमी बहुत पावरफुल है।
0: ऐसी बात है। उन लोगों के पास तोपे वगैरह जैसे मॉडर्न हथियार भी हैं क्या?
1: नो, उनके पास त्रिशूलों, भालों और तलवारों के सिवा और कुछ नहीं है, बट वो लोग ग्रुप बनाकर अटैक कर सकते हैं। इसी में हमारी सेना बहुत परेशान है।
0: ओके मिस्टर मैकाले, आई सी। सोल्जर्स आगे बढ़िए, फायर!
1: काउंटर अटैक भी सीरियस है, मुझे लगता है हम फोर्ट तक नहीं पहुंच सकते कर्नल।
0: हमारे पास पावरफुल गन्स और हथियार हैं, ब्रेव सोल्जर्स हैं, हम फोर्ट पर कब्जा लाजमी करेंगे। Have faith in me, Mr. McCauley. Have faith.
1: हमारा एनिमी बैटलफील्ड की सारी टेक्निक्स जानता है। I think he's battle expert. वैसे भी फोर्ट की सराउंडिंग्स पर बारी कांटों और तारों का जाल बिछा हुआ है।
0: It means this small fort is challenging me and my command. Just wait a minute, Mr. McCauley. Soldiers, attention! Attack and fire!
1: वाह, ओह कर्नल, फोर्ट का वेस्टर्न गेट टूट गया, हमारी सेना अंदर जा रही है।
0: गुड न्यूज़। नाउ हमारे सैनिक फोर्ट के अंदर जाकर अटैक करेंगे।
2: फौजियों, वड्डियां तोपां दी मार नाल साडा किला तां टुट।

0: गया, पर साडे हिम्मती योद्धे तां एथे मुकाया नहीं मुकणे। इन्हां योद्धियां ने दुश्मन नूं अंदर नहीं आउण दित्ता। साडे बहादुरां ने दुश्मन दा लक भी तोड़ सुटिया है।
1: किले दी मुरम्मत तां रातों रात कर लवांगे महाराज।
0: मुरम्मत तां हो जाएगी, दुश्मन ने पहला भी तां कई वार किले नूं नुकसान पहुँचाया, हर वार आपां मुरम्मत करदे रहे हां। इसका कोई पक्का प्रबंध लाजमी होना चाहिए। आदिराम
2: जी महाराज,
0: औरतों किले चो कढ़ के किसी सुरक्षित टिकाने पहुँचा दिता जाए।
2: महाराज कोई भी औरत किले अंदरों नहीं जाना चाहती, वो साढ़े बहादुर की कामयाबी लिए अरदासा कर रही ने। उन्हों का कहना है कि वक्त पैन से वह अपन जाना वारन तो भी गुरेज नहीं कर। दृढ़ संकल्प है महाराज।
0: असी जानते हैं मेरी प्रजा दे लूं लूं विच बहादरी कुट कुट के भरी हुई है।
1: महाराज सानू अगला काम करन दा हुक्म दिओ।
0: अजे मैं अज दी लड़ाई विच जित हार संबंधी फैसला नहीं लै सकदा।
3: पाणिया मैनू एक हादसा है।
0: बोलो मामा जी बोलो।
3: साडी फौज कट गई है ते किले दे चारे पासे दुश्मन ने अपनी फौज तैनात कर दित्ती है। इना हालात विच कामयाबी किवें मिलूं?
0: लगदा तुहानू साडी फौज ते भरोसा नहीं रहा मामा जी।
3: भरोसा तो है, पर जेड़े कर्नल अग्नेवू दी अगवाई विच फिरंगियां दी फौज अगे वध रही है, ओ जंगी चालां विच बड़ा माहर है। उसनू कंपनी सरकार ने खास तौर ते सद्या है।
0: ए सारे जानते ने कि उसने बड़े बड़े साम्राज्यां दियां नीहां हिलाईयां होईयां ने।
3: फिर साडी मुट्ठी पर फौज दा मत्था पहाड़ नाल लाके की हासिल होएगा?
0: फिर तुसी दसो मामा जी के लड़न तो इलावा होर की चारा है?
3: अमन दी पेशकश।
0: अमन दी पेशकश, पर किद्दां?
3: ओ कुछ असूल बनाउंगे ते असी उना मुताबिक चलन दा इकरार करांगे। सब कुछ ठीक होया तो समझौता कर लांगे।
0: तो सानू वादा करना पड़ेगा कि असी उना दे कहन मुताबिक राज करांगे, फिर अपना सब कुछ उना दे चरना उत्तों वार देंगे। एहो ना?
3: इस तो बिना होर कोई चारा भी नहीं है ना।
0: उमर पोगन नाल तुहाडी अकल भी जवाब दे गई है मामा जी।
3: मैं लड़ाई तो डर के सुझा नहीं दिता पाणजिया, अपने वंश दे वाधे लई इदा क्या। तेनू कि ना पता नहीं कि लड़ाई विच हजारा योधे अपनी जान गुआ बैणगे।
0: मामा जी अपनी मात भूमि का माण वधाउण लई अपनी जान वारना एक माण वाली गल है। साड़ी मौत तो अटल है, किसी ना किसी दिन तो होनी है। जब तक दुनिया रहेगी साडा जस गाया जाता रहेगा, भला ये कोई छोटी जही गल है?
3: भैन जी हाँ मैं टंबर दे मोह बस मन दुखी हो गया सी। मैं जो कहा उस माफ कर दी पुत्रा मैनू।
1: महाराज टिकी राते तोपां दी आवाज़ां?
0: दुश्मन नेरे च रण भेरी वजा रहा है, शायद सोचता होए कि पांचाल कुरीची दी फौज सुत्ती पई है।
1: असी छड़ांगे नहीं, दुश्मन नूं नेस्तो नबूद कर देंगे। बहादुर फौजियो, दुश्मन गलत समय सानू लड़ाई लई ललकार रहा है, हल्ला बोलने लई तैयार हो जाओ।
4: सेनापति जी कोई चीज किले विच डिग रही है पर पता नहीं लग रहा है की है।
0: सिरतैया
1: जी महाराज,
0: जाके पता करो।
1: महाराज दुश्मन ने कौड़े धुए वाली खूपियां दाग दाग के ढेर ला दिता है। महाराज किले अंदर धुआं ही धुआं हो गया है, कौड़े धुएं की गंध हुद्दू जेड़ दी है। महाराज
0: सिद्धे होके मथे लगन की हिम्मत नहीं तो लै आए मिर्चा दे धुएं वालियां लौकी कुप्पियां। बल्ले ओए ड्राकल फिरंगी सूरमियों, बल्ले तो

0: महाराज मिर्चां दे धुएं तों साडे योधे संभल दे नहीं लग रहे, फौज विच पाजड़ जिही पै गई है, साडे जवान निडाल हुंदे जा रहे ने। महाराज तुहाडा भी इत्थे रुकना ठीक नहीं, महाराज तुसीं इत्थों चले जाओ, यह मोर्चा संभालना मेरी जिम्मेवारी है।
1: किहो जिही गल करदे हो सेनापति, तुहानू सारिआं नू इत्थे लड़दिआं छड़ के अपनी जान बचाउण लई दौड़ जाना जायज नहीं है।
2: हाँ महाराज, तुहानू मात भूमि दे मान दी राखी करनी पाएगी, तुसी सलामत रहोगे ता ही पंचाल कुरीति भी सलामत रहेगा।
1: की करे,
2: तुसी जाओ महाराज।
1: प्यारे वीरो, तुहाडे वल्लों जोर पाउण ते मैं बचन दा हीला करदा, अलविदा मेरे मित्रो, अलविदा अलविदा।
3: विक्ट्री सोल्जर्स, हमने पांचाल कुरीची पर कब्जा कर लिया।
4: कांग्रेचुलेशंस कर्नल आग्नियो, फोर्ट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया आपने, बट आवर एनमी हमारे हार्श नहीं आया।
3: मिस्टर मैकाले, हमको एमोत्रे जिंदा चाहिए।
4: एक्सक्यूज मी कर्नल आग्नियो, हमारे सोल्जर्स ने फोर्ट का कोना कोना सर्च कर लिया है, लेकिन एमोत्रे नजर नहीं आया, लगता है वो भाग गया।
3: बट हमने तो फोर्ट को चारों ओर से घेर रहा हुआ था, अगर हम एमोत्रे को पकड़ नहीं पाए तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेट अस मूव टुवर्ड्स पैलेस।
4: आइए कर्नल आग्नियो,

0: are you? बाउंड्री वॉल से जंप करके कैसे आए? कान हटम, वहीं रुक जाओ, वरना आई विल शूट यू।
1: देवी, पिस्तौल दा डरावा देने हो? मैं तो महावीरां दी बंदूकां तो भी नहीं डरता। जे तुसी चाहने हो शूट मी। मैडम, मैं मौत नूं हस के गले लाउण नूं तैयार हां।
0: ये आवाज मैंने कहीं सुनी है। अब पंचाल कुरीची के महाराज हैं?
1: ओ कल दी गल सी, आज पंचाल कुरीची तो फरार हो चुका कमजोर बंदा है मैं।
0: ओ माय गॉड, यू आर इन सच अ पुअर कंडीशन। ओ नो, आपका पीछा करता हुआ कोई आ रहा है क्या?
1: मैं तो रेनू जींदा फड़न ले कंपनी सरकार दे अधिकारी पीछे आ रहे ने। उन्हां दी बंदूक दी गोली साढ़े पैर च लगी हुई आए। चंगी तरह तुर ना सकन दी वजह नाल तुहाडी चार दीवारी पार करके डिग पिया।
0: आपको किसी ने देखा तो नहीं?
1: मैं रास्ता बदल बदल के इत्थे पहुंचया।
0: तो भी आप मुसीबत के बाहर नहीं हैं?
1: कि तुसी मेरी मदद कर सकते हो?
0: पूछा मत, ऑर्डर मी।
1: अपने पिस्तौल नाल मैनू मार सुटो।
0: ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको मार नहीं सकती। इट्स इम्पॉसिबल।
1: दुश्मन दे हाथों नालों मर जाना कितने चंगा है देवी।
0: आपकी सेवा करना मेरी मॉरल ड्यूटी है। फुलोग इधर ही आ रहे हैं। अब ऐसा कीजिए, अब इस पेड़ पे चढ़ के छुप जाइए। जल्दी कीजिए, प्लीज जल्दी। या ओह माय गॉड,
2: विनोला
0: क्या हो डियर?
2: तुम्हारे चीखने की आवाज सुनाई दी थी।
0: Nothing serious, dear. पाँव में कांटा चुभ गया था, निकाल दिया। अब ठीक हूँ। ये soldiers हमारे बंगले के सामने?

0: लगता है कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है।
1: गुड इवनिंग मिस्टर दरई।
0: गुड इवनिंग, क्या न्यूज है
1: सर? पंचाल कुरीची दी जंग जीतन विच सानू कामयाबी मिल गई है।
0: आई नो,
1: पर सर अमै तुरे भज निकल विच कामयाब हो गया है। असी उस नू जिंदा पकड़न लई उसका पिछा कर रहे हैं सर।
0: उसे अरेस्ट किए बगैर विक्ट्री विक्ट्री नहीं है
1: सर। जंगल विच वड़दिया ही सानू दूरों के दौड़दा नजर आया।
0: ओ
1: मैनू जापिया जिवें ओ अमै तुरे ही होए, पर तुहानू देख के होर तेजी नाल दौड़न लग पिया सर।
0: छो से पकड़ना चाहिए था ना।
1: असी उसका पिछा कर ही रहे सी सर कि अचानक को पता नहीं कितने गायब हो गया।
0: नॉर्थ साइड से मैं अभी शिकार करके लौटा हूं, मुझे तो कोई नजर नहीं आया। इफ यू वांट मेरे बंगले की तलाशी ले लीजिए।
1: सर वो इन्ना मूर्ख नहीं हो सकता कि वो तुहाडे बंगले में आके लुके। मैं जापदा वो जरूर झाड़ियों में या किसी दरख्त उत्ते चढ़ के लुकया होगा।
2: मैं घंटे से गार्डन में वॉक कर रही हूँ। नो वन केम डियर। तो भी देखना चाहते हो तो तलाश कीजिए।
1: मैडम इसकी जरूरत नहीं, मैनू शक है वह जरूर पश्चिम दिशा वाल गया होगा। सर हूँ मैं आग्ञा दो।
0: अमेचरों को खोजने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ?
1: श्योर सर, आओ कब
0: खान।
2: पंचाल कुरीची के महाराज पेड़ से उतरिए।
3: तुसी मेरी जान बचाई देवे।
2: आइए अंदर आ जाइए, गोली निकाल कर ड्रेसिंग कर देती हूँ। अपना पैर दिखाइए। ओह माय गॉड, बहुत ब्लीडिंग हो रहा है। अब गोली निकालते समय थोड़ा पेन होगा। गोली निकल गया। आप बहुत ब्रेव है महाराज। दीजिए ड्रेसिंग कर देती हूँ।
3: देवी असी तुहाडे बहुत एहसान मंद है। सानू जीवन दान देके तुसी एक महान काम किया, पर तुहाडे पति सानू फड़न च इन्ना उत्साह क्यों दिखा रहे ने?
2: मेरे हस्बैंड के बारे में गलत मत समझिए महाराज। जब मैं आपको पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए कह रही थी तब उन्होंने देख लिया था, इसी वजह से वो सोल्जर्स को दूसरी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। वो भी यही चाहते हैं कि सिपाहियों की नजर आप पर ना पड़े।
3: पर मैनु मिलके गए हुंदे।
2: वो आपको अपने सामने देख नहीं सकते महाराज।
3: क्यों?
2: आप कंपनी सरकार के एनिमी हैं और एनिमी को पकड़कर सरकार के हवाले करना उनकी ड्यूटी है। लेकिन आपके प्रति वो बहुत ग्रेटफुल है, इसलिए इस मोमेंट को टालते रहे।
3: देवी तुसी भी अंग्रेज हो कि ये तुहाड़ा फर्ज नहीं है कि मैनू फड़ के सरकार दे हवाले कर दियो।
2: आपने बिल्कुल राइट क्वेश्चन उठाया है। आप जानते हैं कि मैं कंपनी सरकार की एम्प्लॉय नहीं हूँ। आपकी लड़ाई कंपनी सरकार के खिलाफ है, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं। यानी कि देन मेरी ड्यूटी वही है जो आपकी, यानी मुसीबत के शिकार लोगों की हेल्प करना। आपने मेरे प्रति सिंपति रखकर जो हेल्प की थी वो मैं कभी नहीं भूल सकती। सो आई एम ऑलवेज वेरी सिंसेयर एंड ऑनेस्ट टू यू।
3: देवी हनेरा हो चलिया, हुन मैनू इत्थों निकल जाना चाहिए।
2: आप नॉर्थ डायरेक्शन में चाहिए, मेरे हस्बैंड ने उधर जाने के लिए क्लियर इंडिकेशन दी है। उन्होंने ये कहा था कि वो नॉर्थ में शिकार करने गए थे, बट वो आज शिकार खेलने गए ही नहीं। नॉर्थ की ओर जाना आपके लिए सेफ होगा।
3: अच्छा देवी हुन चलते हैं। असी
2: ठहरिए, आप पैदल नहीं जा सकते, इस घोड़े पर चढ़ के तेजी से निकल जाइए।
3: देवी असी तुहानू कदी नहीं भूल सका। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अलविदा महाराज। हिज हायरनेस एमाथुरे, मे गॉड हेल्प यू।

आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम हुण तुसी न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते भी सुन सकदे हो। नाल ही तुसी दूरदर्शन दे वख-वख चैनल अते आकाशवाणी दे वख-वख भाषाई चैनलों का आनंद भी माण सकदे हो, ओ भी क्रिस्टल क्लीयर डिजिटल क्वालिटी। न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते तुसी पंजाब दे केंद्रां विच AIR पंजाबी प्रेस करके आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकदे हो। सो हुणे डाउनलोड करो प्रसार भारती दी ऐप न्यूज़ ऑन एयर। ए ऐप प्ले स्टोर अते आईट्यून्स दोवें प्लेटफॉर्म्स ते उपलब्ध है।

तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे निमक निमक तुम ही प्रतिपालो हम बारिक तुमरे तारे। गुरबाणी दे इस फरमान तो पाव है कि सिरजनहार प्रभु सबना दी प्रतिपालना करता है, सबना दा साई है, सारे जीव उस दे आसरे ही हन। वो प्रभु सदा सृष्टि दे जीवां नूं पालदा है। ये अकाल पुरख दा बिरध ही है क्योंकि वो मेहर करन वाला है, सबना दा साहिब है, दयालु है, सबना जीवां नूं प्राण उसे ने ही बख्शे हन। तो फिर ए जीव तू क्यों डोलदा है? तेरी रक्षा करन वाला उही है जिसने तेनू साजिया है, जिसने तेनू पैदा कीता है, उही तेनू आसरा भी दिंदा है। जिसने इस सृष्टि दी उत्पत्ति कीती है उसने ही तेरी सार लेनी है। ओ परवरदिगार प्रभु हर हिरदे विच व्यापक है, उसकी सिरजन शक्ति दा कोई अंदाजा नहीं। वो सब तो वड्डा है ते बेपरवाह है। इसे करके ए बंदे जिन्ना चर तेरे स्वास हन उससे दी ही बंदगी कर। हे प्रभु तू सर्व कला समर्थ है, कथनी तो परे है, इंद्रियां दी पहुंच तो परे है। ए जिंद प्राण तेरी ही दित्ती हुई रास पूंजी है। हे प्रभु तेरे अग्गे यही अरदास है कि तेरी रहमत सदका ही मैनू आत्मिक सुखां दी प्राप्ति हुई है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 724 ते तिलंग राग विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी का कथन है, तू काहे डोलै प्राणिया तुद राखेगा सिरजनहार, जिन पैदाइस तू किया सोई दे आधार। इस शब्द का गायन किया भाई मेहताब सिंह ते उन्हां दे

तू काहे डोलै प्राणिया तुद राखेगा सृजनहार जन पैदाइस तू किया सोई दे आधार। इस शब्द का गायन किया सी भाई मेहताब सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। अकाल पुरख का मुढ़

0: अमोलक वचन हन। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंदप, तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, ता पाओ केहा काड़ा जियो। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर सरूप सिंह अलग दे शब्दां विच गुरबाणी विच बस नाम दी ही कीर्ति गाई है। ओह गुरबाणी विच नाम दे संकल्प बारे दसदे हन के नाम समुचे संसार दा आधार है। इस दे आसरे ते ही खंड ब्रह्मंड धरती आकाश टिके हुए हन। फुरमान है, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड। जपजी साहिब विच्चों भी इस गल दी सूची मिलदी है कि हर पासे नाम दा ही राज है, उस दी ही जय जयकार है, उसे दा ही बोलबाला है, उस तो बाहर कुछ भी नहीं ते उस तो खाली कोई थां नहीं। जेता कीता तेता नाओ, विण नावै ना ही को थाओ। नाम दी शक्ति अपरम अपार है ते इसदा स्वरूप संखेप रूप विच मूल मंत्र विच भी अंकित है। इस रूप नाल एकमिक होना ही मनुखी जन्म दा टीचा है। गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज गुरबाणी दे रचनहारिया ने इस नाम दी सोभा करके मनुख मात्र नू समझाया है। सिख धर्म दे प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर साहिब सिंह नाम सिमरन बारे लिखते हैं, सिमरन दा अर्थ है याद करना, याद रखना। उस सर्व व्यापक जोत नू हर थां पसरी जान के उस नू तू है तू आखदे रहना उसका सिमरन है। परमात्मा दे गुण गाने उसकी खुशामद नहीं है। जीव ने परमात्मा दे गुण सिर्फ इस वास्ते गाने हन के गुण गाउंदियां इह गुणा दे मालक विच लीन हो जाए। भगत कबीर जी राग केदारा विच सोझी दिंदे हन के कई लोग कांसी तांबे आदिक दा वणज करदे हन, कई लौंग सुपारी आदिक वणजदे हन। प्रभु दे संतां भगतां ने परमात्मा दा नाम वणजिया है अते मैं भी यही सौदा लद्या है, यही असल खजाना है, भगतां दी रास है। फुरमान है, किन्ही वणजिया कांसी तांबा, किन्ही लौंग सुपारी, संतोह वणजिया नाम गोबिंद का, ऐसी खेप हमारी। गुरु अर्जन देव जी ने सुही राग विच बख्शिश कीती है कि जिस मनुख उपर गुरु ने कृपा कीती है परमात्मा ने उसनू अपनी भक्ति दा खजाना दिता है। फुरमान है, हर भगत खजाना बख्शिया, गुरु नानक किया पसाओ जियो। गुरबाणी दी विचार करदियां यह पता लगता है कि परमात्मा दा स्वरूप एक अजिहे रखवाले वजों उभरदा है जो अपने भगतां दी इज्जत हरेक युग विच करदा आया है। तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जी बचन करदे हन, भगत जना की हर जियो राखै, जुग जुग रखदा आया राम, सो भगत जो गुरमुख होवै होमै शब्द जलाया राम। डॉक्टर जसवंत सिंह जी नेकी दे शब्दां विच गुरु दे प्रेरे हुए जेडे जियोड़े जुड़ जांदे हन ओह भगत कहाउंदे हन, ओही सदा विगास खेड़े विच रहंदे हन। नानक भगतां सदा विगास, जद गुरां दे शब्द विच लिव लगदी तद आत्मा सदा विगास दे मंडल विच विचरदी है। प्यारे बचन हन, ज्ञानियां अंदर गुर शब्द है, नित हर लिव सदा विगास, तदे तां भगत लोकां दा सब तन मन हृदा लिव आत्मा एक सदीवी खेड़े विच भिन्ना रहिंदा है। यही भगतन की रास है। इस आत्मिक अवस्था नू अविरल अते अमुक रखण वास्ते भगत जन हमेशा उस दे हुक्म विच रहिंदे हन अते सदैव अरदास करदे हन। मन तन आगै जियड़ा तुझ पास, ज्यों भावै त्यों रखो अरदास।
1: रखवाला गोबिंद राय, भगतन की रास। ये वार्ता सुना रहे सन नवप्रीत सिंह। डंडौत बंदन।

एक बार सर्व कला समरथ डोलनते राखो प्रभु नानक देकर हथ। पंचम पातशाह दा उचारिया इस लोक पवसागर विच डोले हुए जीवां नूं इह विश्वास दृढ़ करवाउंदा है कि ऐसी अवस्था वाले जीव अकाल पुरख दे सन्मुख एक नहीं बल्कि अनेकां वार अपने इंद्रियां नूं सिद्धा करके वंदना करन तां प्रभु अपना हथ दे के जीवां नूं बल बख्शदा है। रामकली की वार महला पंजवां दे एक श्लोक विच पंचम गुरदेव जीव नूं पूर्ण भरोसा दिवाउंदे हन ते जिग्यासु मन नूं संबोधित हुंदे ने कि ए मन तू क्यों डोलदा है। प्रभु सारियां मन दियां आसां पूर्ण करन वाला है। उस सच्चे गुरु नूं त्योणा कर जो कदे भी दुखां दा चेता ही नहीं आउण दिंदा। उस हरी दे नाम दी आराधना कर जो विकारां तों निजात दिवाउंदा है। पर ए प्रभु दा नाम रंग उहनां नूं ही लगदा है जिन्हां दे पूर्वले कर्म चंगे होण। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਚਸਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਮ ਧਨ ਹੀ ਸੰਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਲਿਵਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਦਾਸ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਤੂੰ ਡੋਲਤਾ ਹਰ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਹਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਤੂੰ ਸਭ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰ।

काहे मन तू डोलता हर मनसा पूर्ण हार, सतगुर पुरख त्याए तू सब दुख विसारण हार। इस शब्द का गायन किया सी भाई जसबीर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम हुण तुसी न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते भी सुन सकदे हो। नाल ही तुसी दूरदर्शन दे वक्-वक् चैनल अते आकाशवाणी दे वक्-वक् भाषाई चैनलां दा आनंद भी माण सकदे हो, ओह भी क्रिस्टल क्लीयर डिजिटल क्वालिटी च। न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते तुसी पंजाब दे केंद्रां विच AIR पंजाबी प्रेस करके आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकदे हो। सो हुणे डाउनलोड करो प्रसार भारती दी ऐप न्यूज़ ऑन एयर। ए ऐप प्ले स्टोर अते आईट्यून्स दोवें प्लेटफॉर्म्स ते उपलब्ध है।

ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े हैं कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं।

कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चूरी, उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने, और जिसके घर माखन चोरी होती वो गोपी आ जाती शिकायत करने यशोदा के पास कि देखो तुम्हारे बेटे ने हमारे घर बहुत नुकसान किया, बड़ा उपद्रव किया। यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, पूछती है सब क्या करके आए, देखो सब शिकायत करने आई।

मुसलमान सिर्फ शरीयत पर पढ़ करे विचार बंदे से जे पढ़े विच बंदी वेखन को दीदार हिंदू सालाही सालान दर्शन रूपे अपार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बहकार जोगी सुन त्यावन जे त्या

दीपालो मंडला खंडा वर पंडा अंडा जय जय पूजा खानी सेत जा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कैस माले सबना।

का विचार मूर्ख मन्नत एक मत हो जाए संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गा वावे मंगे मुख द्वार जति सदावे जुगत ना जाने छड़ भय करबार सबको पूरा पे

दुखदार उस क्रोध प्या जा सुता न होई। तू करता करना मैं नहीं जाऊं करी न होई। बलिहारी कुदरत वस्या तेरे अंत न जाई लख्या रहाओ। जात में जोत जोत में जाता कल कला भरपूर रहा। तू सच्चा साहिब।

सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी, जिस सिमरत दुरमत मल नासी। सतगुर चरण कवल रिद तारंग, गुर अर्जुन गुण सहज विचारंग।

जय जयकार जास जग अंदर मंदर भाग जुगत शिव रहता गुर पूरा पायो बडभागी लेव लागी मैं दन पर सहता पै पंजन पर पीर निवारण कल सहार तोहे जस बकता कुल सोडी गुरु रामदास तन धर्म तुजा अर्जुन हर भगता।

0: बासुर रहन बास जाको हित नाम स्यों, परम अतीत परमेश्वर कै रंग रंगो। बास ना तै बाहर पै देखियत ताम स्यों, अपर परंपर पुरख स्यों प्रेम लाग्यो। बिन भगवंत रस नाहीं और काम स्यों, मथुरा को प्रभ सर्व मैं अर्जुन गुर। भगत कहेत पाए रहो मिल राम स्यों।
1: अंत न पावत देव सभै मन, इंद्र महाशिव जोग करे। पुन वेद

0: बस राखो सरनाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरना।
1: सो कह टल गुर सेविए, एहन ससहज सुभाय, दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय, होए सिफत खसामंदी, नूर अरसों कुरसों चटी, तुद डिठे सचे पातशाह,

आवर आस काश पटल ना कीजे सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपासोई नानक जाको कृपा कीजे गोह पार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण अवर आस काश पटल ना कीजे सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपसोई